मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: टिमवीप 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के

0: तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में सामीय कृषि कार्य के विषय में किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। अगर आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। इसकी बेलों की रोपाई का समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक होता है। गन्ना की खेती के लिए भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करके खेत को तैयार कर लेते हैं। इसकी अच्छी खेती के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद खेत में थोड़ा पहले मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। खेत तैयार हो जाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़े बना लें और फिर इन्हीं मेड़ों पर शकरकंद की बेलों को लगाएं। मेड़ पर एक बेल से दूसरे बेल की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बेल को सीधे नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें। ध्यान रहे कि एक टुकड़े में कम से कम 4 गांठें हों। टुकड़ों को इस तरह लगाएं कि टुकड़ों का अंतिम सिरा जमीन में दबा हो तथा बीच में दोनों गांठें जमीन से बाहर हों। फिर रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शकरकंद की जो प्रजातियां हैं वह हैं पूसा लाल, पूसा सफेद, पूसा सुनहरी, FA17, AH41 और H42। इनमें से जो प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। धान की फसल में खैरा बीमारी का प्रकोप हो जाता है। यह जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी भाग, दूसरी या तीसरी पूरी तरह परिपक्व पत्तियों से प्रारंभ होते हैं। पौधों की बढ़त रुक जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं। तने के ऊपरी हिस्से में गांठें नज़दीक बनने लगती हैं तथा पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तथा फसलों में बालें देर से निकलती हैं। जब निश्चित हो जाए कि धान में जिंक की कमी है तो फिर इसको नियंत्रित करना चाहिए। इस हेतु हम जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। इसे या तो रोपाई के पहले खेत में मिला देते हैं या तो खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। अगर रोपाई से पहले खेत में मिला रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाना चाहिए और यदि खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जो धान पहले रोपे गए हैं उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। अगर खेत में नमी की कमी हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें। कल्ले फूटते समय भी खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। इसके अलावा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करके खरपतवार भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खरपतवारों के कारण फसल को काफ़ी हानि होती है। यदि रासायनिक दवाओं से खरपतवार नष्ट करना चाहते हैं तो 2-4 D ईस्टर दवा प्रयोग करनी चाहिए। इसकी 400 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से रोपे गए धान में कल्ले बनते समय बुरका करना चाहिए। इस समय मध्यकालीन फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसके बेहन डालने का समय जुलाई माह से अगस्त माह तक होता है। इसकी जो किस्में हैं वह हैं अर्ली स्नोबॉल, जायंट स्नोबॉल, Hisar 1, पंजाब जायंट 26 और पंत शुभ्रा। एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए क्यारियां बनानी पड़ती हैं। यदि एक हेक्टेयर रोपाई हेतु

0: अध्ययन तैयार करना है तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी 5 क्यारियां बना लेते हैं। इन क्यारियों में 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत तैयार कर लेते हैं। जब पौध तैयार हो जाए तो फिर रोपाई करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभात की पहली किरण हमें यह एहसास दिलाती है कि ईश्वर प्रत्येक सुबह एक नया आरंभ देते हैं। ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ और असीम है, जैसे सूरज सबको बिना भेदभाव की रोशनी देता है।

सच्ची श्रद्धा वही है जहां अहंकार नहीं, सिर्फ भाव और समर्पण है। और समय बहुत अनमोल है, अतः जो पल ईश्वर का नाम लेने में बीत जाए वही सच्ची पूंजी है।

जीवन के पथ पर अनेक परेशानियां और संकट आते हैं, किंतु ईश्वर का हाथ थामने वाला कभी अकेला नहीं होता, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास करने वाले का हमेशा विश्वास बना रहता है और परिस्थितियों को पार करने की शक्ति मिलती है।

भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है, और ऐसा करने से आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

0: आराधना के अंतर्गत आज आपने ए हरिहरन, पंडित भीमसेन जोशी, महेंद्र कपूर और अंबर कुमार देव की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। हमारी आज की आराधना अब संपन्न होती है। मिनिमम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज का विषय है सर्वे भवन्तु सुखिनः।
1: प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है, किंतु सुख कहते किसे हैं? एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति को यदि सुखकर प्रतीत होती है तो दूसरे को वही दुखद बन जाती है। इसलिए सुख का आधार वस्तु नहीं अपितु मनोजन्य स्थिति है। प्राणी के शरीर, इंद्रियों और मन के अनुकूल लगने वाली प्रतीति को सुख कहते हैं। शरीर, इंद्रियों और मन के प्रतिकूल लगने वाली प्रतीति ही दुख है। यद्यपि सुख और दुख सापेक्ष हैं, तथापि चिरंतन अनुभवों के आधार पर अपने अनुकूल लगने वाले कार्यों में सुख तथा प्रतिकूल लगने वाले कार्यों में दुख की परिकल्पना कर ली जाती है। प्राणियों को उनके अभीष्ट सुख की प्राप्ति होती रहे, किसी को दुख न पहुँचे, इस दृष्टि से महर्षि द्वैपायन व्यास ने महाभारत में मानव को निर्देश दिया है कि जो व्यवहार हमें प्रतिकूल लगे, दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अपनी प्रिय वस्तु में बाधा होने की आशंका मात्र से प्राणी के हृदय में भय का संचार हो जाता है। ये मन में उद्वेग उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। मन की ऐसी स्थिति ही प्राणी के लिए दुखदायिनी बनती है। भय के अतिरिक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अन्य आध्यात्मिक भाव भी प्राणी के मन में दुख उत्पन्न करते रहते हैं। वात, पित्त और कफ की विषमता के कारण उत्पन्न व्याधियों से भी दुख मिलता है। कीट, पतंग, पशु, मानव इत्यादि से प्राणी को जो कष्ट पहुँचता है उसे आधिभौतिक दुख कहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि को आधिदैविक दुख माना गया है। सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं का अभाव भी दुख का कारण बनता है। स्थूल रूप से दुख को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाधाजन्य दुख तथा अभावजन्य दुख। इस प्रकार प्राणियों के समक्ष दुख ही दुख उपस्थित रहते हैं। जो अल्प सुख या सुखाभास है वो भी कुछ समय के पश्चात दुख में परिवर्तित हो जाने वाला है। सुख और दुख तो प्रकाश और अंधकार की भांति हैं, चक्र के अरों के समान हैं, जिनकी सदा विषम स्थिति बनी रहती है। ऐसी दशा में कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि ये संसार तो दुखागार है, सुख का दुख में परिवर्तन हो ही जाने वाला है, फिर हम संसार को सुखमय बनाने का प्रयत्न क्यों करें। किंतु ऋषि मुनियों ने प्राणी मात्र को सुख सुविधाएं प्रदान कर देने में पुण्य प्राप्ति बताई है। सम्राट अशोक ने द्रव्य यज्ञों का अनुष्ठान तो नहीं किया था, परंतु प्राणियों को सुख सुविधा प्रदान करने हेतु मार्गों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कराया था। स्थान स्थान पर वापी, कूप, तड़ागों का खनन कराया था और कराया था पांथशालाओं का निर्माण। शारीरिक रोग निवारण हेतु औषधालय खुलवाए गए थे। मानसिक रोग निवारण हेतु ऋषि मुनियों के आश्रमों में योग साधना का मार्ग खुला था। प्राणियों को सुख प्रदान करने की इच्छा से अन्न सत्र और भोजन सत्र खुलवाए जाते थे। प्राणियों को सुखी देखकर सुख उत्पन्न होता है और दुखी देखकर दुख। दुख ही नरक है और सुख ही स्वर्ग। पीड़ित प्राणियों को सुखी बनाकर ऋषियों की कामना थी इस धरा पर स्वर्ग को उतार देने की। चाणक्य ने राजा का सुख प्रजा का हित करने में माना है। प्रजा हिते सुखम राज्ञः। प्राणियों को सुख पहुंचाना केवल संपन्न व्यक्तियों का ही कार्य नहीं है, अपितु सर्वसाधारण जन भी मधुर वाणी बोल,

0: और मन से कल्याण कामना करके प्राणियों को सुख दे सकता है। प्रत्येक प्राणी का हृदय परमात्मा का निवास है। महाराज रंतिदेव की कामना थी कि वे संपूर्ण देहधारियों के हृदय में स्थित होकर उनकी पीड़ा को स्वयं ग्रहण कर लें।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विषय था हमारे आज के विचार बिंदु कार्यक्रम का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप कुमार जानकारी दे रहे हैं, जागरूक बने रक्तदान करें। आज सुनिए इसका तीसरा और अंतिम भाग।
2: जो रक्त केंद्र पर जाकर रेगुलर डोनेशन करते हैं उनको चार इन्फेक्शन के बारे में रिकॉर्ड हमेशा होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस। ये पांच बीमारी की मैंडेटरी टेस्ट करनी होती है हर एक रक्त केंद्र में भारतवर्ष में। तो आपको इसकी भी पता चलते रहेगी कि मैं लास्ट कब तक ठीक था और आप एक स्वस्थ तरीके से रह सकते हैं। बहुत सारे लोग जो आते हैं रक्त केंद्र में वॉलंटरी डोनेशन के लिए भी, तो वहां तो सारे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है ब्लड डोनेशन से पहले, तो उसमें बहुत सारे लोगों को पहली बार कैंप में या रक्त केंद्र में पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी वहां बताया जाता है। जरूरत पड़ती है तो उनको रेफरल के लिए हमारे सर सुंदरलाल अस्पताल के विभिन्न OPDs में उनको भेजा भी जाता है। अच्छे से भोजन करके जाएं। अगर भोजन की इंटरवल ज्यादा हो गई है, 4 घंटे से ज्यादा हो गई है, तो एक लाइट रिफ्रेशमेंट ले लें। दूसरी चीज ये करें आप कि रक्तदान करने से पहले 1.5 लीटर से 1 लीटर जरूर पानी पी लें, कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 ग्लास ही पानी पी लें। क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप 350 ml ब्लड लेते हैं हम लोग, तो थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम की डिप्लीशन होती है, कमी होती है। अगर आप पानी पीते हैं तो वो वॉल्यूम उसको रिप्लेस करने में सहायता करता है। दूसरी चीज ये करें आप कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, एल्कोहल लेते हो, तो ये लेकर आप रक्तदान करने ना जाएं। दूसरी चीज, आप रक्तदान करने के बाद उस दिन या 24 घंटे तक कोई अल्कोहल न लें, स्मोकिंग न करें। जिस दिन आप रक्तदान कर रहे हैं उस दिन केवल 4-5-6 घंटे तक आप कोई बहुत ज्यादा वजन उठाने वाला काम या बहुत ही ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज ना करें, वर्कअप अगर कोई करते हैं तो वो ना करें, बाकी रूटीन काम कर सकते हैं। लेकिन उस दिन थोड़ी सी आप प्रिकॉशन लें तो कुछ नहीं होता है। सबसे कॉमन जो एक तकलीफ होती है रक्तदाताओं में रक्त देने के बाद, कि उनको बेहोशी महसूस कभी कभी होने लगती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर रक्त केंद्र में है तो आपको तुरंत उसी समय 5 मिनट के अंदर ठीक करके आपके पैर पे चलाते हुए बाहर किया जाता है। अगर आप रक्तदान कर किसी रक्त केंद्र से निकल गए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी लग रही है कि आने वाली है, तो आप कहीं भी किनारे पहले तो बैठ जाएं। अगर जमीन में ही सड़क पे ही चल रहे हैं तो वहीं बैठ जाएं, उससे गंदे कपड़े होने के डर से सोचे नहीं। आप 5 मिनट बैठ जाएंगे वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और कहीं से भी उठाकर आप स्वच्छ पानी 1 बोतल पी लें, उसके बाद आप एकदम निश्चिंत रहेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगली बार अगर आप ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे हैं रक्त केंद्र पे, तो ये चीज जरूर अपने काउंसिलर को बताएंगे कि मुझे पिछली बार रक्त देते वक्त या देने के बाद इस तरह की तकलीफ हुई थी। कोई भी रक्त केंद्र में किसी भी डोनर के साथ डिस्पोजेबल सेट का, किसी एक लोग में यूज किया हुआ निडिल किसी दूसरे में नहीं लगाई जाती है। किसी कारण से डोनेशन रोकना पड़ा तो भी वो बैग या वो यूनिट किसी दूसरे में मिक्स नहीं की जा सकती है और ना होती है। तो आप ये तो भ्रांति निकाल दें कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी या कमजोरी हो जाएगी, लेकिन आप ये जरूर सोच कर जाएं कि अगर मेरे में कोई बीमारी होगी तो जरूर पता चले। इसलिए इससे तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि आप रक्तदान करने जा रहे हों और कोई

0: परेशानी लेकर वहां से लौटेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। आप उसी रक्त केंद्र में जाएं जिसके पास रक्त केंद्र चलाने की लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दी है। आप अपने नजदीकी किसी भी रक्त केंद्र में जाएं, वहां जाकर निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर रक्तदान कर सकते हैं। हमारे बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में स्थित जो रक्त केंद्र है वो 24 घंटे खुले होते हैं। जब भी इच्छा हो तो आप वहां आकर रक्तदान कर सकते हैं।
1: जागरूक बने, रक्तदान करें, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संदीप कुमार। स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्रीराम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का आकाशवाणी से प्रसारण होगा सुबह 11 बजे से। महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकते हैं शाम 7:31 से मैच की समाप्ति तक। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे डॉ. राकेश कुमार का बांसुरी वादन। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनिएगा दिन में 2:30 पर, जिसमें दंत संबंधी रोग और उनका इलाज विषय पर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे डॉ. टीपी चतुर्वेदी। श्रोताओं के प्रश्नों के साथ होंगी शिखा श्रीवास्तव। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और रामजन्म भारती के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे डॉ. रूपेश सिंह से सतीश यादव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा जनसंख्या एवं खाद्यान्न वृद्धि का आनुपातिक अध्ययन एवं पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन तकनीक। रामजन्म भारती के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना, फिल्म संगीत और युवावाणी क्विज। ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल सुनेंगे शाम 5:00, जिसमें होगी चर्चा, गीत संगीत और साथ ही धनंजय सहाय की वार्ता, प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंग हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 1:30 पर। पत्र के लिए धन्यवाद ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 1:15 पर। श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश आप सुन सकते हैं 12:00। आज की प्रस्तुति है सिद्धार्थ सेन की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर। अलावा इसके फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं झंकार कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर और शाम 6:10 पर। श्रोताओं आपको पुनः बता दें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का आकाशवाणी से प्रसारण होगा सुबह 11:00 से। और महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकते हैं शाम 7:31 से मैच की समाप्ति तक। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7:00 सुनिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। अब सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आइए अब सुनते हैं समाचार। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियो

गंगा की लहरों की तरह निर्मल, सुबह की पहली किरण की तरह उज्जवल और बनारस की गर्मा गर्म मिठास से भरी चाय की तरह गर्म जूसी इस सुबह में मैं आप सबकी प्यारी नैना आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग बनारस, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दुआओं आशीर्वाद और ढेर सारे प्यार से हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज तो संडे है, संडे यानी फंडे, या वो दिन है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं पूरे हफ्ते, है ना? संडे की सुबह शांत और स्लो होती है, आप और हम पूरे हफ्ते इसका वेट करते हैं कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। उस दिन कहीं जाने का टेंशन भी नहीं होता है और हम फैमिली के साथ अपने फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आज आप सुबह उठकर आँख खुलते ही सबसे पहले क्या किए हैं? सच बताएं तो 90% लोग सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये सुबह के कुछ पल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। यह कुछ पल आपके दिन भर की दिनचर्या, मूड, एनर्जी को और भी फ्रेश और एनर्जेटिक बना सकते हैं। और सुबह सुबह जब हम सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस के चक्करों में फंस जाते हैं ना, तो इससे हमारा मूड और दिनचर्या फ्रेश नहीं फील कर पाता है। इसलिए दोस्तों सुबह उठकर सबसे पहले 10 से 15 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि हमें खुद के लिए समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ताज़ी हवाओं में आइए, धूप लीजिए, सुबह की ठंडी हवाओं को महसूस करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए और लंबी सांस लेकर योगा करिए। यह कुछ पल हैं जो हमें अपने जीवन में देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह छोटी छोटी आदतें ही ना स्ट्रेस को कम करते हैं और दिन को फुल एनर्जेटिक बना सकता है। और दोस्तों आज के संडे स्पेशल में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि सावन की रिमझिम बीत गई है और भाद्रपद का, सावन का महीना तो बीत गया और भाद्रपद का पवित्र महीना शुरू हो गया है। जितनी बेसब्री से हम सावन का इंतज़ार करते हैं ना, उतनी ही बेसब्री से हम बनारसवासी भादो का भी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भादो का महीना ठंडी हवाओं की हल्की हल्की फुहारे और कजरी की गूंज के साथ आती है। भादो का माह त्योहारों की एक पूरी तिजोरी से लेकर आता है। आपको बताएंगे कि इस पूरे महीने कौन कौन से त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चाय की चुस्की लीजिए और ठंडी हवाओं के साथ सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर।

वाकई जिंदगी के साथ हमारी मौसम भी बदल रहा है। वेलकम बैक बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम। दोस्तों, सावन का महीना बीत अब भाद्रपद यानी भादो का महीना आ गया है। बनारस वासियों, आप तो जानते हैं कि सावन अगर बाबा भोलेनाथ की भक्ति और एकाग्रता का महीना होता है, तो वहीं भादो भी उल्लास, कजरी, पकवान और कान्हा की बाल लीलाओं का पावन महीना होता है, जो अब आ चुका है। कल 29 अगस्त से भादो की कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह भादो का पावन महीना 26 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा तक चलने वाली है। शास्त्रों में भादो के महीने को मन को पवित्र करने और तप का महीना माना गया है। और भादो का महीना इसलिए भी सबसे खास है ना, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण, विघ्नहर्ता गणेश जी और हम सबकी प्यारी लाडली रानी राधा रानी जी के आगमन का महीना होता है। तो आइए जानते हैं कि इस भादो में कौन कौन से बड़े त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लेकर आ रहे हैं।

दोस्तों, सबसे पहले कल यानी 31 अगस्त को सुहागिनों और बहनों के प्रेम व कजरी का पावन पर्व कजरी तीज है। इस दिन महिलाएं ईश्वर की आराधना और व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, साथ ही पारंपरिक लोकगीत कजरी गाती हैं। लेकिन हम बनारसी इसे एक अनोखे अंदाज में मनाते हैं। इस दिन जलेबी खाने की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है और हमारे यहाँ इसे जलेबा कहते हैं, जो रात्रि जागरण के दौरान खाई जाती है और जो बहुत टेस्टी और स्वीट होती है ना दोस्तों? आप भी इंतज़ार कर रहे हैं ना कि कब जलेबा खाने को मिले? और दोस्तों, 4 सितंबर को हमारे नटखट कान्हा का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और 14 सितंबर को हरियाली तीज है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं।

साथ ही दोस्तों, इसी दिन, इसी शुभ दिन हमारे घर विराजेंगे गणपति बप्पा, क्योंकि इसी दिन गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा का आगमन है। वहीं 19 सितंबर को राधा अष्टमी है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी यानी हमारे बप्पा की विदाई है और अंत में 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके साथ पितृपक्ष की शुरुआत होगी। तो इस तरह दोस्तों, भादों का पूरा महीना भक्ति, उपवास और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का माह है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आज क्या है खास।

दोस्तों आज 30 अगस्त 2026 है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। यह दिन देश के छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल सेल इंडस्ट्री के विकास, उनके योगदान और अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा करना और MSME के सेक्टर के क्षेत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों ये था आज का खास, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 30 अगस्त का इतिहास। आइए जानते हैं क्या हुआ था आज खास।

दोस्तों, आज के दिन 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना हुई थी। और आज ही के दिन 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आज ही के दिन 1923 में गीतकार शैलेंद्र का जन्म हुआ था। आज ही के दिन हिंदी जगत के प्रमुख इतिहासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था। ये था आज यानी 30 अगस्त का इतिहास। अब कार्यक्रम में आइए जानते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल।

दोस्तों, वुमेन T20 एशिया कप 2026 में आज भारत और थाईलैंड की महिला टीमों के बीच एक बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है और भारतीय टीम अपने मजबूत प्रदर्शन के दम पर इस मैच को जीत हासिल कर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री शनिवार को अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। यह माननीय प्रधानमंत्री का उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है। अपनी इस यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। दोनों माननीय नेता भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन जन के बीच आपसी संबंध की समीक्षा करेंगे। साथ ही ताशकंद प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री शास्त्री मेमोरियल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ताशकंद के बाद माननीय प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर झापरो के निमंत्रण पर बिश्केक के लिए रवाना होंगे।

ये था देश दुनिया का हालचाल और अब आइए जानते हैं अपने शहर बनारस का हालचाल। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने वाराणसी और पूर्वांचल के पूरे अगले हफ्ते भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IWA चेयरमैन सुशील कुमार लोहानी ने वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का दौरा किया और जलयान मरम्मत केंद्र के जल्द लोकार्पण की उम्मीद जताई। साथ ही यह केंद्र गंगा नदी में जहाजों की मरम्मत कर वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, स्थानीय व्यापार और क्षेत्रीय विकास में गति आएगी। ये था देश दुनिया और अपने बनारस का हालचाल। इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में बस इतना ही। गुड मॉर्निंग बनारस का कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी प्यारी नैना के साथ। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई जोश और नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से

0: साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी के तहत मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम नागरिक की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालयों तक 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर नियोजित प्रयासों के साथ निस्तारित कराया जाए। साथ ही धारा 33 के अविवादित विरासत के मामलों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन, IGRS में प्राप्त जन शिकायतों के संतुष्टि परक निस्तारण, राजस्व न्यायालयों की कोटवार समीक्षा और लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: बैठक में मुख्यमंत्री ने चित्रकूट, फरुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया के सलेमपुर और भाटपर रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपये लागत की 80 लोकहितकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि आज गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार व सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही राप्ती नगर क्षेत्र में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हार्मिनी कल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में

0: वर्ग की अहम भूमिका होती है।
1: 108 देशों से बच्चियां आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से और जिन्होंने मिलकर शक्तिसैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, और बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते जिस मिशन ने दिखाई है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
2: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
0: प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू की वर्तमान स्थिति को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
3: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जाँच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। कल 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। प्रशासन और NDRF की ओर से चित्रकूट में राहत और बचाव का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में

0: कई नदियां उफान पर, चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार का बांसुरी वादन। राग है भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रुतिशील उद्धव।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार का बांसुरी पर बजाया राग भैरव। तबले पर आपके साथ संगत की श्रुतिशील उद्धव ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।

0: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
1: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
0: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
2: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम

0: विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछे 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद उज़्बेकिस्तान्स प्रेसिडेंट शफकत मिर्ज़ियोयेव इन ताशकेंट टुडे। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. Death toll from flash floods in Nepal rises to 675. Nearly 2,400 people still missing. Nepal issues fresh flood alert for Bhote Koshi River. External Affairs Ministry says 108 Indian nationals rescued so far. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanity.

0: 8 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिए तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के टी20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा सदारती महल में तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुक से वाबस्ता शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज़्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी तआवुन का जायजा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में तआवुन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्त दोनों ममालिक कानकनी, खासतौर पर कमियाब मादनियात, धातों जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज कनेक्टिविटी के नए मौके की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर आज़म की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा वर्षों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: वज़ीर आज़म जनाब मोदी उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ताशकंद के यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में उज़्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाए अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज़्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिये के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में ये प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने इल्जाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे की ताजीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुओं में फूट डालने का इल्जाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजाम ने जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
2: अब ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
0: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर

0: पी राधाकृष्णन आज दो रोजा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुज़ा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, इंटरप्रोनियरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ वो लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में 101 करोड़ रुपए के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद 675 हो गई है। दोबारा शदीद बारिश और मजीद सैलाब के अंदेशों के दरमियान तलाश और बचाव का रवाई जारी है। तकरीबन 2400 अफराद लापता हैं, जिनमें से कम 320 गैर मुल्की शहरी हैं। 261 गैर मुल्की सयाहों समेत 4400 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: नेपाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों से 675 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद चितवन नवलपरासी ईस्ट और नवलपरासी वेस्ट से है। 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने और राहत का सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद परवाजें कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलाश और बदतरीन तौर पर मुतासर रसूबा जिले में कल बारिश और कोहरे के सबब बचाव कार्रवाई के आर्जी तौर पर रोके जाने के बाद तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटेकोशी दरिया में सैलाब के मद्देनजर ताज़ा अलर्ट जारी किया है और दरिया के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रसूबा जिला इंतजामिया ने कहा है कि उसे पानी के बहाव में इजाफे के तनाजुर में रसूबा, नवाकोट और ढांढिंग जिलों में लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। चीन से मुतसिल सरहद पर भी 7 अफराद हलाक हुए हैं और 550 से ज्यादा लापता हैं। मिगलिंग काठमांडू शाहराह को कल से खोल दिया गया है, जो राजधानी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली अहम सड़क है। अलबत्ता कई दीगर सड़कें अब भी बंद हैं या उनके रसाई में रखना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध को आए अचानक सैलाब के सानहे के बाद अब तक वहां 108 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों जिनका राबता मुनक़ते हो गया था, उनसे दोबारा राबता कायम कर लिया गया है। वजारत ने कहा कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है, जबकि 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं, जिनके पास दीगर ममालिक की शहरियत है। मकामी सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में 598 भारतीय शहरी चीन के रास्ते नेपाल में पहुंच गए हैं। इस दौरान 900 भारतीय शहरी जिन्हें चीन से रवाना होना है, बीजिंग में भारतीय सफारतखाने में महफूज हैं और मकामी सरकार के जरिए या बराह रास्त रबते में हैं। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने नेपाल के तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए आफात से निमटने के कौमी दस्ते को नेपाल भेजने की पेशकश की है। नीज भारतीय फजाइया के जरिए हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजकर फौरी इंसानी इमदाद भी फराहम की गई है। इस दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चौथी इमदादी परवाज C-130J हरक्यूलियस 11 टन इमदादी सामान के साथ कल काठमांडू के लिए रवाना किया गया है और इमदादी सामान नेपाल हुकूमत को सौंप दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने कहा कि इस परवाज के जरिए जरूरी अशिया और तकनीकी साजो सामान भेजा गया है, ताकि नेपाल में जारी तलाश बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयों में मदद फराहम की जा सके। इससे पहले भारत ने 3 परवाजों के जरिए 57 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजा था। भारत की 11 रुकनी तकनीकी टीम ने कल नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में पनबिजली टनल्स का मौके पर जाकर मुआयना किया, ताकि टनल्स में फंसे अफराद की तलाश और बचाव कार्रवाइयों में सहूलत फराहम की जा सके। डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और टनल इंजीनियरों पर मुश्तमिल ये टीम जुमे को काठमांडू पहुंची। नेपाल की हुकूमत ने भोटेकोशी नदी में सैलाब के ताल्लुक से ताजा अलर्ट जारी किया है और नदी के आसपास के लोगों को चौकस रहने की अपील की है। नेपाल के नेशनल

0: है कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
0: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन।

0: पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ यादों के सुरीले सफर पर चलेंगे। आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, कहते हैं ना कि समय कभी ठहरता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जैसे पंख लगे हों उसके, समय धीरे धीरे उड़ जाता है, लेकिन समय ही है जो अपने पीछे कुछ अनमोल निशान छोड़ जाता है यादों के रूप में। ये यादें कभी किसी पुरानी तस्वीर में मिलती हैं, कभी किसी खत में, या फिर कभी किसी सुंदर से सुरीले से गीत में। कुछ यादें मुस्कुराने को मजबूर कर देती हैं, कुछ यादें आंखों को नम भी कर देती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम उम्र भर अपने दिल के सबसे सुंदर और सुरक्षित कोने में सहेज कर संभाल कर रख देते हैं। और इन्हीं यादों के सुरीले सफर को हम पूरा करेंगे हमारे फिल्मी गीतों से।

कितना अजीब है ना, कुछ गीत कभी पुराने होते ही नहीं। समय बदल जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन भावनाएं वही रहती हैं। और इस गीतों के सफर का सबसे सुंदर साथी, सबसे प्यारा साथी है रेडियो। आज भी रेडियो पर जब ये गीत बजता है ना, तो जैसे लगता है कि समय कुछ पल के लिए ठहर सा गया है। यादों का कोई मौसम भी नहीं होता, कभी किसी खुशबू से किसी की याद आ जाती है, कभी किसी गीत से समय बीता हुआ लौट के याद आ जाता है। और रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि ये कोई गीत केवल सुनाता नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी यादों को फिर से जीने का मौका देता है। और यही तो खूबसूरती है हमारे पुराने गीतों में, कि जब इन गीतों को सुनते हैं, खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं और डूब जाते हैं उस मधुर धुन में।

कितना सुंदर लगता है ना कि जब कोई गीत ऐसा सुन लो और मन में किसी न किसी के प्रति विचार आने लगे, किसी की याद आने लगे, तो वो गीत सच में सार्थक हो जाता है। और सच पूछे तो जिंदगी की जो कश्मकश है, इसमें समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जिंदगी की जो सबसे अनमोल चीज़ है वो है ये यादें। कुछ दोस्तों की बातें, परिवार के साथ बिताए पल, बचपन की शरारतें और रेडियो पर सुने गए, सुनाए गए प्यारे प्यारे गीत, जो बार बार जीवन को उसी मुस्कुराहट के साथ जीने का मौका देते हैं। और ऐसे ही गीत हैं जो हमारे जीवन में ऊर्जा भर देते हैं। कि पुराने गीतों की यही विशेषता थी कि उनमें केवल मधुर संगीत ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी छिपी होती थी। और धुन, वो तो हम आप खुद ही गुनगुनाने लगते हैं जब हम पुराने गीतों को सुनते हैं।

कितनी सुंदर बात इस गीत के माध्यम से कही गई है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते रहिए, हालांकि आपके तरीके से दूसरे को नुकसान ना पहुंचना चाहिए। और सच पूछो तो ये गीत हमें फिर से पुराने दौर में ले जाते हैं, जहां यादों की कोई तस्वीर नहीं होती लेकिन उनका एक सुर ज़रूर होता है। और जैसे ही ये सुर सुनाई देता है, बीता हुआ समय फिर से हमारे सामने आ खड़ा हो जाता है। और रेडियो का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जमाने से इसकी आवाज़ ने न जाने कितने परिवारों की सुबहों को संगीत से सजाया और शाम को चाय के साथ अपनेपन का लुत्फ दिया। और यही वजह है कि जब हम पुराने गीतों को सुनते हैं, पुरानी धुनों को सुनते हैं, तो समझ में आता है कि इन शब्दों में, इन धुनों में कितना अपनापन है, कितनी सादगी है। और यही वजह है कि आज भी जब ये गीत रेडियो पर गूंजते हैं तो हम अनायास ही अपने बीते दिनों की ओर लौट जाते हैं।

सच कहते हैं दोस्तों कि अगर हम जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की आपाधापी में इतने फंसे ना होते तो शायद ये यादें भी हमारा सहारा ना बनती। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी जीते जीते हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हमें आराम करने का वक्त आता है तो हमारे पास कुछ काम नहीं होता, और उस वक्त हमारा सहारा होती हैं, उस वक्त हमारी साथी होती हैं हमारी ये सुंदर सी यादें जो बीते समय पर लौटने को मजबूर करती हैं। इसलिए ना कहते हैं कि जिंदगी का सबसे सुंदर खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि वो खूबसूरत पल हैं जिन्हें हम अपने अपनों के साथ जीते हैं। समय बीतता जाता है लेकिन यादें फिर भी हमारे साथ चलती रहती हैं, कभी किसी पुरानी फोटो में, कभी किसी मुस्कान में, और कभी किसी सुंदर से प्यारे से गीत में। और सच में संगीत अगर जीवन में ना होना तो ये यादें भी उतनी सुरीली, उतनी सुंदर, उतनी प्यारी नहीं हो पाती। संगीत ही है जो पुराने लम्हों को फिर से जीने को मजबूर कर देता है।

दोस्तों, यादों का ये सुरीला सफर यहीं विराम लेता है। उम्मीद है कि आज के इन गीतों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखेरी होगी और आपकी कुछ अनमोल यादों को फिर से आपसे मिला दिया होगा। कहते हैं जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, इसलिए हमेशा अपने अपनों के साथ बिताए हर उस पल को सजो के रखिए, क्योंकि ये वही पल हैं जो आगे आने वाली जिंदगी में हमेशा आपको जिंदा दिल रखेंगे, आपके जीवन में ऊर्जा भरते रहेंगे। और अब विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त केवी पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: भारत सरकार ने देश को एक वैश्विक खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रदेश का एमएसएमई विभाग किस तरह से ईडा और इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, कैसे प्रदेश वाराणसी और चित्रकूट के खिलौनों को तकनीक से जोड़कर विदेशों तक पहुंचा रहा है, साथ ही गुणवत्ता मानकों, नई तकनीक, ऑनलाइन बाजार, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं को इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त और निदेशक के विजेंद्र पांडियन जी। सर, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: भारत सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के माध्यम से देश को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई भाग क्या भूमिका निभा रहा है?
3: देखिए, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर के रूप से है। 96 लाख के ऊपर का एमएसएमई यहाँ रजिस्टर्ड है। लगभग 1 करोड़ का एमएसएमई यहाँ काम करते हैं और यहाँ तो तकरीबन 14 से 20% एक्सपोर्ट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रहता है और

0: बहुत सारे आइटम्स में 60-70% तक कंट्रीब्यूशन रहता है वैसे कारपेट टेक्सटाइल इत्यादि का। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ है ज्यादातर एमएसएमई ड्रिवन है। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार यहाँ एमएसएमई से मिलता है, इसलिए तो एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे वाइडर है।
1: जी, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना जो है सर, उसके तहत पारंपरिक जो खिलौने हैं उनको और जो आधुनिक खिलौने को निर्माण है उसके बीच किस तरह का तालमेल स्थापित किया जा रहा है और इसको और विकसित करने के लिए क्या योजना अपनाई जा रही है?
0: देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे योजना चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उसका अच्छा योजना के रूप से फैल गया था। इस पे हम लोग 162 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, हर जनपद में कम से कम एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ जनपद में 2-3 भी है। मान लीजिए वाराणसी में बनारस साड़ी भी है, वहाँ का वुडन टाइज भी है और वहाँ मीनाकारी वर्क भी है, इसी टाइप का मल्टीपल प्रोडक्ट भी है। उसी पे 162 आइटम को हम उसका पूरा वर्क करते हैं, प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट में, इत्यादि में। उसमें बहुत सारे जगह हमारा ट्रेडिशनल टाइस भी है, यानी मान लीजिए तो लकड़ी से बना हुआ टाई है, आज का नहीं, सदियों से पूर्वजों ने कर करके जो अपने बच्चे के देते हैं। मान लीजिए बनारस में हमारा लकड़ी से बना हुआ टाई बहुत फेमस है, साथ साथ चित्रकूट में भी बनता है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। और कुछ नया सेगमेंट है, मान लीजिए झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, वहाँ स्टफ्ड टाइस बनाते हैं, और कुछ जगह मीरठ है, जलौन है, और बाकी जगह हमारा स्पोर्ट्स का टाइस बनता है। मतलब ये एक आधुनिक टाई भी है, पुराना भी है, वो दोनों का हमें नाता निभाना है, दोनों का कनेक्ट करना है। उस पर कितने ट्रेडिशनल आर्ट मेकर्स है, उन लोगों का हम नया तकनीकी हम समझाते हैं, कितने नया तरीके से टेक्निक कराने वाले उनको एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, इसी टाइप का हम दोनों को ब्रिज करने के एक तरफ एमएसएमई काम करते हैं।
1: जी, आपने वाराणसी के और चित्रकूट के पारंपरिक खिलौनों का जिक्र किया, तो इन्हें नई पीढ़ी और नए बाजारों से जोड़ने के लिए किस तरह की योजना अपनाई जा रही है?
0: देखिए, हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 4 तरह का हम इंटरवेंशन करते हैं। एक तो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग के इंटरवेंशन, जो पहले का जो कितने टेक्नोलॉजी कौन सी चीज में बना हुआ चीज है उसको प्रोडक्ट का बिल्कुल आधुनिक करते हैं, यानी जो यूज करने वाले पेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, मेक से लेके हम ध्यान देते हैं। और दूसरा उसका पैकेजिंग का है, आज का जो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, जो पैकेजिंग अच्छा होता है उसका ही बिक्री अच्छा होता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से हम करते हैं। दूसरा एक वर्टिकल हम काम करते हैं, उस पर हम मार्केट एक्सेस देते हैं, यानी ऑनलाइन में जोड़ते हैं उनका, अमेजन फ्लिपकार्ट से लेके जो कितने आधुनिक जो प्लेटफॉर्म होता है उनसे मार्केटिंग का व्यवस्था कराते हैं। तीसरा इन लोग का फंडिंग का व्यवस्था कराते हैं। हम लोग 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक का इस योजना का जो करने वाले का लाभ मिलता है, उससे 50 लाख तक हम सब्सिडी देते हैं, फाइनेंस से जोड़ते हैं, और उनका जगह भी चाहिए उसी के सबसे जगह भी व्यवस्था कराते हैं। इसी टाइप का हम 4 वर्टिकल में हम काम करते हैं, ताकि जो प्रोड्यूसर है उनका जो प्रोडक्ट से लेके, मार्केटिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, इवन जो उनका जगह है उसी के लेके जो भी समस्या है सबको एड्रेस कराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक लगभग 7 लाख लोग का हम इस पे आगे हम बढ़वा चुके हैं इस योजना।
1: जी, आपने पारंपरिक कारीगरों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी जिक्र किया, तो हमें ये बताएं कि जो आधुनिक डिजाइन है और पैकेजिंग है, इसके साथ साथ ऑनलाइन बिक्री से जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं?
0: देखिए, आज का मैक्सिमम जो डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं, यानी इंडिया के अंदर जो खरीदने वाले हैं, मैक्सिमम अभी ऑनलाइन में ही खरीदना पसंद करते हैं। और आज का 2-3 फेमस वेबसाइट है, पॉपुलर है, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, ONDC है, और बाकी मिंत्रा, बहुत सारे वेबसाइट्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो कितने भी जो पारंपरिक प्रोड्यूसर्स है उनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज कराते हुए इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑनबोर्ड कराने के लिए प्रयास करते हैं। 2-3 लोग के साथ हमारा डीप MOU भी साइन हुआ है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट के साथ हमारा एक माइक्रो वेबसाइट बनाने के लिए भी एक MOU साइन हुआ है। फ्लिपकार्ट में अभी एक ODOP के लिए अलग फ्लिपकार्ट ने एक साइट ही बना रखा है, और DTDC के साथ भी हमारा टाई अप है। DTDC तो कहीं भी पहुंचाना तो वो पहुंचा देता है, फिर यहाँ पोस्टल के साथ भी हमारा टाई अप है, पोस्टल भी कहीं भी किसी कोने से लेकर के एक जगह पोस्टल का पहुंचा देता है। इसी टाइप का जो कितने भी माध्यम हम अपना सकते हैं उतने अपनाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो गाँव में बनाते हुए प्रोडक्ट भी आज के शहर में और इवन विदेश में जो रहने वाले कस्टमर का भी, ग्राहक का भी पहुंच जाए।
1: जी, आपने जिक्र किया वित्तीय सहायता का, तो खासकर जो इस खिलौना बनाने के जो कारीगर हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है और किस तरह की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही है विभाग की ओर से?
0: देखिए, प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रशिक्षण। हम तो 3-4 तरह का योजना के अंदर प्रशिक्षण करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है, जो कितने लाभार्थी होते हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग आधुनिक इंस्टीट्यूट से देते हैं। मान लीजिए हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हो गया और निफ्ट हो गया, जो कितने इंस्टीट्यूट है हमारा नेशनल लेवल का जो ग्रेडर इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझ लें। दूसरा योजना हमारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसका अंदर जो 25 ट्रेड हैं, मालाकार से लेके, मूर्तिकार से लेके, बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, उन लोगों को भी 10 दिन का हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ टाइप कराते हुए देते हैं। ये 2 योजना तो हम करते हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति लोग का और पिछड़ा वर्ग जो लाभार्थी का अलग ट्रेनिंग 4 महीने का कोर्स हम कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ भी टाइप कराते हुए करते हैं और

0: सरकार का संस्था के माध्यम से भी टाइप कराते हुए करते हैं। इसलिए स्किलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उस स्किलिंग में बहुत सारे चीज़ वो अपग्रेड कर देता है, और स्किलिंग के बाद वह साथ साथ हम लोग RPL सर्टिफिकेट एक इश्यू करते हैं, यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल जो उसका कार्मिक होगा, आर्टिसन होगा, कारीगर होगा, उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं रहता है, उसके वजह लोन नहीं मिल पाता, इंस्टीट्यूशनलिस्ट नहीं आ पाते हैं। हम लोग उनका RPL सर्टिफिकेट दिलाते हैं, उसी की वजह उनका आगे भी भविष्य के लिए एक अच्छा एक रास्ता खुल जाता है।
1: जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारा फोकस करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो युवा उद्यमी इस खिलौना निर्माण के बिजनेस में आना चाहते हैं या खिलौना निर्माण शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं हैं, और खासकर प्रोत्साहन राशि के तौर पर जैसे आपने लोन का जिक्र किया, ऐसे कौन कौन सी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसके बारे में?
0: उत्तर प्रदेश के MSME विभाग ऐसे विभाग है, तकरीबन 7 योजना हमारा है, तो आप लाभ ले सकते हैं। खासतौर पर स्टार्टअप कंपनी है और नया पीढ़ी किस पे आने चाहते हैं, ताकि इस पे मोटा मोटा बता दूं, ये जो आपका जो खिलौना का जो बिजनेस है, वो इसका इंडिया का जो बिजनेस है 1.9 बिलियन US डॉलर का मार्केट है अभी इस समय में, वर्तमान समय। अभी आने वाले तो ये 3 साल में ये बढ़ने वाले 4.6 बिलियन डॉलर का, और इसका हर साल कम से कम 10% बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ रही है। यानी ये सेक्टर फ्यूचरिक सेक्टर है, और एक इसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाली है। और इस पे और एक अच्छाई भी है, जो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से बाकी कंट्री से इंपोर्ट होता था, वो अभी इंपोर्ट भी कम होने लगा, ताकि लोकल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उसका मार्केट के कैप्चर करना शुरू कर दिए। अभी फिलहाल हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंपोर्ट के लिए मेरा $370 मिलियन पिछले साल था, इस साल घट के हमारा 230 हो गया, वो घट रही है। यानी जो लोकल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसे ध्यान रखते हुए कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी युवा शुरू करने चाहते हैं, मैं सलाह देता हूं, ये हमारा स्कीम है CM युवा योजना, उसका अंदर 5 लाख का लोन आपका बिना ब्याज का, बिना गारंटी का मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति, और केवल कक्षा 8 पास हो, वो एलिजिबल है। ऑनलाइन में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगता है, 4 साल का ब्याज 0 है, और आपका कोई गारंटी भी नहीं लगेगा, और ओवर एंड अबो 10% आपको सब्सिडी भी सरकार देती है। यानी आप लेते हैं हमसे 5 लाख रुपया, आप वापस करते हैं केवल 4.5 लाख रुपया 4 साल के अंदर इस किस्त में। ये तो 5 लाख तक का है, उससे ज्यादा किसको चाहिए? मान लीजिए 10 लाख का किसी को योजना चाहिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त योजना है, उस पर भी ले सकते हैं, उस पर भी आपका 10% का अनुदान मिलेगा। और आप किसी का 25 लाख चाहिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 25 लाख तक का आप लाभ ले सकते हैं, और ज्यादा भी बड़े स्केल में करना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, उस पर 50 लाख तक का आप आराम से बिना गारंटी का कम सस्ते वाले ऋण का आप लोन ले सकते हैं। यदि आपको बड़े बिजनेस कराना है, उसको 20 करोड़ तक का SIDBI के माध्यम से वेंचरिंग कैपिटल का लोन आपको दिला दे। इसलिए 5 लाख के लेके अब 20 करोड़ तक का अनेक योजना है, अब किसी भी लेवल पे एंट्री के हिसाब से, आपका स्केल के हिसाब से आप उसको प्राप्त कर सकते।
1: महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए क्या कोई विशेष पहल की गई?
0: MSME में देखेंगे, MSME सेक्टर बेसिकली महिला ड्रिवन सेक्टर है उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर 70-80% हमारा जो इंडस्ट्री है महिला से बैकअप है। खासतौर पर ODOP सेक्टर है, इसपे 80% महिला इन्वॉल्व है, एंड महिला जो नेचुरली वो आर्टिस्टिक रहते हैं उसपे, इसलिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारा टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट में उनका आधुनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नेचुरली हम महिला के इसको आगे करते हुए ले जा रहे हैं। उनको नेचुरल रुचि भी है, तो साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करती है, और साथ अकेले हमारे विभाग नहीं, उस पे और एक विभाग का जो है NURLM कहता है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन का एक स्कीम चलता है, लखपति दीदी का योजना एक चलता है, उस पे भी बहुत सारे महिला समूह इसी से जुड़े हुए, समूह को भी हम लोग बनाने के लिए मदद किए। उन लोग महिला समूह बनने के बाद हम इंडस्ट्री विभाग मिलते हुए उनका प्रोडक्शन लाइन में आगे ले चलते हैं उसपे। इसलिए महिला का ड्रिवन और महिला बेस्ड सेक्टर ही है ये, इसलिए जो महिला का हमेशा आगे।
1: जी, आपने जैसे कहा कि स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जा रहा है और वो भी आगे रहे, तो MSME विभाग JIDA और InvestUP और अन्य विभागों के साथ मिलकर ये खिलौना उद्योग के इकोसिस्टम को कैसे विकसित करने में मदद कर रहा है?
0: देखिए, MSME और सारे जो नोएडा गिड़ा में क्या है ना, ये जो भी सेक्टर डेवलप होता है क्लस्टर में डेवलप होता है। मान लीजिए हमारा जो वेस्टर्न यूपी का है क्लस्टर है, खासतौर पे मीरठ एंड अराउंड मीरठ, हमारा गाजियाबाद के आसपास अच्छा खासा एक स्पोर्ट्स का क्लस्टर बनी हुई है। हमारा स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइस का भी वहाँ क्लस्टर बन गया है नेचुरली। और दूसरा क्लस्टर है हमारा वाराणसी मिर्जापुर से सटा हुआ इलाका में और चित्रकूट से सटा हुआ इलाका में, ये ट्रेड ट्रेडिशनल लकड़ी से बना हुआ क्लस्टर है, ये अच्छा से उभर के आ रही है वहाँ नेचुरली। वहाँ बहुत सारे लाखों संख्या में आर्टिजन्स इस पे शामिल है, और यहाँ बुंदेलखंड रीजन में झांसी, चित्रकूट और ललितपुर, इसी सेक्टर में सॉफ्ट टाइस का बनते हुए जो खिलौना है वो सेक्टर बन रहा है। हम लोग जो मेनली क्या है ना, जो जगह जगह पे, मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ईडा, ये तीनों लोग का प्रेजेंस अच्छा खासा है, उन लोगों के

0: स्टेट भी है, और उन लोग के पॉलिसी में हम रिक्वेस्ट भी किए हैं बहुत सारे पॉलिसी में इन लोग का जो टाई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आरक्षण कराने के लिए और साथ साथ सब्सिडी देने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे भारत सरकार का पॉलिसी कब भी आएगा उसको अपनाएंगे, और राज्य सरकार भी जल्दी पॉलिसी बनने के स्थिति पे है यदि हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बन जाएगा। अभी फिलहाल MSME पॉलिसी के हिसाब से हम आच्छादित कर रहे हैं उनको, जो भी लोग टाई मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है उनका जो जमीन खरीदने वाले में 100% स्टैंप का छूट मिलता है, और 25% हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, कितने भी उनका इक्विपमेंट्स लगा हो उसको कैपिटल सब्सिडी मिलता है, और यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट का चार्ज 100% गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। ये फिलहाल जो भी MSME सेक्टर है इतने तो वो ले सकते हैं, और साथ साथ हम ईडा से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से मदद लेते हैं इन लोग का अलाटमेंट में, जमीन अलाटमेंट, किसी को जमीन चाहिए उनका अलाट करने के लिए कोई दिक्कत है तो फिर उसको कोऑर्डिनेट कराते हुए उनकी जमीन भी अलाट करवा।
1: आपने नोएडा का जिक्र किया, तो वहां पे जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हुआ है, तो बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने में ये किस तरह से मदद कर रहा है?
0: देखिए जेवर तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप से उभर के आ रहा है, और सबसे बड़ा ये कमर्शियल कार्गो टर्मिनल का भी प्लानिंग चल रहा था। आप जान ही रहे हैं वहाँ का जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास इलाका का एक वरदान है जेवर एयरपोर्ट, और साथ साथ हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग का, MSME का भी वरदान है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है लार्ज, ताकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट है, ताकि हम तो चारों तरफ लैंड से बंधे हुए हैं, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए दो ही माध्यम है, यदि तो हम फ्रीट कॉरिडोर माध्यम से मुंबई तक का हमारा पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो लाइट वेट होता है हमारा हवाई अड्डा के माध्यम से भेज सकते थे। अब ये एयरपोर्ट का कार्गो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह हमारा एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत गुना बढ़ गया है। अभी तो सॉफ्ट टाइस है, स्टफ टाइस है, जो कितने लाइट वेट टाइस है, आराम से हम हाई वैल्यू आइटम के साथ साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक तरफ वरदान है हम लोग का, इस पर अच्छा से लिवरेज करेंगे।
1: आपके अनुसार कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो भविष्य में खिलौना निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेंगे?
0: देखिए ये इस पे दो क्लस्टर में नेम कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल रूप से वाराणसी एक नेचुरल क्लस्टर के रूप से उभर के आ रहा है, और वहाँ भी एक इंटरनेशनल एयर कार्गो बन रहा है, इसलिए वहाँ से एक्सपोर्ट करने के भी संभावना ज़्यादा है। वाराणसी अपने आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टशिप के लिए पहचान है, लाखों लोग पहले से जुड़ चुके हैं, इसलिए उसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और नया जो आधुनिक टाइज जाने के लिए वो नोएडा एंड अराउंड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हब बन रहा है मेरा, जो मीरठ के आसपास स्पोर्ट्स के भी कुछ आइटम्स वो इस पे खिलौना में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ हमारे अपैरल का भी अच्छा बड़ा क्लस्टर है, इसलिए जो अपैरल से जुड़े हुए चीज को भी हम इसके खिलौना में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा अवसर, ये दो हमारा उभरते हुए क्लस्टर के रूप से आ रहा।
1: सर आपने बताया कि जिस तरह से बड़े क्लस्टर के रूप में ये निकल रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार के रूप में आप देखते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है रोजगार आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा?
0: देखिए MSME का एक एवरेज एक रेशियो होता है, एक छोटी सी भी माइक्रो यूनिट के टाइनी यूनिट्स कहते हैं, वो भी तो चार लोग को रोजगार देता है, और औसत हमारा MSME यूनिट का 7 लोग का रोजगार देने के लिए। अब मान लीजिए हमारा इसी सेगमेंट में 1 लाख भी यूनिट हमारा इस पे टाई मैन्युफैक्चर में खुल जाएगा, कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख लोग का आराम से 1 साल के अंदर उन लोग को रोजगार मिल सकता है 1 साल में, और भविष्य में कम से कम मान के जा रहा हूं तो 50 से 60 लाख युवा के लिए रोजगार देने का अवसर इस पे है अवेलेबल है।
1: निश्चित रूप से आपने जैसे बताया उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में उभरेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी देगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की
3: वाणी लखनऊ है। पेश है उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत। आइए सुनते हैं जासूसी सीरीज शह और मात का दूसरा एपिसोड मैं कौन हूँ। तदवीन अनाहिद हसन की, तहरीर और पेशकश है आसिफ इकबाल की।
5: सामईन आदाब, आज के हमारे उर्दू प्रोग्राम में किस्तवार जासूसी सिलसिले की दूसरी किस्त पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है शह और मात। आज की कहानी का उन्वान है मैं कौन हूँ। पेश है इसकी अगली किस्त। इस जासूसी सीरीज के तमाम किरदार और वाकयात तख्लीकी हैं। इनका किसी भी हकीकी शख्स, वाकये या मकाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है।

0: अगर किसी भी किस्म की मुशाबहत पाई जाती है तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए।
1: पालो सच्चाई को, जुर्म के काले पर्दों में अदल आया हो जाएगा, फिर भी दुनिया के बाजारों में।

0: अभी तक आपने सुना
1: डिटेक्टिव सैयद हसन मुज्तबा और कामरान खान हुकूमत की तरफ से किसी खास मिशन पर लखनऊ भेजे गए थे। जांच के सिलसिले में दोनों मूसाबाग के पास एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वहां दोनों को एक तहखाना मिलता है और वहीं कुछ बदमाश दोनों पर हमला करते हैं। इस अमल में एक सिपाही जख्मी हो जाता है। सुल्तान के आदमी किसी को पकड़ कर लाए थे और बांध कर अजियत दे रहे थे। सुबह होटल में दोनों को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें कोई अजनबी उनको धमकाता है और ललकारता है कि मैं कौन हूं, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अब आगे
2: बक रहा है ये अजनबी क्या कुछ, खुदा करे न समझे कामरान कुछ भी। साहब अब ये क्या बला है?
3: ये हमारा हदफ है कामरान, यही हमारी मंजिल है। ज्यादा दानिशमंदी में इसने अपने आप को सामने कर दिया है।
2: तो अब
3: फिलहाल हमको ये होटल छोड़ना पड़ेगा। बाहर ऐसे निकलेंगे कि किसी को खबर ना हो।
2: तो गायब हो जाते हैं।
3: बेटे हंसो नहीं, पहली बार काम की बात की है। सुनो, इस होटल में एक म्यूजिकल ग्रुप ठहरा हुआ है जिसको आज 10 बजे निकलना है, हम उन्हीं के साथ निकलेंगे।
1: हसन तुरंत जाकर उस जमात से मिला, उनको तसल्ली देते हुए पूरी बात तफसील से बताई। उनका रहनुमा दोनों को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गया। 10 बजते ही दोनों तबला और हारमोनियम लिए बाहर निकले और वैन में बैठ गए। वो वैन होटल से निकल गई। हजब तबक को बाहर दो लोग निगरानी के लिए खड़े थे, लेकिन वो धोखा खा गए। कुछ दूरी पर जाकर दोनों वैन से उतर गए। कामरान बोला,
2: शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम।
3: बड़ा अच्छा शेर है, एक शेर मैं भी तुमको सुनाता हूँ।
2: जी इरशाद हुजूर।
3: कभी मैं देखता हूँ उसकी रहमत, कभी मैं अपनी चादर देखता हूँ, उस रब का भी तो शुक्र अदा करो जिसने इस मुसीबत से हमें बचाया।
2: वैसे ये तो सच है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है।
3: कामरान कॉफी पीनी है?
2: जब आपको पता है मैं कॉफी नहीं पीता, फिर पूछकर मेरी जान जलाना मकसद है क्या आपका?
3: वो क्या है ना, मैं अलशिफा को बुलाने जा रहा था कॉफी पे।
2: अलशिफा? अलशिफा कब कब कहाँ से बुलाने जा रहा है?
3: बस थोड़ी देर में।
2: हाँ हाँ फिर तो सही है। वैसे जनाब मैं सच बताऊँ ना, तो ऊपर वाले ने क्या शय बनाई है कॉफी भाई, क्या लज्जत है, क्या सुकून है कॉफी में। इतनी पेचीदगी में सर दर्द हो रहा है, अब तो कॉफी लाजिम है।
3: नौटंकी कहीं का।
1: हसन ने अलशिफा को फोन किया और निशातगंज के एक कॉफी हाउस में मिलने को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुरगंज में सुल्तान के ऑफिस में,
4: आज मैं इसको इतनी अजियत दूंगा कि आज या तो ये बोलेगा या फिर इसकी आंखें बंद होंगी। बोल, कहां है मेरा सोना?
1: वो आदमी बोलने की हालत में नहीं था, उसके मुंह से कुछ ना निकला। सुल्तान ने उसको बिजली के झटके दिए और बोला,
4: बोल दे, जिंदगी कीमती है या सोना, बोल देगा तो बच जाएगा।
5: बेच दिया।
1: इतना सुनकर सुल्तान आपा खो बैठा। उसने बिजली के तार उस शख्स के हलक में डाल दिए, बेचारा तड़प कर फौत हो गया।
5: सुल्तान भाई, इसकी तो रूह जिस्म से परवाज कर गई है।
4: फेंकाओ इसके बेजान जिस्म को कहीं कचरे में, और खबरदार सोने की बात कहीं बाहर न जाए, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए।
5: अच्छा सुल्तान भाई, जैसा आपका हुक्म।
1: तभी सुल्तान का फोन बजा।
4: सुल्तान बोल रहा हूँ।
6: सुल्तान की तुमको बोला था उन दोनों को ठिकाने लगाओ, काम आखिर

0: मालिक, मैंने अपने बंदे भेजे थे, चारों काबिल थे, वो एकदम से पुलिस वाले आ गए।
1: बकवास बंद कर। तू जानता भी है किससे पाला पड़ा है? सामने तेरा बाप डिटेक्टिव हसन है।
0: डिटेक्टिव हसन, वही मशहूर जासूस, वो यहाँ क्या कर रहा है?
1: अंडे खाने आया है यहाँ, बेवकूफ। कल अगर मैंने अपने आदमी ना भेजे होते तो तुम्हारे चारों आदमी आज जेल में होते।
0: मैं माफी मांगता हूँ मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा।
1: होना भी नहीं चाहिए, गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं है। हसन हमें दीवानों की तरह ढूंढ रहा है। मोहन को बोलो कुछ दिन के लिए काम रोक दे, समझे?
2: दूसरी तरफ निषादगंज के कॉफी हाउस में एक टेबल पर हसन और कामरान बैठे थे। वह काफी चहल पहल हो गई थी। कामरान चहकते हुए किशोर कुमार का गाना गुनगुना रहा था।

0: खबर।
1: ये जो तुम्हारा मुंह है ना, कभी इस पर ढक्कन भी लगा लिया करो, 2 मिनट तुमसे चुप नहीं बैठा जाता।
2: कामरान चिढ़कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला,
3: मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचाकर दामन, मैं हूँ गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, मेरा बैठना अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा फिर मैं बाहर ही चला जाता हूँ।
2: असल में कामरान काफी पीने से बच रहा था, उसे बाहर जाने का कोई बहाना चाहिए था। हसन की बातों से उसे मौका मिल गया और वो बाहर जाकर चाय पीने लगा। हसन कॉफी हाउस में बैठा इडली सांभर खा रहा था। उधर कामरान को चाय पीकर रूहानी तस्कीन हासिल हुई। तभी कामरान ने अलशिफा को आते देखा। हसबे आदत अलशिफा को देखते ही कामरान का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था।
3: आदाब अर्ज़े मोहतरमा।
4: आदाब।
3: मैंने हसन को बोला था कि कॉफी पर मैडम को जरूर बुलाइए, और अच्छा हुआ आप आ गई।
4: सर कहाँ हैं?
3: आइए अंदर चलते हैं, हसन अंदर ही है।
4: गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे कॉफी बहुत पसंद है।
3: और मुझे भी।
4: अच्छा।
2: हसन कुछ कहने ही वाला था मगर कामरान ने हसन की बात काट दी। हसन ने कॉफी का ऑर्डर दिया और आंखों ही आंखों में कामरान को दफा होने का इशारा किया। कामरान ने इनकार करने का इशारा किया।
4: अरे कुछ बोलेंगे भी, आप लोग तो एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं। सर आप बताइए, कोई खास बात तो होगी, सिर्फ कॉफी पीने को तो आपने नहीं बुलाया होगा।
2: हसन कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुनील था।
5: हेलो।
3: हेलो सर, इंस्पेक्टर सुनील बोल रहा हूँ। सर यहाँ कुड़िया घाट पे हमें एक आदमी की लाश मिली है, फोरेंसिक वाले आ चुके हैं, आप कहें तो हम जांच के बाद लाश उठा लें।
5: नहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
2: फोन काट कर हसन कुछ सोचने लगा। कामरान और अलशिफा हसन को ही देख रहे थे। फिर हसन ने जेब से अखबार का एक टुकड़ा निकाला।
5: अलशिफा ये इकलौता अखबार है, इसमें बाराबंकी, सीतापुर और काकोरी के गांवों में नकली गहनों की कुछ खबरें छपी हैं।
4: अच्छा।
5: मैं चाहता हूँ तुम बाराबंकी जाकर पूरे मामले की तफ्तीश करो, मुझे फैक्ट्री जाना है और उस सिपाही से भी मिलना है जो कल जख्मी हुआ था।
4: जी सर।
2: इतनी देर में कॉफी भी आ गई।
3: मैं भी चला जाता हूँ मैडम के साथ।
2: कामरान ने कॉफी का एक घूंट लिया जो बमुश्किल उसके गले से नीचे उतरा। हसन और अलशिफा कॉफी पी रहे थे।
5: तुम क्या करोगे जाकर, तुम मेरे साथ चलो।
3: अरे अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो और उसने मैडम को भी देख लिया हो तो हो सकता है हमला हम पर भी हो जाए, तो मैडम का अकेले जाना ठीक नहीं है।
4: सर वैसे ये एकदम से बाराबंकी कहाँ से आ गया? इसमें तो लिखा है नकली गहने बेचने वाला पकड़ा गया, कोई सूरज नाम का बंदा है शायद।
2: हसन ने जवाब ना दिया, वो कामरान की बातों को सोच रहा था। भले ही कामरान शरारत में बोल रहा था मगर उसकी बातों में वजन था। अलशिफा को अकेले भेजना ठीक नहीं था। हसन बोला,
5: अलशिफा मुझ पर भरोसा करो, कामरान को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा।
2: कामरान का जैकपॉट लग गया था, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। दोनों ने

0: पी ली थी। कामरान की कॉफी वैसे ही रखी रही।
1: चलिए मैडम जल्दी चलते हैं, वरना देर हो जाएगी।
2: पहले अपनी कॉफी तो खत्म करिए।
1: अरे हम यहाँ मिशन पर आए हैं, कॉफी पीने नहीं।
0: कामरान की ओवर एक्टिंग से हसन खार खा रहा था। अलशिफा अपनी कार से आई थी, वो कार से निकलते हैं। दोनों के जाने के बाद हसन भी सिपाही से मिलने अस्पताल निकल गया। कार में कामरान का जोश उरूज पर था।
1: वैसे आपको शेरो शायरी में दिलचस्पी तो है ना?
2: जी सुनती तो हूँ।
1: दाग दहलवी का क्या खूब शेर है, उफ खुदाया, आईना देख के कहते हैं सवरने वाले, आज बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।
2: बहुत खूब, मैं भी आपको परवीन शाकिर का एक शेर सुनाती हूँ। अर्ज किया है
1: जी इरशाद।
2: हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियाँ नहीं खुलती।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बजा फरमाया आपने।
0: अलशिफा के शेर ने कामरान के जोश पर पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में हसन सिपाही की आयादत के लिए आया था। सिपाही अब खतरे से बाहर था और अच्छी हालत में नजर आ रहा था। उसे बेहतर हालत में देखकर हसन को सुकून हुआ। हसन बोला,
3: जवान इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। अब कैसी तबीयत है?
4: मैं ठीक हूं साहब, कुछ बताना चाहता हूं। कल रात को खिड़की के बाहर मैंने समर सिंह को देखा था। सुल्तान का आदमी है, खूब पहचानता हूं।
3: सुल्तान? ये सुल्तान कौन है?
4: ठाकुरगंज का बदमाश है साहब, बड़े लोगों की सोबत में उठता बैठता है, ऊपर तक पकड़ है इसकी। मेरा नाम न लेना साहब।
3: ठीक है जवान, अब आराम करो, फिर मिलेंगे।
0: अस्पताल से हसन कुड़िया घाट के लिए निकला। कुड़िया घाट पर पुलिस पहुंची हुई थी और पुलिस को लोगों को संभालने में दुश्वारी हो रही थी। लोगों का मजमा तमाशा देखने जमा हो रहा था। वहां इंस्पेक्टर सुनील मुंतजर था।
3: बोलो सुनील, क्या मामला है?
1: सर ये डेड बॉडी किसी राघव नाम के आदमी की है, लोग बच्चा भाई बोलते थे, सुल्तान का आदमी है।
0: एक घंटे के अंदर ही दो बार सुल्तान का नाम सुनकर हसन को जैसे झटका लगा।
3: इस सुल्तान के बारे में क्या जानते हो सुनील?
1: सर ये एक मुजरिम है, कई बार पकड़ा गया, दो बार तो मैंने ही पकड़ा था, कहीं लंबी सेटिंग है इसकी, हर बार बच निकलता है। ठाकुरगंज में इसकी वेल्डिंग की दुकान है। दुकान तो दिखावे के हिसाब, मगर मेरे मुखबिरों ने बताया है कि कसीनो का काम करता है, सब दो नंबर की कमाई है।
3: और ये बच्चा भाई, इसका क्या किस्सा है?
1: अरे सर अकेला था, घर पर बस माँ है इसकी, बेरोजगार था, सुल्तान की वेल्डिंग की दुकान में काम करता था, कभी किसी जुर्म में तो नहीं पकड़ा गया, हो सकता है सुल्तान ने किसी जुर्म में मुलव्वस किया हो।
3: ठीक है सुनील, लाश को भेज दो, मैं तुमको फ्री होकर फोन करूंगा, अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, पता लगाओ फैक्ट्री किसके नाम पर है।
1: ठीक है, ओके सर।
0: हसन के अंदर कुछ चल रहा था जो उसने जाहिर ना होने दिया। वो फैक्ट्री के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अलशिफा और कामरान बाराबंकी के उस थाने में पहुंचे जहां सूरज बंद था। दोनों को कैदी से बात करने की इजाजत मिल गई थी।
1: सूरज, हम दिल्ली से आए हैं, जानना चाहते हैं तुमने नकली गहने क्यों बेचे। ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी रिपोर्टर हैं, तुम्हारी खबर चलाकर तुमको इंसाफ दिलाएंगी।
5: इंसाफ? कल से पुलिस को बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस लालच में आकर बेच दिया था, मुझे क्या पता वो नकली है।
2: साफ साफ बताओ, तुमको ये गहने किसने दिए थे?
5: बच्चा भाई ने।
0: सूरज शुरू से सब बताता चला गया कि बच्चा भाई ने गहने लाकर बेचने को दिए थे, उसे तो बस कमीशन मिला था।
1: अब तो मुझे ये बात हसन को बतानी ही होगी।
0: कामरान ने फोन करके हसन को पूरी बात बताई।
3: हाँ कामरान, बोलो क्या बात है?
1: सर ये सूरज नाम का बंदा किसी बच्चा भाई का नाम ले रहा है, उसी ने नकली गहने लाकर इसे बेचने को दिए थे।
0: बच्चा भाई का नाम दिन का तीसरा धमाका था हसन के लिए।
3: बहुत अच्छे कामरान, वापस आकर मुझसे मिलना।

0: अभी मुझे फैक्ट्री जाना है।
1: बात करके हसन सीधा फैक्ट्री पहुंच चुका था। वहां पुलिस ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया था। हसन ने तहखाने का मुआयना किया। वहां हसन की मुलाकात फॉरेंसिक वालों से हुई।
0: कुछ पता चला यहाँ की जमीन और दीवारें क्या बोलती हैं?
2: सर, यहाँ हमें कुछ कतरे कॉपर के मिले हैं, कुछ केमिकल के बारीक कतरे मिले हैं जिनको जांच के लिए लैब भेजा है। उम्मीद है शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी।
1: सुराग की कड़ियां हसन के दिमाग में जुड़ रही थी। बजाहिर वो एकदम मुतमईन था। हसन ने फोन निकाला और कामरान को फोन किया।
3: हेलो,

0: क्या बोलती हैं?
1: सर, यहाँ हमें कुछ खतरे कॉपर के मिले हैं, कुछ केमिकल के बारीक खतरे मिले हैं जिनको जांच के लिए लैब भेजा है। उम्मीद है शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी।
2: सुराग की कड़ियां हसन के दिमाग में जुड़ रही थी। बजाहिर वो एकदम मुतमईन था। हसन ने फोन निकाला और कामरान को फोन किया।
3: हेलो, हाँ मोहतरम बोले।
0: कहाँ हो अभी?
3: बस बाराबंकी से निकल चुके हैं।
0: अलशिफा तो ठीक है ना?
3: अब बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ठीक हैं। मैं उनके साथ हूँ ना।
0: तभी पूछ रहा हूँ, वो ठीक है ना?
3: अरे कुछ तो दोस्ती की लाज रख लेते। सही कहा था खुमार साहब ने, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए।
0: ज्यादा बको मत, आज हम पुलिस के मेहमान घर में रुकेंगे। मैसेज से पता और लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पहुंच जाना।
2: रात को हसन और कामरान दोनों खाना खा रहे थे, दिन भर की भागदौड़ का किस्सा एक दूसरे को सुना रहे थे। तभी एकदम से हसन का फोन बजा। फोन करने वाला इंस्पेक्टर सुनील था।
0: हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सुनील, कैसे याद किया आपने इतनी रात में?
3: सर, आप पहले जिस होटल में ठहरे थे और जिस कमरे में थे, वहाँ हमला हुआ है, गोलियां चली हैं। क्या आप आना चाहेंगे?
0: बस थोड़ी देर में आते हैं। कामरान, हम जिस होटल में थे, जिस कमरे में थे, वहाँ गोलियां चली हैं।
3: तभी आपने पहली फुर्सत में होटल छोड़ दिया था। अब वैसे एक कदम आगे की सोचते हैं आप।
2: खाना खाकर हसन और कामरान उसी होटल में पहुंचे। कमरे का नजारा देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बंद कमरे में दरवाजे के पीछे से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हों। कमरे की दीवारें इस बात की गवाही दे रही थी। तभी इंस्पेक्टर सुनील ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर लिखा था, मैं कौन हूं। कौन था ये अजनबी जो हसन और कामरान के पीछे पड़ चुका था? सुल्तान का क्या हुआ? क्या अब वो सीधा कानून की गिरफ्त में आने वाला था? क्या था नकली गहनों का राज? जानिए हमारे अगले एपिसोड में।
4: डरती हैं अहले जुर्म हसन कामरान से, शमशीर जब भी निकली है उनके म्यान से, छुप जाए कहीं जाके दुनिया की नजर से, मुजरिम को ढूंढ लाएंगे सारे जहां से।
5: इस ड्रामे को अपनी खूबसूरत आवाजों से आरास्ता करने वाले सभी लोगों के इसमें गिरामी और किरदारों का तारुफ इस तरह है। रावी सुरेंद्र राजेश्वरी, सैयद हसन मुश्तबा आसिफ इकबाल, कामरान खान शमसुल आरफीन, सुल्तान मोहम्मद उमेर, अलशिफा शाइस्ता जाहिद, अजनबी सरगना जमशेद सिद्दीकी, सुल्तान का आदमी डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर, तहरीर और पेशकश आसिफ इकबाल की है। सामईन अपनी कीमती आरा आप हमको जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157, 7991778157। अब आज के उर्दू प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आदाब।
6: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम रही थी जासूसी सीरीज शह और मात का दूसरा एपिसोड मैं कौन हूँ। आवाज थी सुरेंद्र राजेश्वरी, जमशेद सिद्दीकी, आसिफ इकबाल, शमसुल आरफिन, शाइस्ता जाहिद, सईद अख्तर और मोहम्मद उमेर की। तदवीन थी अनाहिद हसन की और पेशकश आसिफ इकबाल की। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश था।
7: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें,
11: 0542227658।

आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं राम जन्म भारती। कार्यक्रम में सबसे पहले इनके स्वर में आपको सुनवा रहे हैं कजरी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे राम जन्म भारती। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हिंदी सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।
1: बच्चों नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं, होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
2: Yes, sir.
1: तो आप सीखेंगे ना?
2: Yes, sir.
1: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब, दूसरी बार फिर लिखिए, होंगे कामयाब, और तीसरी बार हम होंगे कामयाब एक दिन।
2: हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: हो मन में है विश्वास,
2: हो मन में है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,

0: हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा लिखिए, होगी शांति चारों ओर।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास।
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: डाल हाथों में हाथ।
1: डाल हाथों में हाथ।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास।
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज।
1: नहीं डर किसी का आज।
0: नहीं भय किसी का आज।
1: नहीं भय किसी का आज।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन।
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास। पूरा है विश्वास।
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन।
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
1: यस सर।
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी ना दिनक दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बांट देख लीजिए, इसकी बोल बांट कैसे है।

0: एक दिन,
1: एक दिन
0: हो हो मन में है विश्वास,
1: हो हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है?
2: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवें काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो तीन।

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या हैं?
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है। तो नलिनी जी आप सिखाइए, एक दो तीन चार।

0: तो ये दूसरा अंतरा आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या हैं?
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो तीन चार, एक दो तीन, नहीं डर, एक दो।

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे गा, और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: Yes, आप
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी, 1 2 3 4।

0: बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: हैप्पी बर्थडे माय डियर।
4: नागुन।
3: अरे ये क्या?
5: एब्सोल्यूट।
4: मेरी नई स्कूटी के लिए।
5: वो बनो से आनी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
4: मतलब?
5: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
4: दादू बन गई सियानी।
6: गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप?
4: स्कूटी।
5: RBI कहता है इनसे सुनिए,
7: जानकार बनिए,
8: सतर्क रहिए।

श्रोतों, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। और आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ पुराने सदाबहार गीत, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पुराने गीतों की खासियत क्या है। जी हाँ, समय बदलता रहता है लेकिन इन पुराने गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती। हर बार जब ये गीत सुनते हैं तो एक बार फिर से मन में ताजगी भर जाती है। तो चलिए, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में शर्मीली फिल्म से। इस गीत को लिखा है नीरज ने और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

सच में कुछ धुनें केवल कानों तक ही नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। और ऐसे गीत सच में फिल्म संगीत के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में है। अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना गाइड फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सच में फिल्म संगीत का जो सफ़र है वो बहुत ही सुरीला होता है और हमारा फिल्म संगीत बहुत समृद्ध भी है। हर तरह के गीत इसमें आपको मिल जाएंगे और इन सुरों के ऐसे गीत हैं जिनकी सादगी हमें अंदर तक लुभा जाती है। रिश्तों की गर्माहट है, भावनाओं की सच्चाई भी है और संगीत जगत के कुछ ऐसे गीत हैं जो पीढ़ियों का फासला भी मिटा देते हैं। चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, जब ये गीत बजते हैं तो हर किसी की जुबान पर आ जाते हैं, यानी हर कोई गुनगुनाने लगता है। आइए अब सुनते हैं साधना सरगम की आवाज़ में कलाकार फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इंदीवर ने और तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

दोस्तों, वास्तव में पुराने गीतों में जो नशा है ना, वो सच में सर चढ़कर बोलता है। और आपने भी गौर किया होगा कि फिल्में बदलती रहीं, दौर बदलता रहा, लेकिन इन गीतों का जादू आज भी उसी तरह बरकरार है। अभिमान फिल्म का ये गीत अब सुनिए लता मंगेशकर और मनहर उदास की युगल आवाज़ में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत एक बार फिर सचिन देव बर्मन का।

दोस्तों, गीतों के बोल पर अगर गौर करें तो कई बार ऐसा होता है कि शब्द दिल को छूते हैं, तो कभी धुनें मन को सुकून देती हैं, और जब इन दोनों का सुंदर संगम हो जाता है तो ऐसे ही सदाबहार गीत निकल कर आते हैं। और

संगम हो जाता है, तो ऐसे ही सदाबहार गीत निकल कर आते हैं। और अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है असली नकली और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, संगीत का ये सफ़र निश्चित रूप से आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में ज़रूर अपना मेल भेजें और अपने सुझाव, अपनी पसंदगी, अपनी नापसंदगी सब कुछ लिखें। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है और संगीत का ये कार्यक्रम झंकार आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
0: श्रोतो, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भाग

0: संस्कृतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTS और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम
3: पर दादी हाँ आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
9: नमस्ते सर नमस्ते
8: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
9: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के

0: लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शन और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम

0: बल्कि करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास के एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए, भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई, और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया

अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है

क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहाँ एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं।

साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कल्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी

0: हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरवैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति।

0: जी हाँ साथियों, इसी दोस्ती की डोर से हम और आप बने हैं और आज हम चले आए आपसे मिलने। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश और फोन नंबर तो आपको मालूम है ही, 0542 वाराणसी का एसटीटी कोड नंबर के साथ 2221052
1: और 222-10-50।
0: हेलो फोन इन फरमाइश 0542-222-10-52
1: और 2221052।
0: हेलो, मैं आपका रेडियो साथी सिद्धार्थ, नमस्कार। आप

0: पता करते हैं कि फोन लाइन पर पहले हमारे साथी कौन है। हेलो
1: हेलो सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी, और हम जानना चाहेंगे कि हमसे कौन जुड़े हैं।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: बहुत दूर से आपने फोन किया है।
1: हाँ जी सर, हाँ जी।
0: इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: और हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं सर, ये फोन इन कार्यक्रम ही ज्यादा सुनते हैं और अच्छे स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं सर।
0: जी किस माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
1: न्यूज ऑन AIRF की मदद से सुनते हैं सर।
0: जी बहुत बहुत आभार कि समय निकालकर आप अपने व्यस्ततम समय में से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं।
1: सर मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और साथ में खेती भी है सर।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: खेती भी करते हैं और पेंटर भी हैं आप?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बहुत अच्छी बात है। और अब कौन से गीत की फरमाइश?
1: सर आप सुनवा दीजिएगा, रक्षाबंधन करीबी है
0: जी,
1: तो एक तिरंगा मूवी में है सर, एक सर बताना चाहेंगे, हम भी आपके वाराणसी घूमने गए थे, लगभग 3-4 महीने हो गए, तो बहुत अच्छा लगा था सर। वाराणसी की जो गलियां हैं
0: जी,
1: जो वहाँ भोले बाबा के दर्शन हुए, वो आज भी जहन में जिंदा है जी सर। और आप भी आया कीजिएगा कार्यक्रम में, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा आपको?
1: जी सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आपका और आकाशवाणी वाराणसी का साथ बना रहे, हम तो यही चाहेंगे और ये दुआ भी करेंगे।
1: जी सर, और हमारे और आपके माध्यम से पुनः हम भोले बाबा के चरणों में अपना शीश नमन करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं आपकी पसंद का ही ये गीत।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: इन फरमाइश वाराणसी के तमाम श्रोताओं को हमारा यानी कि सभी शंकर चंद्राकर का नमस्कार।
0: आप कहाँ से फोन कर रहे हैं साथी?
1: बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ पलारी ग्राम देवरी से। धन्यवाद हम तमाम श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक संदेश देना चाहते हैं सर जी। बरसात की रातों में मधमाती यादों में गुनगुनाते मन का एक गीत मैं भी हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे स्मृति में बसूं, मन में रचे सपनों की एक झलक मैं भी हूँ, मुझे बिसराना नहीं बद में भुलाना नहीं, तुम्हारे रचे इतिहास का एक पृष्ठ मैं भी हूँ, कृष्ण और सुदामा जी तुलसी और राम की गुरु और शिष्य की एक प्रीत मैं भी हूँ, जीवन में अलसाना नहीं बाप आपको तरसाना नहीं, उनके चरण कमलों की पावन धूल मैं भी हूँ, अपनों से दूर जाना नहीं थोड़े में इतराना नहीं, हर पल मुस्कुराने की एक सीख मैं भी हूँ, गुनगुनाते मन का एक गीत मैं भी हूँ, एक गीत मैं भी हूँ।
0: बहुत अच्छा प्रयास आपका, और आप ऐसा लगता है कि ये आपका शौक है
1: जी
0: लिखने का।
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है, इसको आप यूं ही बरकरार रखिए ताकि आपकी जो ये इच्छा है वो पूरी होती रहे। और अब अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी हम बलौदा बाजार में हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: टीचरों को अंग्रेजी का प्रशिक्षण देते हैं, हाउ टू टीच इंग्लिश इन हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल।
0: अच्छा अच्छा। और साथ में आप आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम भी सुन लेते हैं।
1: जी जी।
0: और आज किस गीत की फरमाइश है आपकी?
1: आज तो है फिल्म दादा की यशुदास की आवाज में दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुराते चल रही है, ये गीत की फरमाइश है सर जी।
0: फिल्म का नाम है दादा और आवाज यशुदास की है और गीत के बोल हैं दिल के टुकड़े। और अब आपके इसी गीत को हम सुनवा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे और भी श्रोता साथी आपकी पसंद के इस गीत को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत
1: तमाम श्रोताओं को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: जी सर, नमस्कार। जी
0: नमस्ते।
1: मैं अहमदनगर बजड़िया से बद्रुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ सर।
0: बजोडिया के हमारे साथी हैं और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सिद्धार्थ बोल रहे हैं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पहचाना।
1: बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है सर जी।
0: जी हाँ जी हाँ, और
1: पर
0: आप सबकी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत से आज इस कार्यक्रम में मैं शामिल हो पाया।
1: जी,
0: और अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: हम लोगों का सिंगार है तो काम बने वही बिनाई का काम होता है, बनारसी साड़ी का।
0: जी जी जी यही हम तो जानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता साथियों के लिए भी जानना जरूरी है और वो भी आपके मुंह से, ताकि वो आपका परिचय पा सकें। और साथ में आज ये जो त्योहार आपका है, जी, और आज के दिन बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल सर
0: और इसे ईद मिलादुन्नबी भी कहा जाता है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो हमारे और भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, सभी को आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: जी, और काम के

0: व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप जो आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
1: बिल्कुल सर, प्रोग्राम तो सुनते हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी,
1: और आप जब प्रोग्राम लेकर आते हैं तो सर और अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद आपका।
1: जो गीत के चुनाव रहता है ना
0: जी,
1: वो काफी बढ़िया रहता है।
0: बहुत बहुत आभार। बहुत मेहनत होती है, एक मेहनत के बाद ही एक कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष आते हैं और कोशिश पूरी होती है कि आपको हम संतुष्ट कर पाएं और अपना जो कार्यक्रम है वो सही तरीके से हम प्रस्तुत कर पाएं।
1: जी,
0: आज किस गीत की फरमाइश है आपकी?
1: एक फिल्म आई थी सर, प्यार झुकता नहीं।
0: प्यार झुकता नहीं,
1: उसमें सबीर कुमार लता जी की आवाज में है।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो। हाँ जी,
1: हेलो
0: फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार, आदाब।
0: आदाब आपको भी। और आप कहाँ से हमसे मुखातिब हैं?
1: अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है सर। मैं परवेज अहमद, शुक्लपुरा बनारस से आपसे
0: जी हाँ, परवेज
1: बात कर
0: जी।
1: रहा हूँ सर।
0: जी, परवेज जी, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी, आज बहुत खुशी हो रही है सर। एक बार आपसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी, और सर मेरा काम ही ऐसा है कि मैं बुधवार को जो कि फोन मिला नहीं पाता हूँ,
0: जी,
1: जो कि आज कोशिश किया तो आज बात आपसे हो रही, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया सर।
0: देखिए, आपकी मेहनत थी और ऊपर वाले का कर्म था कि
1: जी
0: आज आपकी बात हमसे हो रही है। और जो मेहनत आप करते हैं, खासतौर से ट्राई करते रहना, कोशिश करते रहना, और उस कोशिश का जो नतीजा होता है वो आज ये है कि हमारी आपसे बात हो रही
1: जी
0: है।
1: सर, मैं सोच रहा था कि मेरी बात कभी हेलो फरमाइश में हो जाए, तो आज मेरा लग रहा है कि 5-6 महीना के बाद मेरी बात हो रही है सर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: और
0: आपका।
1: आपके माध्यम से सर, मैं आज मेरा 12 वफात से जो है कि हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, जुलूस आज है, तो
0: जी,
1: 12 वफात का, 12 रबीउल का सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपके माध्यम से।
0: इसे ईदे मिलादुन नबी भी कहा जाता है।
1: जी, ईद मिलादुन नबी और 12 वफात
0: जी जी जी
1: कहते हैं। इस
0: जी
1: महीने
0: जी
1: में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है। मैं सर
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंच गई होगी जो हमारे श्रोता साथी नहीं जानते थे।
1: जी
0: और
1: सर, तो
0: अब हम जानना चाहेंगे कि आज किस गीत की फरमाइश है आपकी।
1: सर एक गाना है, मदीने वालों को मेरा सलाम कहना।
0: और
1: तो सर आपसे मेरी गुजारिश है कि यही गाना हमको आप सुना दीजिए।
0: जी
1: हमारे दोस्त हैं सतीश शर्मा जी चंडीगढ़ से,
0: जी
1: और हमारे एक दोस्त हैं कहलगांव से जुड़ते हैं सुजीत राय जी,
0: जी
1: और हमारे मुरलीधर एडवोकेट जी हैं, और हमारे अनिल कुमार गुप्ता गौड़ जी हैं, और जमील अहमद साहब सकिया मड़ियाहूं से हैं, और हमारे जितने भी आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र के सुनने वाले हमारे जितने भी दोस्त हैं सबको ये गाना डे टिकट आपके माध्यम से है सर।
0: और ईदे मिलादुन्नबी की आप सबको आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से बहुत
1: और
0: बहुत
1: सर बहुत
0: शुभकामनाएं।
1: बहुत शुक्रिया, आपने हमको बधाई दिया, और आपको आने वाले रक्षाबंधन की और हमारे तमाम श्रोताओं को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई सर आपके माध्यम से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: शुक्रिया सर, धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते। नजर

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हेलो, फोन इन फरमाइश।
0: जी
1: हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी
1: पलटन विश्वकर्मा, नमस्कार।
0: और अब हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में। और अब जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: हमारे बारे में थोड़ा, किसानी खेती काम करते हैं।
0: खेती किसानी से आप जुड़े हैं
1: जी,
0: और रेडियो के कार्यक्रम भी आप सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी के। किस कार्यक्रम को आप ज्यादा सुनते हैं ये भी जानना चाहेंगे हम।
1: हम तो यही है, आपके यही फोन इन फरमाइश ज्यादा सुना पसंद करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम को आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ बारिश हो रही है।
1: कल बारिश हुई थी बहुत कम से कम आधा घंटा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर अभी फुहारा पड़ रहा है।
0: और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
1: हम ये सुनना चाह रहे हैं कि वो गाना है ना, दिल को देखो चेहरा न देखो, तेरे लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा जीता।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद का ये गीत। आइए सुने हम और आप साथ साथ, और साथ ही ये आपके और हमारे साथ बहुत सारे और भी श्रोता साथी सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश
0: जी।
1: राज नारायण पटेल, ग्राम मन्नापुर, जिला चंदौली से।
0: अच्छा, और आज आपका हम इस कार्यक्रम में, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
1: बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।

0: और आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको आज ईदे मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये त्योहार मनाया जा रहा है,
1: आप लोग से बहुत बहुत बधाई हो
0: जी। और आपके साथ साथ और भी बहुत सारे श्रोता साथी और हैं, उन सबको ये बधाई पहुंच गई। और आप क्या करते हैं?
1: हम तो बागवानी का डाट पे काम करते हैं।
0: बागवानी का काम करते हैं आप?
1: रमना में।
0: अच्छा अच्छा,
1: बीएचयू के पास रमना में।
0: जी जी। और इसके साथ साथ बागवानी के साथ साथ आप कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं आकाशवाणी?
1: आकाशवाणी तो दिन भर चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आप आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुनते रहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का गीत कौन सा होगा?
1: वो फिल्म का नाम है देशवासी।
0: देशवासी
1: टाइटल सॉन्ग है, नितिन मुकेश जी की आवाज में, अनुराधा भरवाल जी हैं।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर,
0: नमस्ते।
1: मैं ग्राम चिताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका नियमित श्रोता प्रमोद कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ सर।
0: प्रमोद जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम के इस अंक में, जिसमें आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका रेडियो साथी सिद्धार्थ। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश और जो केंद्र है वो है आकाशवाणी का वाराणसी।
1: सर मैंने आज पहली बार कॉल लगाया है, मेरा पहली बार में ही कॉल लगा सर आज।
0: देखिए, आपने आज पहली बार कॉल किया और वो पहली बार ही आपका कॉल लग गया, यानी आपकी जो मेहनत थी वो सफल हुई। और साथ ही कई हमारे जो श्रोता साथी जो हमारे होते हैं, जो प्रयास बहुत बार करते हैं लेकिन फिर भी उनका कॉल नहीं लग पाता, और बहुत सारे प्रयासों के बाद उनका फोन लगता है।
1: देखो सर एक बात और है कि अपन उदास नहीं होना चाहिए।
0: यही बात कहना चाह रहे थे कि आप प्रयास करते रहिए, आपको उदास नहीं होना है और निराश भी नहीं होना है। बस
1: हाँ,
0: थोड़ा समय इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे श्रोता साथी लाइन पर होते हैं और उनसे बात करना बहुत जरूरी होता है, और उस बीच अगर आप फोन करते हैं तो आपको इंगेज मिलेगा। और
1: बिल्कुल सही बात कही सर आपने।
0: जैसे ही उनसे बातचीत पूरी हो जाती है तो वो जो समय मिलता है बीच का, उस समय आपने फोन किया तो आपकी बात बिल्कुल हमसे हो जाएगी।
1: हाँ सही बात है सर, ये बिल्कुल राइट बात कही आपने। और सर ये रक्षाबंधन की आपको और पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं है सर।
0: आपको भी आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन जो आने वाला है त्योहार, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ईद मिलादुन्नबी है तो इसकी शुभकामनाएं आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं को। और अब हम जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: सर मैं गौ सेवक हूँ, मैं गाय चराता हूँ, थोड़ी बहुत किसानी भी कर लेता हूँ।
0: क्या बात है। और किसानी के साथ साथ आप आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम भी सुन लेते हैं?
1: हाँ सुन लेता हूँ सर, क्योंकि बहुत दूर है ना शिवपुरी, एमपी में पड़ता है ग्वालियर के पास में।
0: जी जी। और आप हमारे कार्यक्रम कैसे सुनते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप पर?
1: हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी जी। और ऐप पर हमारे कार्यक्रम आपको स्पष्ट सुनाई देते हैं?
1: बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं सर, जब तो मैंने आपका नंबर उसमें से लेकर के आप बताते हैं, मैंने नोट किया और नंबर लगा दिया, तो पहली बार में ही नंबर लगा सर मेरा आज।
0: क्या बात है, ये तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथी का नंबर आज उनके पहले ही प्रयास में लग गया।
1: आज पिक्चर मिलेगी आपके पास जान, देवगन काजल अमृतपुरी की। हाँ
0: जान
1: में एक गीत है अलका याग्निक की आवाज में, नैनों में महबूब के देखूंगी मैं डूब के।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो कुमार
0: जी हाँ, हेलो। फोन इन फरमाइश में आपका फोन लगा है आकाशवाणी वाराणसी के।
1: जी, आप नमस्ते। आपको
0: बहुत बहुत आपका भी आभार। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हमसे मुखातिब हैं।
1: हम हैं गाजीपुर से।
0: गाजीपुर से
1: जी निखिल।
0: निखिल जी हमसे मुखातिब हैं गाजीपुर से।
1: जी
0: निखिल जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं, आपका रेडियो साथी सिद्धार्थ। जी हाँ,
1: जी
0: और अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: हम भी अच्छे हैं, घर पे ही थोड़ा रहते हैं।
0: अच्छा, क्या
1: जी
0: करते हैं साथी आप?
1: हम कुछ नहीं करें, ब्लाइंड है।
0: अच्छा, ब्लाइंड हैं
1: जी
0: और रेडियो के कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी के आप सुनते रहते हैं।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी नहीं सुनते, विविध भारती सुनते हैं।
0: विविध भारती को, आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले विविध भारती कार्यक्रम को आप सुनते हैं।
1: जी वो कार्यक्रम बंद हो गया था, नहीं सुन पा रहे हो कार्यक्रम।
0: हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या आप रेडियो पर हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी वो जो प्राइमरी चैनल वाला कार्यक्रम, वो नहीं सुन पा रहे हैं।
0: तो ये कार्यक्रम तो प्राइमरी पर आएगा, क्या हम आपके इस बातचीत को शामिल करें अपने कार्यक्रम में या नहीं, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाएंगे?
1: नहीं, शामिल कर लीजिए, कोई और सुन लेगा, ठीक रहेगा। मैं रक्षाबंधन का कोई गीत हो तो वो सुनवा देना।
0: रक्षाबंधन का कोई
1: जी कोई
0: भी
1: सही।
0: गीत आपको हम सुनवा दें।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्ते।
1: जी, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ सर, मैहर एमपी से।
0: मैहर एमपी से आपने फोन किया है और आपका इस कार्यक्रम में, आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, धन्यवाद सर। हम बैठे थे सर, फोन ट्राई कर रहे थे, बहुत मुश्किल से फोन लगा सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, बाकी नहीं होने नहीं लग पा रहा था सर।
0: आप प्रयास कर रहे थे लेकिन फोन नहीं लग पा रहा था,
1: जी सर,
0: लेकिन आज आपका फोन लग गया।
1: जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: मतलब आज आपने जो प्रयास किया वो सच्चे मन से किया और लगे रहे। बिल्कुल।
1: जी सर, 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे सर, 10:15 से ट्राई कर रहे थे, 11:15 हो गए सर।
0: और इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी इसमें पूरा पूरा सहयोग है। आपका प्रयास है कि आज आपकी हम जो बातचीत आपकी हो रही है वो हमसे हो पा रही है और ये आपके प्रयासों का ही परिणाम है।
1: जी सर,
0: और हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
1: हम तो ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं सर, बस त्योहार का तैयारी चल रहा है, बहुत अच्छा सर तैयारी चालू है सर,
0: जी
1: बस और थोड़ा सा टाइम निकाल के आपका शो का फोन
0: जी
1: में लगाने में बिजी हो गए सर।
0: रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही होंगी।
1: जी, बहुत अच्छा चल रहा है सर।
0: जी, तो रक्षाबंधन की जो शुभकामनाएं हैं वो आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको और बाकी जो हमारे सुधी श्रोता हैं सभी को।
1: जी, हमारे यहाँ हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर, रक्षाबंधन के। बस अभी तो हम सोच रहे थे फोन लगाए, फिर जाएंगे अपने दीदी के लाएंगे सर, और फिर अपना साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे सर।
0: बहुत बहुत आप सभी को मंगल कामनाएं हमारी ओर से।
1: जी सर, धन्यवाद सर।
0: अब हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं।
1: जी, हम सर जेसीबी मशीन चलाते हैं सर।
0: जेसीबी मशीन चलाते हैं आप।
1: जी, यही मैहर में लोकल में ही चलाते हैं सर,
0: जी जी
1: कंपनी में, तो
0: और
1: थोड़ा सा टाइम निकाल के बस आपके इसमें शो में जुड़ने का कोशिश किए हैं सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आज एक फरमाइश है फिल्म जिगर से।
0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश रिकॉर्डिंग प्रत्येक बुधवार सुबह 10:10 से और प्रसारण शनिवार सुबह 11 बजे से दिन 12 बजे तक और रविवार दिन में 12 बजे से 1 बजे तक। अब यहीं अपने रेडियो साथी सिद्धार्थ को दें अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति सिद्धार्थ सेन की थी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहाँ आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने

0: विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के मुताबिक नसीमा अदनान अहमद, पति का नाम अदनान अहमद, ये चेतगंज वाराणसी की निवासी हैं और 30 जून 2026 को दिन में 2 बजे से हथुआ मार्केट चेतगंज वाराणसी से लापता है। नसीमा अदनान अहमद की आयु है 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने नकाब पहना हुआ था। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक आरुषि, पिता का नाम रविंद्र चौहान, ये अहरौरा मिर्जापुर की निवासी हैं और 11 जुलाई 2026 से जुड़ई से लापता हैं। आरुषि की आयु है 26 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पीले रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचना दें। निशा, पिता का नाम इश्तियाक अहमद, ये धमरिया पुल लोहता वाराणसी की निवासी हैं और 20 अप्रैल 2025 की सुबह 9 बजे से अपने घर से काम की तलाश के लिए निकली और फिर लौट कर नहीं आई, यानी गुमशुदा हैं। निशा की आयु 18 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के पीले रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 7:31 से आप सुनेंगे महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे ऑफ ट्यूब कमेंट्री के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखें शाम 7:31 से। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बातचीत का विषय होगा जनसंख्या और खाद्यान्न वृद्धि का आनुपातिक अध्ययन और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन तकनीक। इस विषय पर डॉ. रूपेश सिंह से बातचीत की है सतीश यादव ने। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे राम जन्म भारती। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज की बात का विषय है जबरन गुमशुदगी किए लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही युवाणी क्विज हमारे प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर जानकारी, यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत भी। बालगोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे धनंजय सहाय की वार्ता बच्चे सुनेंगे, प्लास्टिक के प्रयोग से बचें।

0: आरोग्यम कार्यक्रम में 2:30 पर आज का विषय होगा दंत रोग और उसका इलाज। विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी और प्रस्तुति सहयोग शिखा श्रीवास्तव का। 1:15 पर आज श्रोता पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनेंगे। श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। इस कार्यक्रम के बाद व्हाट्सएप पर आधारित लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंग प्रसारित होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क भर में मंशियात नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम तेजी से जोर पकड़ रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि मंशियात से पाक नौजवान और मंशियात से पाक हिंदुस्तान के मकसद के साथ मुहिम महज रस्मी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग खासतौर पर नौजवान बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की सेहत, खुशी और रोशन मुस्तकबिल का इज्तिमाई अज़्म है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लाखों खवातीन नई ताकत हासिल कर रही हैं। जनाब मोदी ने गाजियाबाद की बबीता शर्मा के बारे में बात की, जिन्होंने इस स्कीम से फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि जब औरत का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ उसके पूरे खानदान का मुस्तकबिल भी तरक्की करता है।
2: लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ चारों तरफ हुब्बुल वतनी के बेशुमार रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो तहरीक की बरसी से लेकर तकसीम के हौलनाक यादगारी दिन जैसे मौके इस महीने को खास बनाते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यौम आज़ादी और कौमी खलाई दिन हर मुल्क के बाशिंदे को फ़ख्र से भर देता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे कई अहम त्यौहार बनाने वाला है। दीपावली भी चंद महीनों में करीब आ रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस त्यौहार के मौसम में वोकल फॉर लोकल पर जोर दें। वजीर दिफा और लखनऊ के एमपी राजनाथ सिंह आज लखनऊ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में 101 करोड़ के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आज लखनऊ ने अपनी कदीम विरासत के साथ एक जदीद स्मार्ट सिटी के तौर पर अपनी शनाख्त कायम कर ली है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि लखनऊ की तरक्की को रियासत की तरक्की के हवाले से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में इस वक्त जो भी तरक्की हो रही है उसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ का अहम किरदार है।
3: आज लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड में एक साथ अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। लखनऊ के बारे में मैं कह सकता हूं कि लखनऊ की गति और लखनऊ की प्रगति को मैं पूरे उत्तर प्रदेश की गति और प्रगति से जोड़ कर देखता हूं, और मुझे कहने में रंचमात्र भी संकोच नहीं है, लखनऊ में जो कुछ भी हो

0: लखनऊ का जितनी तेजी के साथ विकास हुआ है उसमें सबसे बड़ा सहयोग यदि किसी का प्राप्त हुआ है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का सहयोग प्राप्त हुआ है।
1: इस तकरीब का अहतमाम लखनऊ के छावनी इलाके के दिलकुशा गार्डन में किया गया था। नए वजीर आला ब्रजेश पाठक और महकमा समाजी बहबूद के रियासती वजीर असीम अरुण के अलावा कई सीनियर लीडरान और अवामी नुमाइंदे इस तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू अदालतों में बरसों से ज़ेरुल्तवा मुकदमात को मुकर्रा मुद्दत में निपटाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ज़मीन जायदाद और आम शहरियों के हकूक से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताखीर कबूल नहीं की जा सकती। सनीचर की देर शाम वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी सतह के सीनियर अफसरान और फील्ड में तैनात पुलिस और इंतजामिया के अहलकारों के साथ मफाद अम्मा से मुतालिक मामलात का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता दर्शन और IGRS में मौसूल होने वाली अवामी शिकायत के फौरी और तसल्ली बख्श निपटाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद।

0: कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओ, सना सलीम जी एक बार फिर से हाजिर हैं। मान मान सना सलीम जी, आपको हमारा नमस्कार।
1: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार।
0: राज की बात यह है कि पिछले हफ्ते जो वो त्योहार था ना, अभी जो बीता है भाई बहन वाला
1: जी,
0: तो उसमें मसरूफियत रहती है, बड़ा लेन देन होता है और इतनी जो झोली है भर जाती है कि उसे लेकर आना खतरे से खाली नहीं होता।
1: और ये जो अगस्त का ये जो महीना था, ये तो मतलब त्योहारों का ही महीना था, बैक टू बैक फेस्टिवल्स,
0: झोलियां ही झोलियां भर गई हैं।
1: हाँ, बिल्कुल भर गई हैं। और हमारे पास मैसेजेस भी बहुत सारे भर गए हैं जो हमें दिख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन।
0: हाँ, वरना बहुत सारे श्रोताओं को शिकायत हो जाती है कि उनके मेल बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जा रहे हैं।
1: तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पीकेएलडी का प्रोग्राम। ये पहला मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा और उनके परिवार के सभी सदस्य
0: जी,
1: आज इन्होंने लगता है कि अपना जवाब हमें लिख दिया है।
0: हाँ, जिसको एक दो साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो ये चूड़ियों वाला क्या माजरा है।
1: लिखते हैं कि आपने हमसे चूड़ी लाइन मुंगेली के बारे में जानना चाहा, तो हम बता देते हैं कि जैसे चौखुंटी हाथी बाजार, चूहा गली, हाथी गली, पतली गली, महमूरगंज है, उसी प्रकार से मुंगेली हमारा शहर है और चूड़ी लाइन मोहल्ला है।
0: जी जी,
1: हमारा घर जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास रहने वाले लोग चूड़ियों का व्यापार करते हैं, चूड़ियां बेचते हैं और पहनाते भी हैं। सभी जरूरतमंद महिलाएं जिनको अपनी कलाई सजानी सवारनी रहती है, वो सभी महिलाएं चूड़ियों की दुकान पर आकर अपने श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। इसीलिए मुख्य रूप से इस मोहल्ले का नाम चूड़ी लाइन दे दिया गया है।
0: बिल्कुल, ये बात सना जी के लिए जो है काबिले नोट है और जब भी कभी उन्हें मुंगेली जाना होगा तो जरूर आपके यहाँ वो चूड़ी लाइन में जाएंगी। तो बहरहाल, इस बार प्रोग्राम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है, लगता है ढूंढ करके इन्होंने वो जानकारी इकट्ठा की और भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगले मेल में कार्यक्रमों के बारे में जिक्र जरूर कीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा
1: जी। दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा हसीना दिलशाद का ये मैसेज हमें मिला है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। इनका ये मेल जो है, इसमें शुरुआत में ये लिखते हैं कि गलत नजर मेरे बच्चों को या खुदा ना लगे, दुआ सभी की लगे, कोई बददुआ ना लगे। इलाही, मुझसे खताएं हुई हैं पर्दे में, मेरा हिसाब भी पर्दे में हो पता ना लगे।
0: आमीन। बहुत अच्छा आपने लिखा है और अच्छे अशआर से आपने शुरुआत की है।
1: कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि हम आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम अत्यंत रुचि से सुनते हैं, जो पसंद आता है उसी की तारीफ करते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल, हम लोग इस बात पे भरोसा करते हैं
1: जी। 29 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सब कुछ सही ऐसा जरूरी तो नहीं।
0: हाँ, ये प्रोग्राम का शीर्षक है आपके कार्यक्रम के बारे में ये कह रहे हैं।
1: नहीं, प्रोग्राम का शीर्षक था ये, बनारस की खबरें, आज का इतिहास और बारिश में कपड़े जल्दी सुखाने के तरीके पसंद आए। 31 जुलाई को गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत प्रसारित मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर विशेष प्रस्तुति और काशी कथा में काशी

0: चित्रकला के बारे में अच्छी जानकारी आशुतोष जी द्वारा सुनी। इतनी अनमोल जानकारी के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई।
1: तो बहुत जरूरी चीजें इकट्ठा करके सना जी लाती हैं। बहरहाल हमने वो प्रोग्राम सुना नहीं है, लेकिन क्या कपड़े गीले हों तो आयरन करना है या फिर हवा में,
0: बहुत सारी चीजें उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा।
1: तो खैर, आपकी बधाई रूबरू सना जी ने अपनी झोली में रख ली है, जगह उसमें थोड़ा सा कम है।
0: और 31 जुलाई के ही प्रोग्राम बनारस बीट्स के लिए आशुतोष जी के बारे में लिखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कहानी पर श्रोताओं के ख्यालात सुनने अच्छे लगे, प्रस्तुति अति सुंदर। 4 अगस्त को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा सुना, सभी गीत अच्छे थे पर सभी गीत में अरुण सर फरमाइश बोलते रहे और गीत बजते रहे, मजा नहीं आया।
1: नहीं, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, होता ही है कि आखिरी बार या फिर अगर गीत थोड़े छोटे हो तो कई बार उस गीत का अंश दोबारा चल पड़ता है इस वजह से, लेकिन गीत शुरुआत में ऐसा अक्सर ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आखिरी गाने में कई बार जरूर कुछ नाम हमें व्हाट्सएप वाले पढ़ने पड़ते हैं।
0: 5 अगस्त को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना द्वारा प्रस्तुत सुना, अंतर मन को जगाती बारिश पर लाजवाब प्रस्तुति सुनी। और 5 अगस्त के कार्यक्रम बनारस बीट्स के पोस्टर में आपने हरी मेहंदी का जिक्र किया, क्या हरी मेहंदी भी होती है? मेहंदी तो हरी होती है,
1: मेहंदी तो हरी होती है, लेकिन
0: वो
1: जब
0: तो रचने
1: उसे,
0: के बाद लाल होती है।
1: उसको जब पीस कर उसको लगाया जाता है हथेलियों पर, तब उसका रंग निखरता है।
0: वो पोस्टर के बारे में बोल रहे हैं, हरा हरा दिख रहा था।
1: तो सावन का महीना है, अभी एक श्रोता ने पिछले प्रोग्राम्स में लिखा भी था कि सावन में बहुत सारे हरे भरे गाने बज रहे थे, तो मेहंदी तो जो पत्तियों का रंग है वो तो हरा ही होता है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, मालूमात में आपके इजाफा हुआ और हम जो है आपको पेशगी में शुक्रिया कह रहे हैं इसके लिए।
0: जी, एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण जी और सना जी को प्यार भरा सलाम। कलम उठाने से पहले इतनी तहकीक कर लो कि तुम्हारे लिखने के बाद कोई दूसरा कलम ना उठा सके।
1: फिर तो लिखने वाले बड़े कम हो जाएंगे। तो सुखनवर हूं इसलिए है कि हर किसी को लिखने के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन ये शेर बहुत उम्दा है
0: जी। सो लेट्स गो रेडी फॉर सक्सेस।
1: अच्छा, ये तो बिल्कुल असगर जी वाला स्टाइल हो गया।
0: जी, 24 जुलाई का व्हाट्सएप संदेश पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, अरुण भाई ने बेहतरीन गीतों को चुना,
1: लेकिन वो त्योहार बीत चुका है
0: जी। मैंने 11:30 बजे तक सुना, लेकिन मेरा नाम नहीं पढ़ा।
1: हो सकता है वो नाम आपका 11:30 बजे के बाद शामिल हुआ होगा। होता ये कि जैसे ही हम लोग फिल्मों के नाम बताते हैं दिन में 11 बजे व्हाट्सएप वाले प्रोग्राम में खास करके, तो तुरंत ही 250-300 मैसेज आ जाते हैं। अगर सिर्फ उन्हें ही पढ़ा जाए तो 20 मिनट उसी में चला जाएगा। तो कुछ हो सकता है कि 11:04-06 के संदेश वो कुछ आगे के गीतों में शामिल हुए होंगे, तो आपका नाम जरूर शामिल हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है
0: जी। उसी दिन एक ही कलाकार में स्नेहा ने अजय देवगन पर प्रस्तुति दी थी और इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए स्नेहा को बधाई। 26 जुलाई के कार्यक्रम आज इतवार है में झलकी हो जाने दो शादी मुझे बहुत पसंद आई। 27 जुलाई का झंकार सदाबहार पुराने गीत बजाए गए, मजा आ गया। उसी दिन अंजना झा ने पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत अच्छा किया था, उस दिन मेरा पत्र भी पढ़ा गया था, इसके लिए अंजना जी को तहे दिल से शुक्रिया।
1: जी, बहुत शुक्रिया कि आपने भी खत लिखने शुरू कर दिए हैं और वो शामिल हुए इसके लिए, और प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए आपकी बधाई अंजना जी तक और स्नेहा सिंह जी तक पहुंच रही है।
0: उसके बाद किसी कारणवश मैं 10 अगस्त तक कोई भी कार्यक्रम नहीं सुन पाया। 11 अगस्त का व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस मैंने सुना था, इतनी बेहतरीन पेशकश के लिए अरुण सर को दिल से शुक्रिया। मेरा सुझाव है कि किसी दिन PKLD सना और अंजना जी करें।
1: जी जी, आपके मुंह में घी शक्कर, हालांकि जो मिठास है वो थोड़ा इन दिनों महंगी हो गई है। जैसे सना जी भी उसी लिए मुश्किल से आई हैं, इनकी जो इतनी मीठी सी आवाज है वो उसकी कीमत तो बढ़ गई है
0: जी। अंजना जी मेल पढ़ें और सना जवाब दें, आप जज हों और मार्क्स उन्हें दें।
1: नहीं, ऐसी कैसे हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जरूर ऐसा होना चाहिए, हो सकता है इंशाल्लाह आइंदा कभी ऐसा भी होगा कि सना जी खत पढ़ेंगी और अंजना जी पढ़ेंगे और सना जी जवाब देंगे।
0: आगे लिखते हैं कि क्या आपके केंद्र से पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत कार्यक्रम आपकी पसंद बंद कर दिया गया है, अगर नहीं तो उसका समय और दिन बता दें।
1: गुरुवार को एक हफ्ते जो क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का कार्यक्रम होता है रात में 10 बजे, और बाकी जो गुरुवार हैं उसमें आप रात 10 बजे ट्यून करें। अगर कोई और रिले दिल्ली या लखनऊ से महत्वपूर्ण नहीं आया तो गुरुवार के दिन रात में आप उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो जरूर हमें बताइएगा वो कार्यक्रम आप सुन पाए या नहीं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: अगला ये मेल जो है इंग्लिश में आया है
1: जी जी,
0: राजस्थान से।
1: वो जान रहे थे कि आज सना जी पढ़ने वाली हैं।
0: वाहिद पठान एंड आई एम फ्रॉम

0: झुंझुनू राजस्थान।
1: जी
0: आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग संदेश से आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर। दिस सॉन्ग हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी एंड आई वुड लव टू प्रेजेंट माई ओन सिंगिंग परफॉर्मेंस ऑफ इट। इट वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड कंसिडर मी फॉर एनी सुटेबल सिंगिंग अपॉर्चुनिटी, ऑडिशन और म्यूजिकल प्रोजेक्ट। आई कैन शेयर माई सिंगिंग सैम्पल और वीडियो इफ रिक्वायर्ड। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन।
1: ये हम कहें कि जो फिल्मी गाने हैं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप कहीं भी गा करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। रही हमारे यहाँ बात, तो हमारे यहाँ लोक संगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत के गायन और वादन के जो कलाकार होते हैं वो ऑडिशन के जरिए आकाशवाणी के पैनल में शामिल होते हैं और तब उन्हें गीतों का अवसर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो एल्बम के या फिल्मी गाने हूबहू नहीं गाए जाते। आमतौर पर पारंपरिक रचनाएं और बंदिशें या फिर लोकगीत के संदर्भ में जो रवायती लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। फिल्मी गाने आपने किसी केंद्र से किसी के द्वारा गाया हुआ आमतौर पर नहीं सुना होगा। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि फिल्मी गाने गवाए जाएं और मौका दिया जाए।
0: उसके लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग
1: तो करें। गीत संगीत आप सुने और कुछ सीखें, जिस तरह से आप वक्त दें शास्त्रीय संगीत, लोक और सुगम संगीत को, और फिर अपने निकट के आकाशवाणी केंद्र में संपर्क करें, वहां पर आपको स्वर परीक्षा के उपरांत अवसर मिल सकता है।
0: जी, आपके इस मैसेज के लिए शुक्रिया।
1: और ये जरूर कहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, केंद्र से जुड़े हैं, तो जरूर कार्यक्रमों के बारे में अपने आइंदा मेल में जिक्र कीजिएगा।
0: हमारे नियमित श्रोता है रतिना त्रिपाठी जी, इनका ये अगला मेल है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से।
1: जी।
0: लिखते हैं, 24 जुलाई को एक ही कलाकार कार्यक्रम में स्नेहा जी द्वारा अजय देवगन पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग बनारस में 21 जुलाई को आशुतोष जी द्वारा दी गई समसामयिक जानकारियां और काशी कथा में बनारस की गलियों पर शुरू की गई नई श्रृंखला बहुत रोचक लगी।
1: पिछली बार की गलियों में कुछ कम ऐसा तो चर्चा नहीं रही कि फिर से कुछ बाकी हो गया, इस बार फिर कुछ नई नई गलियां आएंगी।
0: अब उसके दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है।
1: जी।
0: इसी कार्यक्रम में 22 जुलाई को सना जी का कार्यक्रम हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक और जानकारी पूर्ण रहा, बाद जरूरत की में भी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। सुबह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वैद्य चंद्रशेखर पांडे जी द्वारा प्रस्तुत आजकल कैसा हो खानपान श्रृंखला के प्रत्येक एपिसोड से स्वास्थ्य संबंधी अनेक उपयोगी जानकारियां मिलती हैं। मैं ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूं और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जानकारी दूसरों को भी बताता
1: हूं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों को इतने वर्षों से सुन रहे हैं और नियमित रूप से अपनी मसरूफियत के बावजूद अपने मेल भी हम तक भेजते हैं
0: और सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम भी मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। 24 जुलाई को उस्ताद फतेह अली खां का शहनाई वादन, 23 जुलाई को आरपी शास्त्री जी का वायलिन वादन और मिश्रा जी का सितार वादन विशेष रूप से बहुत अच्छा लगा। यद्यपि मैं प्रतिदिन ये कार्यक्रम सुनता हूँ लेकिन कभी कभी इन महान कलाकारों के नाम नोट करना भूल जाता हूँ।
1: जी, तो बहुत शुक्रिया आपको कि आपने शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों को भी तल्लीनता से सुना और उसे पसंद किया। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए।
0: अगला ये मेल है पंकज कुमार का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, अरुण पांडे जी और सना सलीम को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों के कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ, मुझे आपके सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में मेरा ईमेल 16 अगस्त को शामिल हुआ, जिसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। कार्यक्रम के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग श्रोताओं से सीधे जुड़े हुए रहते हैं, वो आपके कार्यक्रम को सबसे अलग और सबसे अच्छा बनाता है। मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ, उसमें सेवा देते हुए आप लोगों के प्रोग्राम को सुन ही लेता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों के जितने भी कार्यक्रम हुए सभी अच्छे लगे। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी वाराणसी से चिट्ठी द्वारा प्रसारित गाना सुनने का प्रोग्राम है, उसके बारे में बताने की कृपा प्रदान करें।
1: जी बिल्कुल, आप सोमवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच पत्रों पर आधारित आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम होता है वो सुन सकते हैं, और गुरुवार को जैसा पिछले एक मेल में हमने बताया कि रात में 10 बजे आप गुरुवार को भी आपकी पसंद कार्यक्रम सुन सकते हैं। और आप अपनी व्यस्तता के बीच रेलवे में नौकरी करते हुए हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और आपने मेल भी लिखा, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। शुभकामनाएं आपको भी बहुत सारे तीज त्योहारों की, और अगले मेल का आपके इंतजार रहेगा हमें।
0: अगला ये मेल है बैंजो मास्टर सुनील यादव का, शिव कुमार यादव, ग्राम अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से।
1: जी।
0: लिखते हैं कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, यहाँ तक कि अपना साया भी धूप आने के बाद ही मिलता है।
1: यानी हर श्रोता शायरी थोड़ा सा शौकीन हो गए हैं उसके।
0: पिछले दिनों कई अनगिनत कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी से सुनने को मिला है। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रेडियो एक बड़ा अहम भूमिका रहा है और वर्तमान में भी एक अलग जगह स्थापित किया है। हमने रेडियो के माध्यम से ही किससे कैसे बात करना है, कहाँ किस जगह पर क्या बोलना है, ये सब और

0: हिंदी शब्दों का ज्ञान भी हुआ है। इसी क्रम में कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में 15 और 16 अगस्त को स्वस्ति श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रस्तुत किया। देशभक्ति गीतों ने और श्रोताओं के बातों ने हम सबको देशभक्ति पूर्ण कर दिया। बहुत बेहतरीन लगा कार्यक्रम। और 16 अगस्त को कार्यक्रम आरोग्यम में अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल से श्रोताओं द्वारा अस्थमा रोग के बारे में प्रश्नों के उत्तर कार्यक्रम में शिखा तिवारी दीदी ने हम श्रोताओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वो शिखा श्रीवास्तव है। हाँ, कार्यक्रम उपयोगी साबित रहा। और 16 अगस्त को ही PKLD कार्यक्रम में 7:30 बजे बेहतरीन आवाज के धनी अरुण पांडे सर, जिनकी आवाज अपना एक अलग अंदाज है, और स्तुति मिश्रा आवाज बड़ी दीदी, इनकी भी बेमिसाल है, ईमेल संदेशों को पढ़ने का अंदाज भाग गया। और संक्षिप्त में पांडे सर जी का उत्तर देना काबिले तारीफ, कितने भी बड़े प्रश्न हो जवाब एकदम स्पष्ट रहता है।
1: ये तो है कि आज पता चल गया कि बड़ी दीदी कौन है इन दोनों तीनों में।
0: कार्यक्रमों के लिए स्वस्ति श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव, दीदी अरुण पांडे सर और स्तुति मिश्रा दीदी सहित पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार को सहृदय धन्यवाद।
1: यानी हैप्पी रक्षाबंधन तो हो गया। तो इन तमाम दीदियों को नेक की जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया। आपकी बधाई हमारे विशेषज्ञों और पेश करने वालों तक पहुंच रही है। अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा
0: जी। बबलेश पंवार जी ने ये अगला मेल हमें किया है, पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक, बाड़मेर, राजस्थान से
1: जी।
0: लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके सम्मानित केंद्र आकाशवाणी वाराणसी का एक नियमित और पुराना श्रोता हूं। मैंने रेडियो और इसके श्रोताओं को आपस में जोड़े रखने के लिए पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब की स्थापना की है। ये क्लब पूरी तरह से गैर व्यावसायिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ कमाना नहीं है, बल्कि केवल रेडियो प्रेमियों को एक मंच पर लाना और रेडियो संस्कृति को जीवित रखना है।
1: जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और श्रोताओं के बीच रेडियो की जो उपयोगिता है, इसकी प्रासंगिकता है, वो कायम रहे। इस तरह में आप जैसे हमारे पुराने वरिष्ठ जो श्रोता देश विदेश में दूर दराज तक फैले हुए हैं और हमारे केंद्र से जुड़ते हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपके इस मेल को हम लोगों ने पूरा पढ़ा है और आपकी बातों पर गौर भी किया है। आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे लिखते हैं कि एक श्रोता क्लब का नाम रेडियो पर नहीं लिया जाएगा तो क्या किसी व्यावसायिक दुकान का नाम लिया जाएगा? श्रोता ही किसी भी रेडियो केंद्र की ऋण होते हैं।
1: जी बिल्कुल, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। रेडियो का नाम ही है कि जैसे कि हम लोग जो प्रोग्राम पेश करते हैं उसके वो सुनने वाले हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, वरना हम लोगों का जो सारा परिश्रम है वो जाया हो जाएगा। आपकी बातों पर जैसा हमने कहा कि हम लोगों ने गौर किया है और बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आपने मेल भेजा तो इंतजार रहेगा कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय। अगले जो मेल के आएंगे वो भी आप जिक्र करेंगे। प्रोग्राम आपको हमारे केंद्र के कैसे लगते हैं?
0: अगला ये मेल है जौनपुर से सोनू बिंद का। लिखते हैं, आपका आकाशवाणी वाराणसी
1: अच्छा लगता है। नहीं, सजा उनको तो अच्छा लगता है।
0: अरुण पांडे
1: अच्छा
0: सर
1: सजा लगता
0: अच्छा
1: है।
0: सजा लगा, मतलब 15 अगस्त की बात कर रहे हैं क्या? ये फेसबुक पर देखा होगा इन्होंने। अरुण पांडे सर, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आपने पेश किया, आपकी आवाज अच्छी लगती है और दूसरे श्रोता करते हैं, आवाज सुनाई नहीं देता
1: अच्छा
0: और अच्छा नहीं लगता है, और लोकगीत का समय बढ़ा दिया जाए। मुझे तो पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है,
1: इसीलिए छोटी दीदी इनको कहा गया है। तो शुक्रिया सोनू बिंद जी, आप कई बार आपके मेल आते हैं छोटे छोटे, इसी तरह से विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में जिक्र कीजिएगा। इस मेल को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बातों पर अमल करने का भी पूरा प्रयास होगा। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आपको पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मेल में हिंदी में भी, जहां जिस तरह से आप इस तरह से अंग्रेजी में लिख रहे हैं वैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं।
0: और कार्यक्रम का ये आखिरी मेल हम शामिल कर रहे हैं रमाशंकर यादव का, गांव रानीपुर, बहादुरपुर, सिरकोनी बाजार, जिला जौनपुर से
1: जी।
0: लिखते हैं, सना सलीम और अरुण सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सर, आप लोगों की जो प्रस्तुति होती है, खास तौर पर जो भी आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं,
1: अच्छा कई बार हिंदी ऐसी होती है कि इससे अच्छा अंग्रेजी में लिख देते। खैर, हिंदी अंग्रेजी के फेर में नहीं पढ़ना है, अपने मन की बात, दिल की बात हम तक पहुंचा देनी है। जी,
0: सना सलीम जी हो, आप अरुण सर हो, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की आवाज है। और एक बात मैं करना चाहता हूं कि अगर मुझे भी आकाशवाणी में काम करने के लिए अवसर मिले तो क्या आप लोग मुझे अवसर देंगे?
1: जी, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, जैसा अभी एक पिछले श्रोता को भी हमने बताया था कि हर कार्यक्रम में स्वर परीक्षा के द्वारा और जो आवश्यक योग्यताएं हैं उसके बाद उसमें प्रवेश आपको मिलता है। तो आप किसी भी रूप में अगर हमारे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं तो सूचनाएं यथासमय प्रसारित होती हैं और फिर

0: आवेदन करके अपेक्षित योग्यताओं के साथ संपर्क कर सकते हैं निकट के केंद्र में अपने। तो बहुत शुभकामनाएं आपको,
1: और कार्यक्रमों को ऐसे सुनते रहिए और अपने मेल्स जो हैं ऐसे ही करते रहिए। हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा
0: और हमारी आपसे मुलाकात होगी आपके ही ईमेल के साथ अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए अरुण पांडे
1: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं के ईमेल के साथ थे अरुण पांडे और सना सलीम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658। लोकरंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शाम क्रिकेट मैच है, इस वजह से आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम अभी सुन रहे थे। इस वजह से ये हुआ कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम की अवधि हर हफ्ते के मुताबिक कम है, और इस लिहाज से आपको बताएं कि लोकगीतों के कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं, और उसके बाद जल्दी से अपनी फरमाइशें आप हमें भेजें 7905519981 पर। आज के कलाकार हैं खरपत राम, महुआ बनर्जी और राम जन्म भारती। खरपत राम, महुआ बनर्जी और राम जन्म भारती। तो अब जब कलाकारों के नाम हमने आपको बता दिए, तो अब जो फरमाइशें आएंगी और उनमें कलाकारों का नाम रहेगा, तो उनके लोकगीत के साथ वो फरमाइश शामिल होगी। 7905519981 ये व्हाट्सएप कार्यक्रम का नंबर है, और व्हाट्सएप पर आधारित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सजीव उसी वक्त आपको फरमाइशें भेजनी होती हैं। मेल वाले कार्यक्रमों में आप मेल कभी भी भेज सकते हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस कजरी के साथ। कलाकार हैं खरपत राम और साथी। बहुत सी फरमाइशें हमारे नाम बताते ही आपकी आ चुकी हैं, इसके लिए शुक्रिया।

0: जी आशुतोष, जन्माष्टमी का त्यौहार आने ही वाला है और ये जो गीत संगीत होते हैं त्यौहारों के परिवेश के निर्माण में बड़ी अमूल्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में। इस लोकगीत के लिए फरमाइशें आप सबकी आई और ये कजरी खरपतराम और साथियों की आवाजों में थी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश भेजा है तुलसी मस्कीन, डब्बू वीणा मस्कीन, आशीष राजा और चेतन मस्कीन ने। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी है माँ काली स्थान नौली गाजीपुर के श्रोता। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से हैं एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। आशीष कुमार हमारे श्रोता हैं महरेव जौनपुर से। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उमंग मलिक। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा की फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से आई है। दिलदारनगर गांव गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनाना सिंह और कयूम शाह। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिवकुमार यादव, तनिष्का यादव, उमेश्वरी यादव, नौबत यादव हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता। ये फरमाइश पुफाली यवतमाल से आई है जयराम शिंगड़कर, दिशांत कुमार शिंगड़कर और अर्पिता की। दिलदार मेरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मेरी हैं चांपा जांजगीर के श्रोता। आप हैं सूर्यभान सिंह बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से संदेश भेजा ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिहा देवनाता गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन भी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा बठेना पाटन दुर्ग के श्रोता हैं। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना?

0: बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: और अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आप ही की फरमाइश, ये कजरी कलाकार हैं महुआ बनर्जी।

कजरी महुआ बनर्जी के स्वर में था। फरमाइशें भेजी हमारे इन श्रोताओं ने। पटेल नगर मुगलसराय से हैं सुनील कुमार सिंह। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हैं नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जय लाम से। एक बार ही संदेश भेजा करें।

आपने 1:30 बजे से लेकर अभी तक 13 बार संदेश भेज दिया है। इसी लोकगीत को सुनना चाहा बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और रितेश कुमार ने। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशुरी धान खुराना और तुलसी मस्किन। मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ से ये फरमाइश दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा की। नवागढ़ कटई बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक जीत और पुष्पांजलि वर्मा। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल।

विजय और सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल सुमंत कुमार प्रजापति हमारे श्रोता हैं हथौज बलिया के राजेंद्र यादव भारती उषा देवी भारती दीपांजलि अनुराग दीप भकेलू यादव और राम समुज यादव हैं मेन रोड वलीदपुर मड़हा मऊ से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की फरमाइश आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आई हुई है मुकेश कासलेकर और राजेश सोनी है वरुण अमरावती महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है नेपा नगर से सुदर्शन शाह पलवी शाह प्रखर शाह और कुशल शाह की छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और आराध्या साहू जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जीएस नायक और शोभा नायक हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से हिमांशु अग्रहरी उमरपुर जौनपुर के श्रोता कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी राखी आर्या एन्द्री ओमनाथ शिवांग अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी रामगढ़ कैंट से फरमाइश आई है विक्रांत मोदी निशांत मोदी राजा बाबू युवराज अथर्व और यश मोदी की चकपुटही असनाव बाजार भदोही से हैं गिरधारी लाल यादव नागेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव रमेश कुमार विश्वकर्मा पूनम विश्वकर्मा प्रियांशु प्रीत प्रांजल प्रकृति दीपेश हैं मेहंदीगंज मड़ई राजा तालाब से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा और श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी आप सभी हमारे श्रोता हैं सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी और शिवन्या की गंगापुर वाराणसी से हैं शंकर प्रसाद आदर्श कुमार स्नेहा कुमारी जागृति श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा रैदा आजमगढ़ में ये जगह है और वहां से भेजा है संदेश विजय कुमार यादव बिंदु यादव प्रतीक और प्रतीक्षा यादव ने गिर्रा पलारी से हैं वीरेंद्र साहू और भरतलाल साहू अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से गजराज लोधी कांति लोधी सोनिया लोधी अनुराग लोधी हैं रेलाई रायगढ़ मध्य प्रदेश से एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर डॉक्टर इशिता साहनी डॉक्टर प्रियंका मोदी और शनाया इब्राहिमी बरका खाना से इफ्तखार इब्राहिम और नाजनी तबस्सुम शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े की फरमाइश हिंगोली महाराष्ट्र से और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी प्रस्तुति ये कजरी है राम जन्म भारती के स्वर में

जी हाँ, और कार्यक्रम की भी निराली छटा है, लेकिन घड़ी का इशारा कि बहुत सारे श्रोता हैं जो इंतजार कर रहे होंगे अपने फरमाइशी नाम का। रामजन्म भारती की आवाज में ये कजरी। फरमाइश आप सबकी है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो वाराणसी से अनिल गुप्ता गौंड और रमा गुप्ता गौंड। पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम की आपने तारीफ भेजी है। आपसे कहें साथ ही हमारे बाकी बहुत सारे श्रोता जो नियमित रूप से प्रोग्राम में मेल भेजते हैं कि उनके मेल अब नहीं हैं या कम हैं, नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें pkld@varanasi.gmail.com पर। जलालाबाद वेस्ट से इस गीत को सुनना चाहा। लोक गीत को सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा ने। नया पारा भिरई बालोद से है बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, पप्पू ठाकुर। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी है रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से। तेलंगाना से है गंगू, महेंद्र, नागलक्ष्मी और हर्षवर्धन। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हैं मनीष राजभर, आकर्ष राजभर, आशीष राजभर और अनीश राजभर। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष ने फरमाइश भेजी है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से। महुआ, छाया, रानी, अच्छा इस बार छाया और रानी का ही नाम आया है, नौली गाजीपुर से। आपकी भी प्रतिक्रियाएं पहले आती थी और उसे शुरू करें। कोल सिटी बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निपी साहनी। सारंग छपरा खड्डा कुशीनगर से हैं श्याम सुंदर यादव, ललन प्रसाद, राम प्रताप यादव और अमरेश कुमार यादव। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ और अनवर। सबा अंसारी और शकील अंसारी हैं मथुरा से। मोर टक्का खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल और शुभम देवी किशन। जीके परमार गांधीनगर के श्रोता हैं। मिर्जापुर से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान और कोमल धीमान। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू और मंजू जायसवाल। तो श्रोताओं, ये थी आपकी फरमाइशें और आज का लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन

0: और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: Mr. Modi said today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatrajya.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
0: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स अराउंड द क्लॉक फॉलो अस ऑन एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts एंड फॉर डिटेल्स ऑफ दीज स्टोरीज एंड मोर log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on AIR app. The death toll from flash floods in central Nepal has risen to 734 today, with more bodies being recovered. Nearly 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded on the 5th day since the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the flash flood tragedy. In a social media post, Mr. Jaiswal said contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The External Affairs Ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. India has provided 68.5 tons of relief materials to the flood-hit Nepal and sent technical teams, forensic experts and equipments to assist in search and rescue operations. A fourth flight carrying 11 tons of relief assistance landed in Nepal today, the Ministry of External Affairs said in a post on X. The Indian Embassy Kathmandu, in a statement yesterday, said India has sent a specialized technical contingent, including tunnel experts, along with equipment for search and rescue operations in hydropower tunnels in the flood-affected Trishuli area of Nuwakot district. A fresh flood threat is emerging in

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है, इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियन

0: म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे काशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटे काशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता

0: ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
1: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उप कप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है दांतों से संबंधित रोग और उसका इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, प्रस्तुति सहयोग शिखा श्रीवास्तव का।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम अपनी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव के साथ। और आज का हमारा विषय है दंत संबंधी रोग और उसका इलाज। दोस्तों, कहते हैं ना कि मुस्कान ऐसी हो कि सामने वाला भी मुस्कुरा उठे, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि इस मुस्कुराहट के पीछे दांत कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि दांतों की छोटी सी परेशानी कब बड़ी समस्या बन जाती है ये पता भी नहीं चलता। तो अगर मसूड़ों में आपके सूजन है, दर्द है, या मुंह से बदबू आती है, दांतों में कीड़े लगने की समस्या है, दांतों में ठंडा या गर्म लगने की समस्या है, तो कभी भी इस समस्या को नज़रअंदाज न करें और अपनी मुस्कान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयास करें। तो आज आपकी मुस्कान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर TP चतुर्वेदी जी को, जो कि वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ हैं BHU वाराणसी में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद शिखा जी, और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: सर, हम प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, इससे पहले एक श्रोता का फोन आ रहा है, उसे ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो आरोग्यम।
0: हाँ, आरोग्यम में फोन किया है, कौन बोल रहे हैं?
2: भोलानाथ पटेल, ग्राम पोस्ट बरहपुर पट्टी प्रतापगढ़। दांत की समस्या है।
0: तो आज हमारे बीच में डॉक्टर TP चतुर्वेदी जी आए हुए हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर लें और अपनी समस्या का समाधान लें।
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बताइए।
2: जो दांत है सामने वाला,
1: हाँ,
2: जहाँ मसूड़ा अंत होता है वहीं घाट बन रहे हैं।
1: अच्छा, आपकी उम्र क्या है?
2: 56 साल।
1: 56 साल है, तो थोड़ा सा मसूड़ा वही थोड़ा छोड़ रहे होंगे। और दूसरा है, आप रगड़ के ब्रश तो नहीं करते हैं? ब्रश टूथपेस्ट क्या करते हैं, पाउडर वाला तो नहीं करते हैं पहले?
2: नहीं, पाउडर वाला नहीं।
1: अच्छा, तो उसको बहुत रगड़ के आप कर रहे होंगे। जब बहुत रगड़ के करते हैं तो मसूड़ा छोड़ने लगता है, तो वहाँ घाट बन जाता है। मार्केट से सुपर सॉफ्ट ब्रश आता है, मतलब सॉफ्ट एकदम मुलायम ब्रश आता है, उस पे लिखा होता है, उसको ले लें। और दूसरा, कम रगड़ना है, आप पूरा रगड़ के नहीं करना है। और टूथपेस्ट एक बार बदल दीजिए, कोई और टूथपेस्ट जो अच्छा मार्केट में आता है उसको एक बार बदल के देखिए। इससे मतलब मसूड़ा और नीचे ना जाए, बस यही अब आपको प्रिवेंशन, जितना देखिए जा चुका है फिर तो वहीं रहेगा। बस दो बार ब्रश किया करिए, या कुछ खाएं और पिए ना, तो तुरंत मुंह साफ कर लिया करिए, तो उससे एकदम आपका मजबूत रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, दांतों की जो आम समस्याएं हैं वो कौन कौन सी आपके सामने मरीज लेकर के आते हैं?
1: देखिए, दांतों की समस्याएं होती हैं, एक तो पायरिया बड़ा कॉमन समस्या है। पायरिया,
0: सर मतलब... इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: असलम जी बोल रहा हूँ से।
0: डॉक्टर TP चतुर्वेदी जी हमारे बीच में है, दंत रोग विशेषज्ञ।
3: दांत मेरा सब निकला हुआ है।
1: अच्छा,
3: सफा छत मैडम है, वो अभी लूज हो गया है, इतने एज में क्या मसूड़ा लूज हो सकता है? क्योंकि दांत जो है ऊपर नीचे का अलग कर लेता हूँ, खाने के बाद में निकाल देता हूँ।
1: अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है?
3: 84 है।
1: अच्छा, 84 है ना, तो उसमें थोड़ा सा दांत ना, दांत जहाँ सपोर्ट होता है वो हड्डी भी गलती है, वो नॉर्मल है, फिर डेंचर का नया सेट बनवाना पड़ेगा, या उसी में एक हम लोग रिलाइनिंग करते हैं, एक लाइन जोड़ देते हैं।
3: लाइनिंग कर रहे हैं?
1: हाँ,
3: अंदर से
1: या नया सेट बनाना पड़ता, आप बनवा लें।
3: रिफिलिंग कर रहे हैं?
1: हाँ हाँ हाँ, ये तो दोनों तरह से हो सकता है,
3: वो
1: सही हो जाए, उस पर रुक जाएगा फिर, ठीक है ना? तो कोई भी मीठा चीज ना दांतों को नुकसान ज्यादा करती है।
0: सर, एक और फोन आ रहा है। हेलो।
4: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: आरोग्यम से।
0: हाँ, आरोग्यम से बोल रहे हैं हम, आप बताएं अपना नाम और पता।
4: नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ मऊनाथ भंजन से, प्रेम नारायण जायसवाल बोल रहा हूँ मैं ना।
0: प्रेम नारायण जायसवाल जी, आज दांतों के रोग पर बात हो रही है और वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर TP चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं, तो दांतों से संबंधित जो भी

0: समस्या हो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात करें।
1: हाँ बताइए प्रेम जी, क्या प्रॉब्लम है?
2: डॉक्टर नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो खैर मैं आपके आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ।
1: अरे बहुत अच्छी बात
2: और
1: है।
2: हाँ मगर उससे रह नहीं पाता हूँ, मैं यही टेलीफोन डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट था, पी एन जायसवाल मेरा नाम है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ 3-4 साल हो गया सर जो है रिटायर्ड हुए, और आप लोगों के बनारस से कार्यक्रम बहुत सुनता हूँ। तो ये दांत वाली समस्या डॉक्टर साहब जो है ऐसा कुछ टेक्निक बताएं घरेलू नुस्खे और प्राकृतिक जो है कि दांत लंबे समय तक काट दें जो है।
1: तो अभी कोई दिक्कत होती है दांतों में आपके?
2: अब दिक्कत डॉक्टर साहब इसमें कोई खास नहीं है, एक आध दो दांत हमने लगवाया है तो वो फिक्स करवाया है 2-3 दांत को जो है। तो यही मऊ में MDS डॉक्टर लोग हैं तो फिक्स कर दिए हैं। तो कहे कि भाई थोड़ा साफ सफाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब एक बार बीच में दांत में थोड़ा सा वो कुछ जैसे सेंसिटिविटी नहीं होती है, हाँ थोड़ा सा दर्द वर्क कर रहा तो ठीक दांत में जो है, तो मैं बड़ा परेशान रहा। तो ये किसी ने कहा कि एक आयुर्वेदिक वो दवा जो थी वो ढिठोर का दतवन जो होता है गांव में वो लिया, डॉक्टर मैं किया और कुछ फिटकरी मतलब तवे पे थोड़ा सा भून करके बिल्कुल खत्म हो गया, कोई काफी जोश मिल रहा
1: है। नहीं तो बढ़िया है आपको, आप देखिए सुबह शाम बढ़िया से ब्रश से साफ करके एक उंगली से भी थोड़ा सा ना कभी हल्दी उल्दी का थोड़ा सा ना करके मसूड़ों को रगड़ दिया करिए। देखिए ये सब घरेलू नुस्खे हैं और रगड़ते हैं
2: बिल्कुल देखा ये, लेकिन मैं वो ढिठोर का दतवन किया और वो फिक्री को बुक करके तवे किसी ने बताया आयुर्वेद के डॉक्टर जो है और मालिश में किया, बिल्कुल बहुत सही हो गया जो है।
1: उससे करिए जब दतुवन का थोड़ा सा है ना कि चारों ओर दांत के पहुंच जाए, दतुवन थोड़ा सा चारों ओर पहुंच जाए तब अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी चारों ओर नहीं पहुंचती तो उसको बढ़िया से साफ करिए, 2 बार साफ करिए और थोड़ा सा मसूड़े की मालिश किया करिए, थोड़ा सा हल्दी लगा के उसको।
2: मसूड़े की मालिश किस चीज से करें?
1: मैं हल्दी हल्का सा हल्दी जैसा पीस के उसके लेपन से हल्का सा मालिश अंदर बाहर करें तो आपको
2: कुछ लोग कहते हैं कड़ू तेल मिला लीजिए,
1: कड़ू तेल मिला के कर सकते तो भी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ हल्दी, अब हल्दी क्या होता है ना, हल्दी अगर हल्दी में करू तेल मिला लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मलहम की तरह हो जाएगा, असल में इफेक्टिव रहेगा उसमें जो हल्दी ही, ठीक ना? तो हल्दी लगा करें, 2 बार सफाई करें दांतों के दिन भर में।
2: अच्छा अच्छा
1: ठीक है
0: जी।
2: तो वो ये भोजन के बाद?
1: हाँ भोजन के बाद, कोई भी भोजन के बाद तुरंत मुंह साफ कर लिया करें।
2: और थोड़ा सा आदत है मीठा उठा खाने की भोजन के बाद
1: थोड़ा कम खाइए, मीठा कम खाइए, मीठा दांतों के लिए भी खराब है, शरीर के लिए भी खराब है। तो
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ सर, श्रोताओं के लगातार फोन आ रहे हैं और हमारी बातें हो नहीं पा रही, लेकिन अच्छा लग रहा है कि श्रोता है, हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। एक और फोन आ रहा है, उसे भी ले लें।
1: हाँ ले लीजिए, ले लीजिए।
0: हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: गाजीपुर।
0: गाजीपुर से कौन?
3: निखिल।
0: अच्छा निखिल जी बताइए क्या समस्या है? आज दांतों के रोग पर बात हो रही है
3: जी, जी मैं पूछना चाहूँगा।
0: हाँ पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, सीधे बात करें डॉक्टर साहब से।
3: अगर दांत में अगर पायरिया हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: दांत में पायरिया बेटा हो जाए तो देखो दांत और मसूड़ों के बीच में थोड़ा सा गंदगी जमा हो जाती है, तो मुँह की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है ना? मुँह की सफाई और हल्के से नमक के पानी से मुंह को सुबह ब्रश करने के बाद मुंह में कुल्ला कर लेना चाहिए, जो मुंह में करारा करके उसको थूक देना चाहिए।
3: दांत मेरा थोड़ा बाहर तरफ निकल गया, हो सकता है अंदर?
1: हाँ बाहर की तरफ अगर निकला है तो उसको ना वो कहते हैं कि दांत का बाहर निकला तो मैल ऑक्लूजन कहते हैं, तो उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दांत अंदर हो जाएगा। तो कभी आप BHU में आ जाइए दांत वाले विभाग में।
3: मेरा बहुत निकल गया, मतलब आगे तरफ आ गया बाहर।
1: हाँ सब अंदर हो जाएगा। उम्र क्या है?
3: 18 साल
1: है तो आराम से हो जाएगा, दांत अंदर चले जाएंगे, बस 1 से 1.5 साल लगता है उसमें टाइम।
3: 1-1.5 साल?
1: हाँ 1 से 1.5 साल, हर महीने एक या 2 बार आना पड़ता है तो उसको फिर हो जाता है, ठीक है ना?
0: जी धन्यवाद निखिल जी।
3: धन्यवाद।
0: हाँ सर, दांतों की आम समस्या पर हम बात कर रहे थे, तो कौन कौन सी समस्या लेकर मरीज आपके सामने आते हैं?
1: देखिए हमारे जो मुख्य समस्याएं हैं, एक दांतों के पायरिया का बड़ा कॉमन है, दूसरा दांतों का सड़ना कॉमन है, तीसरा दांत का टेढ़े मेढ़े जो अभी एक श्रोता आपके पूछे हैं
0: जी,
1: और दांत के टेढ़े मेढ़े दांत का बाहर निकलना, ये सब भी बड़े कॉमन चीज़ें हैं और उसको हम लोग देखते हैं। और जैसे दांत पायरिया है, पायरिया में क्या होता है कि दांतों मसूड़ों के बीच में गंदगी हो जाती है, तो उसकी सफाई हम लोग करते हैं
0: जी, जी।
1: या तो 2 बार सफाई करते रहें तो पायरिया का रोग होने के कम चांसेस हैं। पायरिया हर 10 में से समझिए 8 लोगों को पायरिया रहता है, लेकिन पायरिया में

0: दिक्कत होती है कि दर्द नहीं तुरंत होता है,
1: जी जी
0: इसलिए लोग बहुत नहीं परेशान होते हैं।
1: जी जी
0: दर्द थोड़ा बहुत बाद में होता है,
1: जी
0: लेकिन मवाद आना, मुंह से बदबू आना, ये सब प्रॉब्लम होती है।
1: तो सर ये पायरिया होता क्यों है?
0: पायरिया बेसिकली जब मसूड़ों और दांतों के बीच में थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, वो गंदगी क्या होता है, ब्रश अगर हम 2 बार नहीं करें, एक बार करें तो गंदगी निकलती नहीं है। अब वो गंदगी तो इन्फेक्शन करती है, उसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, और एक तरह से वो कड़ा, एक कैलकुलस हार्ड चीज़ जमा हो जाती है
1: जी
0: और मसूड़ों और दांतों के बीच में, और उसकी वजह से फिर मसूड़ों में बदबू आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में ब्लीडिंग होना, मतलब एक तरह से खून आना, ये होना, दांत को धीरे धीरे कमज़ोर करता रहता है।
1: जी
0: लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है दर्द नहीं होता, दर्द अंतिम स्टेज पे होता है, तो इसलिए लोग जल्दी डॉक्टर के पास आते नहीं हैं। लेकिन पायरिया धीरे धीरे दांतों को भी ख़त्म कर देता है। तो अगर हम सफाई करें 2 बार दिन भर में, एक बार रात में या एक बार सुबह, 2 बार सफाई करें, और हमेशा खाना खाने के बाद कोशिश करें कि दांत, कोई खाने का कण या वो सब चीज़ दांतों के और मसूड़ों के बीच में ना हो,
1: जी
0: और
1: जी
0: पायरिया से बचाव हो सकता है।
1: जी सर, बहुत सारे मरीज दांतों में कीड़े लगने की समस्या लेकर के आते हैं, तो ये कीड़े लगने की समस्या कैसे उनके दांतों में हो जाती है, और इसको दूर करने के लिए क्या दांतों का उखाड़ना ही जरूरी है?
0: नहीं, दांतों में कीड़े लगते हैं, और दांतों को कोई भी चीज़, अगर कोई मीठी चीज़ या जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें अगर दांतों पे थोड़ी सी चिपकी रहती हैं, तो मुंह में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली हेल्प करते हैं, हमें उसको मदद करते हैं। लेकिन जब उन्हें चीनी, शुगर या कार्बोहाइड्रेट की चीज़ दांतों पे मिल जाती है, तो दांत पे चिपके होते हैं, तो वही सड़न धीरे धीरे करते हैं, और
1: जी
0: सड़न का प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब 6 महीने 1 साल में जरा सा सड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो कालापन हो जाएगा और सड़ते सड़ते नीचे तक पहुंच जाए। तो अगर सड़न ऊपर है तब तो हम लोग फिलिंग करते हैं, दांतों की फिलिंग वगैरह कर देते हैं, उससे ठीक हो जाता है, या तो कोई फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट करें तो उससे रुक जाता है। लेकिन अगर सड़न बढ़ती रही तो दांतों के नीचे आ जाती है वही सड़न, फिर वो दर्द वर्द करने लगती है। तो जब दर्द करने लगी है तो हमेशा निकालना ही नहीं ज़रूरी होता है, दांतों को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक होता है, तो उसको हम रूट कैनाल से बचाया जा सकता है, डेंटल सर्जन बचा देते हैं।
1: जी
0: और बहुत अगर अंदर तक सड़न हो गई है और मवाद वगैरह हो गई है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर निकालने की ज़रूरत पड़ती है उसको।
1: जी सर, दांतों का टेढ़े मेढ़े होना, या जब बचपन में दूध के दांत निकलते हैं तब तो वो सही निकलते हैं, लेकिन बाद में जब उसके दोबारा से दांत निकलते हैं दूध के दांत टूटने के बाद, तो दांत टेढ़े मेढ़े कभी निकलते, कभी दांतों के बीच में बहुत गैपिंग हो जाती है, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे समाधान पाएं?
0: दांतों का टेढ़े मेढ़ा भी आजकल बच्चों की आम समस्या है, और हमने देखा है कि इस एरिया में, हमारे पूर्वांचल एरिया में हम लोग स्टडी किए थे, हर दूसरे बच्चे का दांत आजकल टेढ़ा मेढ़ा या दांत बाहर निकल रहा है,
1: जी
0: तो बड़ी आम समस्या हो गई है। इसका प्रमुख कारण एक है, एक तो माँ बाप के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे हो सकता है, या बच्चों के जो आदत है मुँह से सांस लेते रहना, मतलब एक तरह से प्रॉपर नाक से सांस न ले पाना, अगर कई सालों तक करें तो इससे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, या अंगूठा चूसना या फिंगर चूसना बच्चों की आदत अगर 3-4 साल के बाद तक रहे तो उससे दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, या तो हम लोगों का जो खाना वाना जो है, हम लोग कड़ी चीज़ बच्चे अब खाते नहीं हैं, पहले बचपन में लोग कड़ी चीज़ खाते थे, गन्ना चूसते थे, चना खाते थे, आजकल खाते नहीं, तो उससे पूरा जबड़े का विकास नहीं हो पा रहा है। अब जब जबड़े का विकास नहीं हो पा रहा है तो उससे भी दांतों का, दांत की साइज़ वही है लेकिन जबड़े का विकास नहीं हो रहा, तो दांत टेढ़े मेढ़े निकलने लग रहे हैं, तो ये बड़ी आम समस्या आज की हो गई है, और इसका इलाज है। अब एक तरह से आप दांत के टेढ़े मेढ़े, उसका वायरिंग होती है, दांत में वायर लगाते हैं, अप्लायंस लगा के उसको ठीक कर देते हैं, और ये आराम से 20 साल तक तो एकदम आराम से ठीक हो जाता है। 20 साल के ऊपर रहे तो थोड़ा सा कम ठीक होता है, लेकिन ठीक हो जाता है किसी भी उम्र में। तो ये बड़ी आम समस्या है, एक तो देखने में उसको ख़राब लगता है दांतों का अगर टेढ़े मेढ़ा
1: जी
0: है, और या खाना खाने में उसको दिक्कत होती है, उससे वजह से जबड़े में दिक्कत हो सकती है, जबड़े के जॉइंट पे दिक्कत हो सकती है। तो ये सब जो समस्याएं पहले नहीं होती थी, जैसे जैसे हम लोग सभ्य होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों में ये समस्या, दांत के टेढ़े मेढ़े होना और आगे पीछे होना, ये बड़ी कॉमन समस्या हो गई है आज के युवा पीढ़ी की, आज के नए बच्चों की।
1: जी, आपसे दांतों के रोग के विषय में बातें हो रही हैं और इतनी महत्वपूर्ण

0: जानकारियां आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि ये जो दांतों के ऊपर कभी कभी एक परत सी, पीले रंग की परत सी जमा हो जाती है, और उसको हटाने पर या उसको उखाड़ने पर कभी कभी मसूड़ों से खून आता है, दर्द भी होता है, बदबू भी होती है, तो ये क्या रोग है और ये क्यों ऐसा हो जाता है, इसका कैसे इलाज करें?
1: देखिए, दांत में हम लोगों का मुंह में सलाइवा होता है और दांतों पे अगर हम लोग कुछ सफाई वफाई ना करें या वैसे छोड़ दें तो सलाइवा और मुंह में बैक्टीरिया ऐसा है, एक लेयर बनाते हैं, 12 घंटे में एक लेयर बनती है,
0: जी
1: वो हल्की सी होती है, हटाने लायक होती है लेयर। तो अगर ब्रश हम करें 12 घंटे में तो लेयर हट जाएगी, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो लेयर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे हार्ड होती जाती है, और हार्ड हो जाती है फिर उसको हम लोग कैलकुलस करते हैं, पहले शुरू में प्लॉक बनता है, ब्लॉक माने येलो एक लेयर का, फिर वही हार्ड हो जाता है, फिर कैलकुलस बन जाता है, हार्ड बन जाता है, और वही मसूड़ों और दांतों के बीच में अगर जल्दी रहता है तो वही इन्फेक्शन करने लगता है, वही अल्टीमेटली पायरिया बनाता है। तो
0: अच्छा
1: उसको
0: सर,
1: हम लोग जब निकालते हैं तो ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो मसूड़ों को ख़राब करते रहते हैं, लेकिन ये सब इतना धीरे प्रोसेस होता है कि आदमी को बहुत पता नहीं लगता, और दर्द होता नहीं है, चूँकि कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो असली चीज़ दर्द है, उसकी दर्द
0: जी
1: होता है तभी जाता है।
0: जी जी
1: तो ये कैलकुलस जमा होने, हार्ड टिश्यू जमा होने में, वो हार्ड स्ट्रक्चर बनने में दर्द नहीं होता है, तो ब्लीडिंग तो होती है, ब्लड निकलेगा, मुंह से बदबू आएगी और सूजन हो सकती है, मसूड़ों में मवाद भी आ सकता है, लेकिन दर्द अंतिम स्टेज पे होता है। तो जब दर्द नहीं होता तो हार्ड चीज़ें बन जाती हैं, और वही हार्ड चीज़ ब्रश से नहीं निकलती है, फिर जो कि शुरू में हम 2 बार ब्रश करें तो बनेगा ही नहीं,
0: जी
1: लेकिन हम नहीं करें तो उसको वो नहीं निकलेगा नहीं, और वही नहीं निकलेगा तो पायरिया हमारे दांतों में करता रहे और मसूड़ों को ख़राब करता रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी दांत देखने में बहुत सुंदर चमकदार मोतियों जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी ठंडा या गर्म का लगना, जो उसमें सेंसिटिविटी होती है, ये समस्या लोग लेकर के आते हैं और कहते हैं कि दांत का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफाई भी करते हैं, सुबह शाम ब्रश भी करते हैं, फिर भी ऐसी समस्या आ रही है, तो इसका क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है और इसको दूर कैसे किया जाए?
1: देखिए, पानी लगने की समस्या क्या होता है, दांत अगर बहुत रगड़ के ब्रश ना करें, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत रगड़ते हैं और दांत को चमके, हमारा चमके, इतनी भी ज़रूरत नहीं होती है दांत को चमकने का, जो नेचुरल एक कलर होता है दांत का, हल्का सा सफ़ेद और थोड़ा सा पीलापन लिए होता है दांत, और उसको अगर हम प्रॉपर ब्रश करते रहें तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन कब लोग कभी रगड़ रगड़ करते हैं तो दांत भी घिसते हैं,
0: जी
1: चमक तो रहती है लेकिन घिसते हैं। तो देखिए, पायर मेनली जो सेंसिटिविटी होती है दांतों की, या तो मसूड़ा धीरे धीरे छोड़ता है, वो नॉर्मल एजिंग है, जैसे हमारे बाल पकते हैं, स्किन में चेंज होता है, त्वचा में चेंजेस होता रहता है, तो उसी तरह दांतों में भी चेंजेस होता रहता है कि दांत के मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाते हैं,
0: जी
1: तो नीचे जाते हैं तो दांत के जो नीचे वाले पोर्शन है उसमें सेंसिटिविटी होने के चांस होते हैं, आया दांत की कोई सड़न हो या दांत ज़्यादा घिस रहा हो ऊपर से, तब सेंसिटिविटी होती है। तो
0: जी
1: सेंसिटिविटी होने का मतलब हम लोग दांत की सुरक्षा रखें और दांत को धीरे धीरे ब्रश करके उसको हल्के ढंग से मेंटेन करें तो कम चांसेस होगा, और नहीं तो दांत का अगर मसूड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है तब उसको आप डेंटल सर्जन से, किसी कुशल डेंटल सर्जन से आप दिखाइए, और उसका रीज़न अगर कुछ होगा तो करेगा, लेकिन दांत में सेंसिटिविटी आपको मसूड़ा छोड़े तब हो सकता है, और या तो हमारा दांत का सड़ना हो तब तभी होती है।
0: जी, जैसे आप मसूड़ा छोड़ने की बात कर रहे हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, अंदर से तो मजबूत रहते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये उखाड़ने के योग्य नहीं, ये स्वस्थ है, लेकिन फिर भी दांत हिल रहा है, तो ये मसूड़े का ढीलापन क्यों हो जाता है?
1: मसूड़ा देखिए, एक तो नॉर्मल हम लोग कुछ वही है, अगर उसका स्वास्थ्य, मुंह का भी स्वास्थ्य होता है
0: जी
1: तो उसका भी हम न मेंटेन करें तो उसकी वजह से भी मसूड़ा ढीला हो सकता है। तो स्वास्थ्य, मुंह का स्वास्थ्य मतलब सब कुछ मिला के देखिए, अगर हम मुंह की सफाई या ब्रशिंग 2 बार नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें तेज़ होती हैं, अदरवाइज़ तो आप देखिए 40-45 साल के बाद ये थोड़ा सा समस्या नॉर्मल है, जो हम लोग कहते हैं एजिंग, जो टिश्यू की एजिंग होती है, जो नॉर्मल उम्र में धीरे धीरे नीचे आने लगती है,
0: जी
1: तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, और लेकिन उस तरह हम लोग अगर सफाई करते रहें तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, मसूड़ा का ढीलापन।
0: जी
1: या
0: जी
1: मसूड़े छोड़ने को हम लोग रोक सकते हैं।
0: जी

0: सर, जैसे आपने दांतों के या मुंह के स्वास्थ्य की बात कही है, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम लोग खान पान का ध्यान देते हैं, तो क्या दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ विशेष खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और क्या खाना चाहिए
1: दांतों में देखिए वैसे
0: तब?
1: जो
0: सर, एक फोन आ रहा है, ले लेते
1: हाँ
0: हैं।
1: बताइए।
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
2: हाँ हम दीपक बोल रहे हैं, गाजीपुर जिले में फतेहला सर मुड़वल से। जी
0: दीपक जी, गाजीपुर से आरोग्यम में आपने फोन किया है, और आज
2: जी
0: दांतों के रोग पर बात हो रही है। जाने माने वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर लें जो भी समस्या हो।
1: बताइए दीपक जी, क्या समस्या है दांतों
2: हाँ
1: की?
2: नमस्कार डॉक्टर सर,
1: नमस्कार।
2: हमारे बेटे हैं, उनका नाम अथर्व है, उनकी एज 7 ईयर है, और उनको दांत में

0: बोल रहे हैं, गाजीपुर जिले में फतेहल्लापुर मुड़वल से। जी
1: दीपक जी गाजीपुर से आरोग्यम में आपने फोन किया है और
0: जी बोल,
1: आज दांतों के रोग पर बात हो रही है। जाने माने वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर लें जो भी समस्या हो।
2: बताइए दीपक जी, क्या समस्या है दांतों
0: हाँ
2: की?
0: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार।
0: सर हमारे बेटे हैं, उनका नाम अथर्व है, उनकी एज 7 ईयर है और उनको दांत में अंदर से काला हो रहा है, अंदर वाला दांत, और बोल रहे हैं कि दर्द भी हो रहा है।
2: आगे का दांत या पीछे वाले दांत?
0: नहीं, पीछे वाला दांत, पीछे वाला
2: पीछे
0: दांत।
2: वाले दांत। हाँ, पीछे वाले दूध वाले दांत इस समय होते हैं 7 साल पे, तो
0: जी।
2: दूध वाले दांत पे काला हो रहा है। तो आप तो एक तो थोड़ा सा थोड़ा मीठा उठा या वैसे दूध दूध पिला के दें तो उसकी सफाई कर दिया करें। और हल्का सा अगर सड़न हो तो बच्चों का एक टूथपेस्ट आता है, बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं अलग से, उसको आप बोलेंगे दुकानदार वाला दे देगा, बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं। और मतलब बहुत अगर दर्द हो तो इसको आप एक कोई पेन किलर जो होता है, सिरप होता है, बच्चों का दे दीजिए और उसकी सफाई करिए। क्योंकि देखिए आजकल बच्चे ने थोड़ा मीठा या केक या वैसी चीज़, टॉफ़ी चॉकलेट ये सब खाते हैं तो उसकी वजह से सड़न होती है। हालांकि जो पीछे वाले दांत होते हैं वो 12 साल तक रहते हैं, 11-12 साल तक, तो टूट के फिर नया आ जाएगा। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी डेंटल सर्जन को आप दिखाएं, ठीक है ना?
1: जी,
2: ठीक, थैंक यू।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: हाँ, खान पान पे बात हो रही थी तो देखिए खान पान, देखिए दांतों के जो जो शरीर में स्वस्थ जो चीज़ें करती हैं वो दांत और मसूड़े और दांतों के जो हड्डी जिसमें रहता है दांत, तो सब वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई करते हैं। और हम लोगों को साग सब्जी ये सब ज़्यादा खाने चाहिए, और कोई भी चीज़ चबाने वाली जो धीरे धीरे चबाने वाली चीज़ है वो ज़्यादा हम लोग खाना चाहिए। उससे एक्सरसाइज होती है, पूरे मुंह की जबड़ों की एक्सरसाइज होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उस एरिया में।
1: जी
2: और जितने भी विटामिन की चीज़ें होती हैं और जितने भी हरी साग सब्जी अगर खाएं, वो सब चीज़ें हम लोगों को मसूड़ों को भी मजबूत करेंगी, हड्डी को मजबूत करेंगी और दांत के फंक्शनिंग को भी, दांत के जो दांत कैसे काम करता है उसको भी मजबूत करती हैं।
1: जी
2: और कोई भी ताकत वाली चीज़ अगर शरीर को मजबूत कर रही है तो दांत और मसूड़ों को भी मजबूत करेगी। तो इसमें हम यही कहेंगे कि हरी साग सब्जी खाएं और बहुत ऑयली चीज़ें ना खाएं, और ज़्यादातर है कि जितना हेल्दी चीज़ खाएंगे उतने मजबूत आपका शरीर होगा।
1: जी जी अच्छा, एक दांत निकलता है जो एक उम्र के बाद निकलता है, 40 के या 35 के बाद निकलता है, जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, तो क्या ये सबको निकलता है? और ये निकलता है तो बहुत दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, ये क्या है?
2: देखिए उसको हम लोग को अक्कल दाढ़ कहते हैं, विजडम टूथ। उसका टाइमिंग होती है 18 साल से 25 साल के बीच में, अगर नॉर्मल,
1: जी
2: वो तीसरा दांत, तीसरा मोलर होता है, और 32 में से 28 दांत हम लोगों के 12 साल तक आ जाते हैं।
1: जी
2: फिर ये जो है जो चार दांत होते हैं चारों कोने पे, ये आते हैं 18 से 25 साल में, किसी किसी में 30 या 35 साल में आते हैं। आजकल समस्या हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें 20 लोगों को ये चार दांत आ ही नहीं रहे हैं, या तो दो दांत नहीं आ रहे हैं या तीन दांत या चारों नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अब इस पे भी स्टडी की है कि तीसरा दांत अक्कल दाढ़ 20% युवक में हो ही नहीं रहा है,
1: जी
2: तब हम लोगों के 32 के बजाय अब फ्यूचर में 28 दांत होने लगेंगे। यही एक जो पैटर्न देखा जा रहा है। अभी जब अंतिम दांत आता है तो उसको जगह प्रॉपर नहीं मिलती है निकलने की, कभी कभी
1: जी जी
2: कभी कभी तो आराम से निकल आता है, कभी कभी नहीं निकलती। ये भी बड़ी आम समस्या है युवाओं की। और अगर वो दांत प्रॉपर जगह नहीं है और नहीं निकल पा रहा है तो दर्द करता है वहीं पे, दर्द करता है तो स्वेलिंग हो सकती है क्योंकि वो हड्डी में फंस जाता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन होता रहता है। और उसको अक्कल दाढ़ इसलिए कहते हैं कि जो जनरली कैरियर जो है 18 से 25 साल या 30 साल में बनता है तो उसको विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ साइंटिफिक नेम नहीं है, साइंटिफिक नेम तो उसका है थर्ड मोलर,
1: अच्छा
2: लेकिन अब विजडम टूथ कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं, क्योंकि उसी समय ज़्यादातर लोगों का करियर इस्टेब्लिश होता है।
1: जी
2: आइए अगर है आपको बहुत, अगर सीधा नहीं आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है, तो उसको निकलवा ही देना अच्छा होता है क्योंकि उसका बहुत फंक्शन नहीं है आज की डेट में। लेकिन तब भी अगर सीधा किसी का आ गया, नॉर्मल आ गया, तब नहीं निकलवाने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 100 लोगों में से 20 लोगों को दांत ही नहीं आ रहा है,
1: जी
2: और अगले 20 से 30 लोगों को 100 लोगों में वो दांत टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, और वहाँ स्वेलिंग हो जा रही है, सूजन आ जा रही है जबड़े में, और बड़े मुश्किल से वो निकलता है दांत।
1: जी
2: तो
1: जी
2: उसको ध्यान देना चाहिए, और अगर थर्ड मोलर अक्कल दाढ़ बहुत परेशान कर रही हो तो आप

0: डेंटल सर्जन को दिखा के फिर उसका इलाज करवाए।
1: जी अच्छा सर, कुछ लोगों की समस्या होती है कि एक दांत में से फिर दूसरे भी दांत निकल रहे हैं, डबल हो जा रहा है ये समस्या, और दांतों के झड़ने की समस्या, मतलब दांतों की परत टूट टूट कर निकल रही है, तो ये समस्या क्यों होती है और इससे कैसे निजात पाएं?
0: ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जैसे एक दांत से दूसरा दांत, वही कि दूध वाले दांत रहते हैं और फिर उसके बगल में भी दांत निकलने लगते हैं,
1: जी
0: या तो अगल बगल जो निकल रहे हैं दांत तो उनको जगह नहीं मिलती तो जो पड़ोसी वाला दांत उसके ऊपर निकलने लगता है, और किसी किसी केस में एक आध एक्स्ट्रा दांत बन जाते हैं, वो डेवलपमेंटल होते हैं, मतलब डेवलपमेंट के समय ही हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा दांत निकलने लगते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत है। इसका अगर कुछ हो तो आप डेंटल सर्जन को निकाल के जो एक्स्ट्रा दांत हो उसको निकाल दिया जाए।
1: और ये जो दांतों के टूटने की बात,
0: हाँ, दांतों दांत में क्या होता है, हम लोग जैसे रात में कभी कभी ना कुछ बच्चों को, जनरली बच्चों को होता है, कुछ उम्र वालों को भी होता है, ब्रक्सिज्म कहते हैं, तो अगर दांत जैसे झड़ने लगा या दांत किटकिटाने लगा तो उसकी वजह से या हम तेज ब्रश कर रहे हैं या आजकल हम लोग जो तो तंबाकू या सुरती खा रहे हैं या पान सुपारी खा रहे हैं बहुत, तो उसकी वजह से भी दांत का एक लेयर जाती रहती है,
1: जी
0: और जब
1: जी
0: लेयर जाए तो मतलब वो अच्छी बात नहीं है, तो दांत की लेयर जब ऊपर से जाए तो घिसने लगता है और धीरे धीरे फिर हम लोग को पानी उनी लगना और फिर और समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
1: जी
0: तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि आप जो हेल्दी चीज़ खाएं और बहुत चीज़ जो पान मसाला गुटखा तंबाकू ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम आप अवॉइड करिए।
1: लेकिन बहुत से लोगों में ये भ्रम होता है कि हमारे दांत में दर्द होता है तो हम तंबाकू दबा लेते हैं तो मेरा दर्द सही हो जाता है, या हम पान का सेवन कर रहे हैं तो उससे दांत का दर्द सही होता है, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे?
0: ये जो ये सब चीज़ें जो पान या गुटखा तंबाकू सुपारी ये सब उस समय दर्द कम कर देते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इस जो रहते हैं उतनी देर में वो ज़्यादातर दांत के पोर्शन को गलाते हैं या हड्डियों को गलाते हैं,
1: जी
0: या तो आपको हमें दूसरी प्रॉब्लम होने लगती है जो प्री कैंसरस लीजन है, कैंसर लीजन है, अल्सर होने लगता है,
1: जी
0: तो उस समय तो लगता है हमको, लेकिन वो दांत को धीरे धीरे ख़त्म ही करते हैं।
1: यानी ये हर हाल में नुकसानदायक ही है, इसका सेवन बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन समय भी बीच में आकर कह रहा है कि अब हम लोगों को अपनी बातों को विराम देना चाहिए, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है?
0: मुंह और दांत का स्वास्थ्य रखें, तंबाकू सेवन गुटखा का उपयोग मत करें, ब्रश 2 बार करें, और ब्रश हमेशा अपने ब्रश को हर 3 महीने या 4 महीने में बदलें, और ब्रश को जहाँ भी रखें तो थोड़ा साफ सफाई करके रखें, या कभी कभी माउथ वाश आता है उसको लेके गिलास में करके उसकी सफाई कर दिया करें।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, दांतों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया श्रोताओं के फोन कॉल के जरिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं आज ये स्पष्ट हो गया कि दांतों की कोई भी समस्या हो इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर दांतों की जांच कराते रहनी चाहिए। इस पर यही कहूंगी कि मुस्कान रहेगी प्यारी जब दांतों की सही देखभाल होगी हमारी जिम्मेदारी। इसी संदेश के साथ अपने रेडियो मित्र शिखा श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति अगले कार्यक्रम में फिर नए स्वास्थ्य से संबंधित विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।

स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय था दांतों से संबंधित रोग और उसका इलाज। विशेषज्ञ थे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की सूत्रधार शिखा श्रीवास्तव। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम, वेव सोटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की शाम की सभा। सभा के आरंभ में बच्चे सुने बाल गोपाल कार्यक्रम।
1: बच्चों जय हिंद। देखा देखा बच्चों, अपने बाल गोपाल कार्यक्रम में फिर से बढ़िया कार्यक्रम बनावे बदे अपने बाल गोपाल में हम लोग लेके आयल है एक कार्यक्रम। बच्चन के अच्छी अच्छी जानकारी देहे बदे ये कार्यक्रम हम लोग लेके आवल जाला। बच्चों देखा, अपने परिवार में अपने बड़ बुजुर्ग से हमन के इहे ज्ञान मिलल हो कि सबकर बिना स्वार्थ के मदद कैल जाए। काहे कि अगर कोई के मदद आप करबा तो समय पड़ले पर आपके भी मदद केहू न केहू जरूर करी। बच्चों मनुष्य एक देखा सामाजिक प्राणी हो और समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहला। आज आप कोई के मदद करबा बच्चों तो कल तुम्हार मदद भी

निर्माण, कृषि, परिवहन और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में होता है। पाइप, पानी की टंकियां, पैकिंग सामग्री, मशीनों के कुछ हिस्से और अनेक औद्योगिक वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्लास्टिक पूरी तरह बेकार पदार्थ नहीं है। इसका उचित उपयोग हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है। बच्चों, यह तो था तस्वीर का एक पहलू जिसने तुम्हारे दिमाग में प्लास्टिक को एक हीरो की तरह स्थापित किया होगा, परंतु तस्वीर का दूसरा पहलू देखते ही तुम्हें प्लास्टिक एक खलनायक लगने लगेगा। प्लास्टिक ने एक तरफ जहां हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने अनेक चुनौतियां भी पेश की हैं। यह चुनौतियां भी छोटी मोटी नहीं हैं, यह अत्यंत भयावह है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका बहुत सा हिस्सा प्राकृतिक रूप से जल्दी नष्ट नहीं होता। कागज एवं पत्तियों की तुलना में यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। जब हम प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और पैकेट को इधर उधर फेंक देते हैं तो वह लंबे समय तक कचरे का हिस्सा बने रहते हैं। आज हमारे शहरों एवं गांव में प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बारिश के दिनों में तुमने देखा होगा कि सीवर एवं नाली भरकर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। इस जल भराव का एक वजह हम तुम भी हैं। जब हम प्लास्टिक को जहां तहां फेंक देते हैं तो वह नाली और सीवर को जाम कर देते हैं, जिससे पानी बह नहीं पाता और जल भराव हो जाता है। इससे एक तरफ जहां आवागमन में असुविधा होती है, वहीं दूसरी तरफ सड़कें भी जल्दी खराब होती हैं। प्लास्टिक जल प्रदूषण का भी एक बड़ा कारण है। जब प्लास्टिक कचरा नदियों, तालाबों और समुद्रों में पहुंचता है तो यह जलीय जीवों के लिए खतरा बन जाता है। मछलियां, कछुए और अन्य जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिनसे उनके जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, तुमने शहर या गांव में ऐसे खुले पशुओं को अवश्य देखा होगा जिनका पेट बहुत फूला रहा होगा। क्या तुम जानते हो कि यह उनके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं बल्कि बीमारी का द्योतक है। ये पशु सड़कों और गलियों में हमारे तुम्हारे द्वारा फेंके गए प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल जाते हैं और वह उनके पेट में जमा हो जाता है, जिससे उन्हें अनेक तरह की बीमारी हो जाती है और कई बार वह समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्लास्टिक भूमि प्रदूषण को भी बढ़ाता है। खेतों और खाली जमीन पर जमा प्लास्टिक मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यदि हम प्लास्टिक को बिना सोचे समझे जहां तहां फेंकते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना कठिन हो जाएगा। प्लास्टिक को खुले में जलाना भी एक गंभीर समस्या है। बहुत से लोग प्लास्टिक के कचरे को आग लगा देते हैं। ऐसा करने से धुआं और प्लास्टिक की विषैली गैसें वातावरण में घुल जाती हैं, जिसका हम सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्लास्टिक को खुले में जलाने से बचना चाहिए। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के भी बड़े नुकसान है। एकल उपयोग यानी ऐसी प्लास्टिक जिसका उपयोग हम एक बार थोड़ी देर करने के बाद फेंक देते हैं, जैसे पतली प्लास्टिक की थैलियां यानी पॉलिथिन, डिस्पोजेबल कप, प्लेट इत्यादि। हम सबको लगता है कि हमारे एक छोटी सी पॉलिथिन की पन्नी से क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों, सोचो कि यदि करोड़ों करोड़ लोग जब यही सोचकर प्लास्टिक का प्रयोग असावधानी पूर्वक करेंगे तो पर्यावरण का क्या हाल होगा। बच्चों, अब तुम समझ गए होगे कि प्लास्टिक से फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। समस्या प्लास्टिक की मौजूदगी नहीं है बल्कि उसके अनावश्यक और अत्यधिक उपयोग से है। जहां तक संभव हो हमें प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलना चाहिए ताकि हमें प्लास्टिक की थैली में सामान लेने की जरूरत ही न पड़े। पानी के लिए बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली बोतल का प्रयोग करना चाहिए। पुनः प्रयोग में लाई जा सकने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को तुरंत कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों, तुम्हारी एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि तुम यथासंभव प्लास्टिक की वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करो और घर, परिवार, मोहल्ले के लोगों को भी यह बताओ कि प्लास्टिक के असावधानीपूर्वक प्रयोग से कैसे उनका जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। तुम खुद भी प्लास्टिक का कचरा न जलाओ

0: और न ही लोगों को जलाने दो। आप अपने विद्यालय में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने का अभियान भी चला सकते हो। लोगों को यह समझाओ कि प्लास्टिक हमारा दुश्मन नहीं है, परंतु असावधानी और अत्यधिक प्रयोग से वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बच्चों, अब तुम यह समझ गए होगे कि प्लास्टिक मानव विकास की एक उपयोगी देन है, लेकिन उसका गलत और अत्यधिक उपयोग हमारे लिए समस्या बन सकता है। यदि हम समझदारी से प्लास्टिक का उपयोग करें और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम प्रयोग करें, साथ ही उसके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें तो बेहतर होगा। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचें और कचरे को जिम्मेदारी से निपटाएं। आज हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम प्लास्टिक के उपयोग से बचेंगे, उसका अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्यारे बच्चों, आने वाला कल तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है।
1: धनंजय साहब भैया का कितना अच्छा जानकारी रहल है, और बच्चों देखा कितना बढ़िया जानकारी देना है कि प्लास्टिक हमन के जीवन में कितना हानिकारक हो। ये बदे बच्चों हमन के सभी लोगन के और तुह लोगन के जागरूक होके के चाहिए और अपने अगल बगल सभी के जागरूक करे के चाहिए। बात वार्ता तो हो गल बच्चों, अब देखा समय हो मन मनसायन का, हमार चुन्नू मुन्नू एकर इंतजार करना।

मन मनसाइन बच्चों तो हो गए, अब देखा अगले कार्यक्रम में फिर से आवल जाई बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके। तो बच्चों जय हिंद।

0: बोलो क्या बोलो बोलो
1: बुद्धि
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक अच्छी बात किसी का दिन बदल सकती है, एक उम्मीद किसी की सोच बदल सकती है और एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
1: शाम के सुनहरे रंग और ताजगी भरी हवाओं के साथ आप सबका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में, जहां मैं हूं आपकी रेडियो साथी ऐश्वर्या
0: और मैं हूं श्रीची। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न से भरे होंगे। तो आइए आज के इस

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं। सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
11: दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी अपने के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस दुख से भी कठिन होता है ये कि किसी अपने के

0: में कुछ भी न जान पाना, न यह पता होना कि वह कहाँ है, किस हाल में है, और न यह पता होना कि वह कभी वापस आएगा या नहीं।
1: एक परिवार इंतजार करता है और एक माँ दरवाजे की ओर देखती है। एक पिता हर आने वाली खबर में अपने बच्चे का नाम तलाशता है और समय बीतता जाता है, लेकिन एक सवाल वहीं ठहरता रहता है, वह आखिर है कहाँ।
0: इसी पीड़ा, इसी अनिश्चितता और ऐसे परिवारों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है जबरन गुमशुदा किए गए व्यक्तियों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस तरह गायब कर दिया जाता है कि उसके ठिकाने या स्थिति की जानकारी परिवार और समाज से छिपी रहे, तो इसे जबरन गुमशुदगी कहा जाता है।
0: ऐसी घटना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, इसके साथ जुड़ा होता है एक पूरा परिवार जिसकी जिंदगी इंतजार, चिंता और अनगिनत सवालों के बीच गुजरती है।
1: सोचिए, किसी प्रियजन के लिए शोक मनाना भी कठिन होता है, लेकिन जब यह भी निश्चित न हो कि वह व्यक्ति कहाँ है, तो उसके साथ क्या हुआ, तो परिवार के लिए उस स्थिति को स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है।
0: यही कारण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें केवल गुमशुदगी की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं देना है, बल्कि हमें मानव गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के महत्व को भी याद दिलाना है। हर इंसान को अपने जीवन और स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है।
1: जी हाँ दोस्तों, उसे सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गायब कर देना इतने मूलभूत अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है।
0: इस दिवस का उद्देश्य है कि जबरन गुमशुदगी के मामलों में प्रति विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़े, पीड़ितों और उनके परिवारों की आवाज़ सुनी जाए तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास भी किए जाएं।
1: ये दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि पीड़ित परिवारों को केवल सहानुभूति की नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय और जवाबदेही की भी आवश्यकता होती है।
0: श्रोताओं, मानवाधिकारों की रक्षा किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। एक संवेदनशील समाज वही होता है जो दूसरों के अधिकारों और पीड़ा को समझे और उनकी आवाज़ को सुने, अन्याय के प्रति कभी मौन ना रहे।
1: तो आइए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम उन सभी लोगों और उनके परिवारों को याद करें जो जबरन गुमशुदगी की पीड़ा से प्रभावित हुए हैं।
0: आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां किसी परिवार को अपने प्रियजन की खबर के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके।
1: जी हाँ दोस्तों, और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी इंसान का गुम हो जाना सिर्फ एक नाम का रिकॉर्ड से मिट जाना नहीं है, बल्कि ये है कि वह किसी परिवार की ज़िंदगी में पैदा हुआ एक ऐसी खामोशी है जो जवाब मिलने तक खत्म नहीं होती। एक ऐसी खामोशी को आवाज़ देना, मानवाधिकारों के प्रति जागरूक फैलाना और न्याय की आवश्यकता को समझाना ही इस दिवस की सच्चाई भावना है।
0: दोस्तों, जब हमारा अपना दूर होता है तो बस यही मन करता है कि वो वापस चला आए, जैसे इस गीत में है।

0: ऐश्वर्या, मैं तुम्हें एक विचार सुनाती हूँ जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जरा याद करके बताना कि वो विचार किसके हैं। वो विचार है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सोचो सोचो।
1: हाँ हाँ याद आ गया। ये छोटी सी पंक्ति अपने भीतर एक पूरे जीवन दर्शन को समेटे हुए, शिक्षा से जागरूकता, संगठन से शक्ति और संघर्ष से परिवर्तन।
0: कुछ व्यक्तित्व समय के साथ बदलते नहीं, बल्कि समय की दिशा ही बदल देते हैं। कुछ लोग इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास को नई पहचान देते हैं।
1: ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम स्नेह और सम्मान से बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी इंसान की पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, उसके ज्ञान और उसके विचारों से होती है। जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें अनेक सामाजिक कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस परिस्थितियों को अपने सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बनने दिया।
1: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी लगन इतनी प्रबल थी कि वे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उनके कदमों को रोक नहीं सकी। उनका विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को केवल सक्षम नहीं बनाती, बल्कि उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करती है।
0: बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन

0: सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा के लिए समर्पित किया। वे चाहते थे कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके योग्यता और मानवता से निर्धारित हो।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ने उन्हें राष्ट्र निर्माण के इतिहास में अमर स्थान दिया। संविधान के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे लोकतांत्रिक भारत की कल्पना को मजबूत किया जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और न्याय प्राप्त हो।
0: आज के युवाओं के लिए भी बाबा साहब का जीवन एक स्पष्ट संदेश है। सपने बड़े रखिए, शिक्षा को अपना साथी बनाइए, कठिनाइयों से घबराइए नहीं और अपने आत्मसम्मान से तो कभी भी समझौता मत कीजिए।
1: क्योंकि बाबा साहेब का जीवन हमें ये बताता है ना कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि विचार मजबूत हो, ज्ञान साथ हो और हौसले बुलंद हो, तो एक व्यक्ति भी बदलाव की पूरी कहानी लिख सकता है। आइए हम बाबा साहेब को केवल स्मरण ही ना करें, बल्कि उनके विचारों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। शिक्षा, समानता, न्याय और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें।
0: ऐसे महान चिंतक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन।
1: तो दोस्तों, हमारी जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही बरकरार रहेगा और आगे भी हमारी जानकारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये एक गीत।

0: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यू डायरी की ओर और जानते हैं हमारे आज के हिंदी और अंग्रेजी के नए शब्द जो आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, हमारा आज का हिंदी का शब्द है अन्वेषण, जिसका अर्थ होता है खोज, तलाश, जांच पड़ताल या किसी चीज के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना। और इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने नई दवा की खोज के लिए अन्वेषण किया, या फिर ऐसे कि गुमशुदा व्यक्ति की तलाश और अन्वेषण जारी है।
0: इसी के साथ हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है एरुडाइट। इट मींस हैविंग और शोइंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, स्पेशली फॉर रीडिंग एंड स्टडिंग। इन सिंपल मीनिंग वी कैन से वेरी नॉलेजेबल और हाईली एजुकेटेड। द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी शी इज एन एरुडाइट प्रोफेसर, और वी कैन से शी इज अ हाईली नॉलेजेबल एंड लर्न्ड प्रोफेसर।
1: दोस्तों, वक्त कभी ठहरता नहीं है। हर पल दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ नया घट रहा होता है और उसे जानना भी तो जरूरी होता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे मेन सेगमेंट विश्व घटना चक्र में आपको दुनिया के कुछ खबरों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप एक महाद्वीप से तैरना शुरू करें और तैरते तैरते दूसरे महाद्वीप में पहुंच जाएं? जी हाँ, आपको भी सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन लगता होगा, लेकिन तुर्की के ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में तैराकों ने ठीक यही कारनामा कर दिखाया है। विश्व प्रसिद्ध बोस्फोरस क्रॉस कॉन्टिनेंटल स्विमिंग रेस, जो कि दुनिया भर के हजारों तैराकों ने एशिया से यूरोप तक की दूरी तैर कर पार की थी। दोस्तों, इस इवेंट की खास बात ये होती है कि करीब 6.5 किलोमीटर लंबा यह रूट एशिया के कालनिका से शुरू होकर यूरोप के क्रूचेस्पे पर खत्म होता है। दोस्तों, इसमें चुनौतियां भी होती हैं, जो कि है बोस्फोरस जल डमरू मध्य की बेहद तेज समुद्री धाराओं और ठंडे पानी से जूझते हुए तैराक, फिर भी तैराकी इस मुकाम तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसी ओपन वाटर तैराकी प्रतियोगिता है जो दो महाद्वीपों को सीधे जोड़ता है। वो दो महाद्वीप हैं एशिया और यूरोप। और दोस्तों, जब यह रेस होती है तो जहाज़ों का सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है और पूरा समंदर बन जाता है एक इंटरनेशनल स्विमिंग ट्रैक। दोस्तों, जब ये स्विमिंग ट्रैक वाली जो रेस होती है, उसको देखने का जो नज़ारा है वो वाकई बहुत खूबसूरत होता है।
0: दोस्तों, दुनिया की एक महत्वपूर्ण खबर हमारे देश से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी है। वह यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में वीज़ा प्रोसेसिंग और नए आवेदनों का पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसका सबसे बड़ा असर भारतीय आवेदकों पर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक सभी दूतावासों में अधिकारियों के लिए एक वैश्विक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि आवेदनों की जांच और सुरक्षा मानकों को कड़ा किया जा सके। जिन लोगों को इंटरव्यू की तारीखें मिल चुकी थीं, उन्हें ईमेल के जरिए समय बदलने की सूचना दी जा रही है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये भी बता दूं कि जो लोग भी नौकरी, पढ़ाई या स्थायी वीज़ा की कतार में लगे हैं, उन्हें अब नए स्लॉट्स के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये रोक कितने समय तक लागू रहेगी, अमेरिकी सरकार ने अभी इसकी स्पष्ट समय सीमा जारी नहीं की है।
1: तो दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि अब बारी है आपके उस सेगमेंट की जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और वो है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर्स के नाम जानने की।
0: लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा कल का प्रश्न आपसे क्या था। हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था कि वर्ष 2026 में समुद्र मंथन

0: राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? जिसका सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
1: और जो हमारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योतिष और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई और दिव्यांश नागरपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। आप सभी विनर्स को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ जानते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जल्दी जल्दी भेजिए
0: अपने आंसर्स और बन जाइए हमारे विनर्स। लेकिन आपको आंसर भेजने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ भेजना है। जी हाँ, आपको अपना जवाब हमारे इंस्टा हैंडल youth वाराणसी पर या हमारे ईमेल पता youth@vns@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा इंस्टा हैंडल youth और हमारा ईमेल पता youth@vns@gmail.com। तो जल्दी जल्दी जाइए और बन जाइए हमारे विनर्स।
1: और आज के विनर्स के लिए ये गीत।

0: हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, किस ओर चले मत यह पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दोस्तों,
1: ये पंक्तियाँ सुनकर आपके मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। और साथियों, इसी सवाल का जवाब किसी दार्शनिक की भारी भरकम किताबों से नहीं, बल्कि एक ऐसे लेखक के कलम से मिलता है जिसने जिंदगी के उसे अल्पण में जिया।
0: दोस्तों, वो लेखक, उपन्यासकार, हिंदी साहित्य के कालजायी रचनाकार भगवती चरण वर्मा 30 अगस्त 1903 को उन्नाव के सफीपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा ने जिंदगी को कभी किसी दायरे में बांधकर नहीं देखा। वकालत पढ़ी लेकिन दिल अटका था लफ्ज़ों के दरिया में, इसलिए कोर्ट की फाइलें छोड़कर थाम ली कलम।
1: और दोस्तों, जब 1934 में उनका उपन्यास आया जिसका नाम है चित्रलेखा, तो उसने समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पूछा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्या कोई इंसान पूरी तरह बुरा हो सकता है या पूरी तरह भला हो सकता है।
0: उन्होंने दिखाया कि इंसान परिस्थितियों की कठपुतली है। सामंती सोच, बदलता भारत और आम आदमी की कशमकश को उन्होंने भूले बिसरे चित्र में इतनी खूबसूरती से उकेरा कि 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में उन्हें पद्म भूषण भी मिला, लेकिन उनका असली सम्मान तो पाठकों के दिलों में था।
1: और दोस्तों, साहित्य के अलावा सिनेमा की दुनिया भी उनके जादू से अछूती रही। बॉम्बे टॉकीज के उस सुनहरे दौर में उन्होंने फिल्मों के लिए संवाद और पटकथाएं लिखी। केदार शर्मा के निर्देशन में जब चित्रलेखा पर फिल्म बनी तो उसके अमर संवादों ने पर्दे पर ही रूहानी कशिश पैदा कर दी और उनकी किताब के पन्नों में थी।
0: इतना ही नहीं, भगवती बाबू के व्यंग की धार भी कमाल की थी। उनका उपन्यास अपने खिलौने, समाज के खोखलेपन और आधुनिकता के ढकोसलों पर ऐसी गहरी और गुदगुदाती चोट करता है जिसे पढ़कर आज का इंसान भी मुस्कुराते हुए सोचने पर मजबूर हो जाए।
1: एक और खास बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, भगवती बाबू का हमारे इस माध्यम यानी आकाशवाणी से भी गहरा नाता रहा। उन्होंने रेडियो के लिए कई ड्रामे और रूपक भी लिखे। वे जानते थे कि लफ्ज़ जब आवाज़ बनकर हवा में तैरती हैं तो उनका असर सीधा रूह पर होता है।
0: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ हर कोई किसी न किसी तनाव में है, भगवती चरण वर्मा का साहित्य हमें ठहरना सिखाता है। वो सिखाते हैं कि बेफिक्र होकर जियो, सुख दुख को एक घूंट समझकर पियो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, आगे है हमारी आज की रोजगार सूचना, जो आपके लिए एक तरीके से रिमाइंडर है

0: राज्यों की वह है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा UPSSC PET के लिए अधिसूचना जारी की थी और आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हो गई थी और उसके आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 तक है, जिसमें अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं दोस्तों।
1: तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो अभी भी समय है, जल्दी कीजिए। और योग्यता के लिए अपनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं।
0: दोस्तों, हमारी आवाज़ के झोंके आप तक आते रहेंगे, हम रेडियो के राही यूं ही आपके ज्ञान को आगे बढ़ाते और सुनाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इन दो रेडियो साथी श्रीची
1: और मैं ऐश्वर्या
0: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 201। अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ है हम विकास राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों से अपन विचार साझा कैले। विकसित भारत बदे नशा मुक्त युवा अभियान का चर्चा करत श्री मोदी कहने कि पूरा प्रदेश में ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा हो। ढेर लोग आज खास करके नौजवान बढ़म संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहा हवे। प्रधानमंत्री लोगों से नशा मुक्त भारत बदे प्रभावशाली नारा तैयार करे और युवा संगीतकारन से ऐसा गीत बनावे के कहले जवन नशा मुक्त जीवन का संदेशा दे।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आपको पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियन ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री कहने की पीएम स्वनिधि योजना के जरिया से लाखों महिला लोगों के नया शक्ति मिल रहा हो। वहां के कहने की यह योजना का लाभार्थी लोगों में करीब 46% महिला हैं। गाजियाबाद का बबीता शर्मा का चर्चा करत प्रधानमंत्री कहने कि वहां के पीएम स्वनिधि से मिलल आर्थिक सहयोग के जरिया से अपन कारोबार बढ़ौले हैं। स्वच्छ भारत अभियान का चर्चा करत श्री मोदी कहले कि जब कर्मी जगह के साफ रखे का संकल्प लोग इनका आपन संकल्प बन जाला तो उसे वह जगह का पहचान पुरहर बदल जाला। एक हम में वहां के प्रदेश के पटवाई का आकाश और रोहन का जिक्र कैली।
2: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और

0: धीरे दूसरी युवा भी उनके साथ जुड़ने लगी। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री लोगों से त्योहारों का यह मौसम में वोकल फॉर लोकल के समर्थन का अर्ज कैल है। वहां के कहने की हमन के अपना घर बदे जवन भी सामान खरीदी और में एक बेर जरूर देख लें कि वो भारत का बनल होके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ छावनी के दिलकुशा लाल नाता में 101 करोड़ रुपया का लागत वाली 14 विकास परियोजना का भूमि पूजन कैले। यह मौका पर रक्षा मंत्री छावनी क्षेत्र के खास बाजारिन के अंग्रेजी नाव बदल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन और महान विभूतियों के नाव पर रखे का घोषणा कैले। रक्षा मंत्री कहने की बाजारिन का नाव बदलल खाली औपचारिकता नहीं है बल्कि एक उद्देश्य भावी पीढ़ी के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन और विभूतियों का जिंदगी से प्रेरणा दिया वल हो। वहां के बतौने की छावनी क्षेत्र के कई बाजारिन का नाव वीरांगना उदा देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसन महान विभूतियों के नाव पर कैल गेल हो। यह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि केंद्र और प्रदेश सरकार का तालमेल से लखनऊ के साथ है पूरा प्रदेश में तेजी से विकास भइल हो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहने। आज वे रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के मूर्ति का अनावरण कैले। नेपाल बाढ़ में मरे वालन की संख्या 734 हो गई हो। करीब 2500 लोग अभी लापता हवे। आपदा के पचवें दिन में बचाव कर्मी लापता लोगों का खोज और फसल लोगों के बचाव में जुटल हवे। विदेश मंत्रालय बतौलस की 11 टन राहत का सामान लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचल। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बतौल कि अगले 108 भारतीय नागरिक लोगों के बचावल जा चुकल हो। 275 भारतीय और योद्धा का भारतीय मूल का 128 लोग अभी लापता हवे। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हवे और पेंचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हवे। मंत्रालय कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के जल्दी बचाव और राहत कार्य बदे नेपाल और चीन का अधिकारी लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रही हो। बरखा और बैराजन से पानी छोड़ल गेले के नाते प्रदेश के कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया हो। अतिवृष्टि के नाते पिछला कुछ दिन में करीब 26 जिला बाढ़ से प्रभावित भइल हवे। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर हो। बनारस में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज कैल गेल हो। बलिया में गंगा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रही हो। कौशाम्बी जिला में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में हाई अलर्ट जारी कैल गेल हो। मौसम विभाग अगले 48 घंटा में प्रदेश में गरज और चमक के साथ बरखा का आगम जतौले हो। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज कैल जायी और लोगों के गर्मी से राहत मिली। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे जनसंख्या एवं खाद्यान्न वृद्धि का आनुपातिक अध्ययन एवं पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन तकनीक विषय पर डॉक्टर रुपेश सिंह से सतीश यादव की बातचीत, साथ ही साथ राम जन्म भारती का गाया लोकगीत भी सुनेंगे। शाम 7:31 से आप सुनेंगे महिला टी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में अमरूद का बाग लगाएं विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह, और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। छह बजकर 30 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, और 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में विषय होगा जन्मजात हृदय रोग, कारण और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रतिभा राय। और 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे पंडित रोनू मजुमदार और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन। दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी रश्मि चौधरी और लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगे देवतादीन सरोज। दिन 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए नए अवसर विषय पर महिला उद्यमी राखी जायसवाल से बातचीत, साथ ही साथ गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। रोज की तरह प्रातः 7:00 गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे और 8:45 पर मधुरिमा में मधुर मधुर गीत सुनेंगे। 10:00 झंकार कार्यक्रम और 11:00 आपके पत्र आपके गीत। 2:30 पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो कि भोजपुरी फिल्मी गानों पर आधारित होगा और आपके ही व्हाट्सएप संदेशों पर यह कार्यक्रम आधारित होगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ
4: 0542227658।

ये गीत आपने कयामत से कयामत तक फिल्म से सुना। आवाज थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का। अगला गीत हम आपको निर्जा फिल्म से सुनवा रहे हैं कविता सेठ की आवाज में। गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार विशाल खुराना।

0: निर्जा फिल्म से ये गीत आपने सुना। कविता सेठ की आवाज में गीतकार प्रसून जोशी, संगीतकार विशाल खुराना। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितम्। उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः। 78 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति, नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति। मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः। अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम्। नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68+700 सम्प्राप्ता। प्रायः 25% जनाः अद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायां अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30+2000 वर्षं यावत् $5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्।

0: यथि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियो येवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः। श्रीमोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरवार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेश मंत्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्ने हि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी संतोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत् मादक द्रव्य व्यसनम केवलम एकम जनम न ग्रसते, अपितु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादक विरोधी जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादक द्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री अवदत यत पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत यत महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46% महिलाः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहाँ आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।

0: श्रीमोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्रविश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति, याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट इत्यस्ति, येन अष्टोत्तरशतदेशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेषक्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री मुम्बईनगरस्थेन कृष्णशेषाद्रि इत्यमुना सह सम्भाषणम् अकरोत्, येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य 150वीं जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
1: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशन और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
0: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता, अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2,500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: पंचो राम राम।
1: और हो भोला भैया।
0: हाँ लाली बहन,
1: ई बतावा कि आजकल त दऊ एकदम रुकत नाई हुवन, बरसत जात हुवन त एकदम बरसते जात हुवन,
0: एकदम ताल तलैया बना देत हुवन कि
1: आ कहीं कहीं तो पनिए नाही बरसत ह। त ए घड़ी खेती किसानी का का हाल चाल ह?
0: देखा लाली बहिन, अपन जौन खेती किसानी हो ना, उ त ए घड़ी देखा एकदम सही चलत हो। और अपन जौन धान हो, ओहो देखा पानी और खाद देले के बाद ना हरिया गल। तू अपन बतावा।
1: हमार तो कुल ठीके हा, लेकिन देखा ना कबो कबो सोची ला ना तो कही ला कि जब कौनो भी किसान भैया रहेलन अगर कुछो करल चाहेलन, कबो कबो अपन सब फसल लेके जई है, चाहे अनाज लेके जई है, बाजारे में जई है, परेशान होके लौट आवेलन, बिकेला नाही, बाजार उनके ठीक से नाही मिलले, एकदम औजिया जाला उनकर तबीयत की कैसे एकर निस्तारण होई। हाँ तो वही में हमके एक दिमाग में बात आवेले कि ए घड़ी जौन सहकारी समिति बनत है, अगर सहकारी समिति से जुड़ के किसान भैया लोगन अगर काम करे तो उनकर ई मुश्किल आसान न हो जाए।
0: बिल्कुल आसान हो जी लाली बहन। देखा सहकारिता से गांव में जोन हो ना, वो रोजगार का अवसर बढ़ेला किसान लोगन के। जैसे आप बतौलू है कि अपन जोन सौदा लेके

0: ला किसान मेहनत करके, तो ये उम्मीद सजाला लाली बहन की जात हतो के 2 रुपया बढ़िया मिले,
1: बिल्कुल
0: और जब उस सौदा ना बिकी और लेके वापस आई तो कर दी मन तो औजी आई जाई। तो ये जो सहकारिता जोन हो दीदी, एके माध्यम से जोन हो ना अपने किसान भाई लोगन के रोजगार का अवसर भी मिलेला।
1: बिल्कुल। अब मान ला कि कई लोगन हवन एकजुट हो गईलन, जैसे बहनी लोगन में होला स्वयं
0: स्वयं
1: सहायता
0: सम
1: समूह,
0: सहायता समूह।
1: वही तरह से ए तरह से कई लोगन जुड़ के आपन किसान भैया लोगन एक सहकारी समिति बना ली हैं, ओकर रजिस्ट्रेशन करा ली हैं, ओकरे बाद ओकरे माध्यम से जब कहीं पर कुछ रोजगार शुरू करी हैं, अपने फसल के उत्पादन का योगदान दी हैं बाजारे में, तो उसे उनके फायदा भी हो और कौनो तरह का नुकसानी ना हो। एकरे साथे साथे जानत हुआ भोला भैया
0: हाँ लाली
1: कि
0: बहन,
1: ओमन आर्थिक सशक्तिकरण में भी लाभ मिलेला,
0: बिल्कुल।
1: अब वो बतावा तू कैसे।
0: आर्थिक सशक्तिकरण में ई हो लाली बहन कि देखा, जैसे पहले के समय में ई रहल कि किसान जब अगर ज्यादा मतलब पैसा के जरूरत होके पड़े तो वो जात रहना साहूकार के यहाँ। तो अब का हो कि वो सारा जो समस्या किसान भाई लोगन के आवत रहल वो सब हट गल, काहे कि सरकार के तरफ से अपने किसान भाई लोगन के ऋण भी देवल जाला, और जोन ये समूह बना के जो महिला लोग अपन एकत्रित करके पैसा इकट्ठा करके जोन समूह बनावे नी ओमेन भी सरकार मदद करेला।
1: एकरे साथे साथे जानत हुआ जौन तू रोजगार का बात कही, तो देखा रोजगार का बात करत हुआ तो खाली फसले में नाही, मछली पालन का जौन व्यवसाय होला, चाहे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है,
0: चाहे
1: अगर चाहे पशुपालन का व्यवसाय है,
0: हाँ बहन।
1: तो अगर वो शुरू करल चाहत हुवन किसान भैया लोगन, पशुपालक भैया लोगन, तो का करे के है, एकजुट बना हो के इकट्ठा कर लेवे के है 10 जानी 20 जानी 15 जानी जितना लोग इकट्ठा हो, ओकरे बाद अगर वो सहकारी समिति से जुड़ जाई हैं अपन खोल ली हैं, ओकरे बाद उमन देखा ना केहू के कौनो काम दे दिया जाए, केहू के कौनो काम दे दिया जाए,
0: बिल्कुल
1: मशीन भाई उमन तरह तरह का लगावे के हो, तो केहू के मशीन के चलावे का काम होई, हाँ केहू के
0: बिल्कुल।
1: मधुमक्खी का काम होई कि शहद कैसे निकाले के है, कच्चा माल लियावे के है, तो ए तरह से तरह तरह का काम सबके अलगिया अलगिया के सहेज दिया जाए,
0: बांट
1: जब
0: दिया जी।
1: सहेज दिया जाए बांट दिया जाए तो भाई ओ तरह से सबकर काम भी बढ़ जाए, काम बटी तो रोजगार बढ़ी।
0: बड़ी अच्छा देखा, एक साथे साथे एक फायदा और है लाली बहन
1: का
0: कि देखा, जैसे कि सबकर काम बढ़ जाए तो सबके दो दो पैसा का आमदनी बढ़ जाए, और जब अपने घरे आमदनी हो तो जो शहर के जो पलायन करन लोग अपन किसान भाई लोग उसे भी बचत हुई,
1: बिल्कुल
0: अपने गांव घर में अपन आमदनी कर सकन और अपन विकास भी कर सकन।
1: बिल्कुल। और एमन तो बहुत भैया लोगन, पशुपालक भैया लोगन, किसान भैया लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए कितना जगह तो देखी ला ना, मत्स्य पालन बदे अपने तैयार करके पोखरा पोखरी हाँ तालाब तैयार करके किसान भैया मछली पालत हुवन, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कैले हुवन, मुर्गी पालन का व्यवसाय कैले हुवन, बहुत पशुपालक भैया लोगन डेयरी खोल देले हुवन, हाँ डेयरी खोल देले उन भैया, दूध उत्पादन होता, दूध उत्पादन होता था, दुग्ध उत्पादन से बहुत तरह का जो है रोजगार मिला था भाई, केहू पनीर बनावा था, केहू मट्ठा बनावा
0: बनावत
1: था,
0: हो।
1: हाँ केहू भाई दूध बेचा था तरह तरह से पाश्चराइज करके, ओके तो देखा कितना काम एक दूध से कितना लोगन के काम मिल गए, कितना रोजगार मिल गए, और कितना वो चीज का विकास होता कि वो दूध का उत्पादन व्यर्थ न जाए।
0: बिल्कुल कितना सही बात कहलू है लाली बहन। देखा इतने ना सहकारिता के भावना से ना गांव के लोगन में एकता का भाव होला। हाँ जे मनई कभी एक दूसरे के देख के भागा ना, जब एक संस्था बनल तो एक परिवार के रूप हो जाला।
1: बिल्कुल। देखा ना ये तो भाई जब ग्रामीण विकास का बात हम लोगन करते कि सहकारिता के माध्यम से, तो एक एक गांव जब विकसित हुई तो अपन देश भी विकसित हुई, और
0: बिल्कुल
1: देश
0: बहन
1: विकसित हुई तो मजबूत हुई,
0: मजबूत
1: तो
0: हुई
1: देखा कुल तो एक के धागा में पिरोवल गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
1: सब लोगन एक तार से जुड़ल हुवन, तो ये चीज पर बढ़ावा दें बहनी भैया लोगन, जे भी पंच भैया लोगन अगर करत चाहत हुवन, कुछ रोजगार करल चाहत हुवन, सरकार से ऋण लेहल चाहत हुवन, अकेले उनके सकत नाही है कि कर लें, तो भाई कुछ लोगन के जोड़ के जुटा के ए तरह से लाभ ले सकेला।
0: बिल्कुल ई सहकारी योजना में ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे के चाहिए दीदी, और अपने आस पड़ोस के लोगन के भी जागरूक करे के चाहिए।
1: बिल्कुल जागरूक करे के बात कहो था तो हम लोगन के भी जागरूक होए के समय आए गए, हाँ भाई सनेस सनेस हाँ ना सुनवावे के।
0: बिल्कुल। तो ई संदेश हो के सुनवा देवल जाए।

0: पापा ये सब?
1: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
0: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
2: अरे ये कैसे रह गया?
0: पैसे गए?
2: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
3: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
4: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
5: संदेश तो हो गई भोला भैया।
8: हाँ बहन,
5: अब पंच लोगन के कुछ जानकारी का बात सुनवा दी हल जाए।
8: बिल्कुल।
5: कि ई जनसंख्या और खाद्यान्न वृद्धि का जौन अनुपातिक अध्ययन कइल गई है, माने कि जितना जनसंख्या है उतना खाद्यान्न हमन के हो कि ना, और अगर नहीं है तो पर्याप्त खाद्यान्न बदे उत्पादन बदे कौन कौन तकनीक है, यही विषय पर आज जानकारी का बात पंच भैया लोगन के सुनवावल जाये। डॉक्टर रूपेश सिंह से बतियौले हुआ सतीश कुमार यादव। तो पंच भैया लोगन ई जानकारी के बाद सुने अगुने।
9: आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं डॉक्टर रूपेश सिंह, आप कार्यरत हैं कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर में। आज आपसे हमने लोग जानल जाए कि जौन आपन ई जनसंख्या वृद्धि होता और ओकरी संगे संगे खाद्यान्न में भी वृद्धि होता, तो एकर अनुपातिक अध्ययन मतलब कि एकर हमनी का अनुपात कैसे सोच के समझ के चलल जा, और जोन आपन पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन का तकनीक है ओके भी कैसे हमनी का और बढ़िया से बढ़िया कर जा, ए विषय पे आपसे जानकारी लिहल जाए। सबसे पहले आपका हमनी के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब स्वागत है।
10: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
9: तो जैसन कि आज अपन विषय है डॉक्टर साहब कि जनसंख्या और खाद्यान्न वृद्धि का अनुपातिक अध्ययन का है, का ऐसे अपने देश के अपने किसान भाई लोगों के लाभ मिल सकेला, एक बारे में तनी भैया लोगों के बताएं।
10: बिल्कुल, देखिए जनसंख्या और इसका खाद्यान्न का आपस में जो नाता है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जनसंख्या को इस तरीके से देखिए कि जो प्रति व्यक्ति किसी विशेष स्थान पे किसी विशेष समाज का जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या में देखते हैं, और खाद्यान्न सुरक्षा या उत्पादन से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है खाद्य संगठन विश्व खाद्य संगठन उसके अनुसार कि जो खाद्य सुरक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को जो उसके शारीरिक और आर्थिक रूप से मिल सके उसे हम उसकी खाद्य सुरक्षा उस देश की खाद्य सुरक्षा के रूप में देखते हैं।
9: जी।
10: जब इसको हम अपने देश के बारे में परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारे देश की जो खाद्य उपलब्धता है खाद्य उत्पादन है वो भी बहुत तेज से खाद्यान्न का बढ़ा है। अगर इसे हम आंकड़े की दृष्टि से देखें तो जो 1950 के आसपास हमारा लगभग 50 लाख मिलियन टन होता था वो अब हमारा बढ़ करके 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 357 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। तो इसमें देखेंगे तो अमूल चूल लगभग 6% से अधिक की वृद्धि हमारे खाद्यान्न उत्पादन में हुई है।
9: तो डॉक्टर साहब जो आप ये खाद्यान्न के बात बताओ थे तो एक हमारे भैया लोग का समझा और ई कैसे एकर सोच के चलें या कैसे ये चीज के लेके चलें कि भाई हमनी के जनसंख्या के संगे संगे का वृद्धि करे के है और कितना वृद्धि करे के है, कहे से कि जैसे भी देखल जाओ तो जनसंख्या भी दिन पर दिन बढ़त है और खाद्यान्न भी अपन पैदावार तो अच्छा होते हैं लेकिन भाई जोन अपन जगह जमीन है वो ओकर एगो सीमित मात्रा है, तो ओकरी बदे लोग का सोचे और कौन कौन उन्नत तकनीक अपनावे।
10: बहुत अच्छा आपका विषय है। देखिए भूमि की उपलब्धता जो है वो जो 1980 के आसपास थी वो 1.7 हेक्टेयर प्रति किसान परिवार थी, लेकिन अब घट करके वो 0.7 हेक्टेयर प्रति किसान परिवार बची है। तो भूमि सीमित है, और यदि खाद्यान्न उत्पादन को देखें तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है उसकी वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है, जैसे एक के बाद दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, लेकिन जो हमारी जनसंख्या है इसकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में मतलब होती है। ज्यामिति का मतलब है कि दो के बाद तीन न आके सीधा 6 आ सकता, 8 आ सकता
9: जी।
10: तो जनसंख्या बहुत गतिशील और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके संदर्भ में जैसे अब हम देखेंगे तो पहले की जो हमारी खाद्यान्न की प्रमुख फसलें होती थी इसे हम अनाज के रूप में अगर देखते हैं तो हमारा प्रमुख जो फसलें हमारी हैं धान गेहूं
9: जी।
10: तो हमारी पहले की जो प्रजातियां थी उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो था वो काफी कम था, लेकिन वैज्ञानिकों के और बहुत सारे जो संस्थान कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उनके दिन प्रतिदिन होने वाले अनुसंधान से अब हम जैसे उदाहरण मानिए कि पहले हमारा जो मालविका होती थी प्रजाति गेहूं की उसका उत्पादन अधिकतम 20-22 क्विंटल प्रति

0: तैरता। लेकिन हमारी जो भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल है, उसके द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रजातियां, आपकी एक प्रजाति है करण बंदना उसको कहते हैं,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं डीबीडब्ल्यू 187 या डीबीडब्ल्यू 303 करण नरेंद्र प्रजाति है। इसकी
1: इकोनी फसल
0: क्षमता
1: में
0: गेहूं की,
1: जी।
0: ये इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 93 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। तो आप पहले की अपेक्षा की तुलना करेंगे तो हमारी प्रजातियां लगभग 5 गुना अधिक तक उत्पादन उसी भूमि में दे रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तकनीक है, एक बहुत अच्छा तरीका है किसान भाई, नवीनतम जो तकनीकी की और नवीनतम प्रजातियां हैं हमारे धान में गेहूं में, इसका उत्पादन करें।
1: डॉक्टर साहब, जिसन आप कहते हैं कि भाई नवीनतम तकनीक के लोग अपनावें, थोड़ा जो भाई पारंपरिक तरह से लोग चलत रहे हैं उसे थोड़ा नया में आए, लेकिन एक और चीज आपसे हम पूछब कि जिसे लोग नया में तो जाएं, तो उसमें उन्होंने कैसे भरोसा दीवा आप लोग दे थोखब, या कैसे लोग पिन भरोसा कर सके कि भाई अगर हम नया करत हैं तो हमके अच्छा ही मिली, ओकर हमके अच्छा ही लाभ हुई।
0: देखिए, जो हमारी प्रजातियां आती हैं वो बहुत सारे अलग अलग जलवायु में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग मिट्टी में उनका परीक्षण होके तभी किसान भाइयों के पास पहुंचती हैं। हमारे अलग अलग देश के जो भी कृषि के संस्थान हैं, अनुसंधान करते हैं, उनके द्वारा टेस्टेड होकर के तभी वो किसानों के बीच में जाती हैं। तो किसान भाई निश्चिंत होकर के उन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। इसमें एक दो समस्याएं और आती हैं, जैसे आप रेगुलर देखते रहेंगे, जैसे हमारी देश की एक जनसंख्या और इसका अनुपात का जो विषय है प्रजातियों का चयन, या कोई भी विषय, इसका एक और भी तरीका है आंकने का, कि आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर एक आंकड़ा माना जाता है किसी भी देश के लिए, कि यदि उस देश की कृषि विकास दर 4% के आसपास है और जनसंख्या की विकास दर 3 से 4% के आसपास ही है, तब वहां पे खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, हमेशा स्थिरता बनी रहेगी।
1: जी
0: तो इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हमारे देश के किसान भाई या उनकी मेहनत और तमाम सारे कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के परिश्रम का नतीजा है कि हमारे विगत 10 वर्षों की जो कृषि विकास दर रही है उसकी दर लगभग 4.45% और पिछले तिमाही की जो कृषि विकास दर है वो लगभग 4.50% की दर से लगातार हमारी कृषि विकास दर बढ़ रही है। तो जब भी इसका जो अनुपात है हम देखेंगे कृषि विकास दर 4.1 या 4.2 के ऊपर ही रहेगी, तब कभी खाद्यान्न की मतलब कमी किसी देश में उस अनुपात में नहीं हो सकती।
1: जो तकनीक का बात आवत है डॉक्टर साहब, कि लोग अपन भाई नया तकनीक अपनावत होंगे, लोग नया तकनीकी से करत होंगे, तो इनमें वो तकनीकी का कुछ फायदा हमारे किसान भाई उनके बताएं कि जिससे
0: जी
1: वो लोग एक तकनीक के अपना सकें।
0: बिल्कुल, देखिए आप जैसे हमारी धान की फसलें या गेहूं की फसलें हैं, हम आपको इन्हीं दोनों पे एक उदाहरण बताएंगे। जैसे पहले हमारी पारंपरिक पद्धति से किसान भाई धान करते थे तो उसमें पहले मिट्टी मतलब जुताई करके, गहरी जुताई करके नर्सरी डालते थे, नर्सरी के बाद नर्सरी उखाड़ के हम उसमें पलेवा लगा के खेत में तब सीधी मतलब रोपाई करते थे। उसकी अपेक्षाकृत अब हमारे पास बहुत सारे आधुनिक यंत्र आ गए हैं जिनसे हम पानी की भी बचत कर सकते हैं, 4 गुना 5 गुना तक पानी बचा सकते हैं। जैसे लकी ड्रिल है, सीड ड्रिल है या सुपर सीडर है, इन मशीनों से हम DSR विधि कहते हैं उसको, डायरेक्ट सीडर ड्राइव, सीधे धान की बुआई हमारे उसी खेत में जिसकी हमने जुताई की है अथवा नहीं की है, सीधे हम धान मतलब बो देते हैं बिना पानी के। उसके पश्चात हम पानी डालते हैं और उसमें हम कोई खरपतवार नाशी 3 दिन के अंदर अंदर डाल देते हैं। जब आप इसकी उपज देखेंगे, आप मैं बताऊं आपको कि जब आप देखेंगे तो जो हमारा मतलब नंबर ऑफ टिलरिंग उसको हम कहते हैं, जो कल्ले निकलते हैं वो अपेक्षाकृत रोपाई वाले धान से ज्यादा निकलते हैं। कल्लों की जो मोटाई होती है, व्यास देखेंगे आप, वो अपेक्षाकृत रोपाई वाले धान से ज्यादा होती है और उत्पादन भी आप देखेंगे तो लगभग लगभग 1.25 गुना तक हमारे उससे ज्यादा मिलता है। इसी तरीके जब हम गेहूं में बुआई करते हैं तो पहले हम छिटकवा विधि से बुआई करते
1: जी
0: थे, उससे हमारे किसान भाइयों का जो बीज दर है उसमें भी नुकसान होता था। जैसे वैज्ञानिकों की संस्तुति है कि 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज डालना चाहिए, लेकिन किसान भाई 20 किलोग्राम तक ज्यादा छोटे वाले बीघे में ले जाते थे, हेक्टेयर में 1.5 से 1.75 क्विंटल तक का चयन करते थे, वो बीज छिटकवा विधि से, उसमें बीज का नुकसान होता था। लेकिन उसी में जब हम सीधी बुआई लाइन सोविंग कहते हैं, लाइन के द्वारा जब हम बुआई करते हैं सुपर सीडर मशीन से, तब हम देखेंगे कि उस लाइन सोइंग मशीन से जो गेहूं के बीज की एक दूसरे में दूरी और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो सुपर सीडर मशीन के द्वारा एकदम निश्चित रहती है, 15x15 सेंटीमीटर और 30x30 सेंटीमीटर। और इसमें भी जब भी किसान भाई हमारे, हम लोगों ने बहुत से किसान भाइयों को करवाया भी है, वो किसान भाई जो पहले हिचकते थे सीधी बुआई सुपर सीडर मशीन का प्रयोग करने से, आज की मतलब स्थिति यह है कि सारे किसान भाई अब

0: मंगा मंगा करके, और वो सुपर सीडर मशीन से बुआई के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब मशीनीकरण का जो हम प्रयोग करते हैं, आधुनिक यंत्रों का खेती में प्रयोग करेंगे बढ़ चढ़ के, तब हम खाद्यान्न को निश्चित ही बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप तो कृषि विज्ञान केंद्र से बानी, लेकिन कुछ किसान भाई लोग का हम लोग देखे निजा या सुने में भी आवेला, जो आप सीडर विधि से कहते हैं कि बुआई खातिर, लेकिन कुछ लोगों के ई दुविधा भी रहेला, जो आप कहनी है कि वो में ज्यादा बीज लगत रहला छिटकवा विधि में, और इमें कम लगत है, या खाद का भी प्रयोग ऐसे बढ़िया तरीका से हो सकत है। तो हमारे किसान भाई लोग एक चीज के एगो दुविधा ई रहला कि हमार फसल में पैदावार कम हुई। पैदावार के बारे में बताएं कि पैदावार का उसे में बढ़त है कि उतने होत है, कि का स्थिति पैदावार का
0: जी बिल्कुल, मैंने आपको वही चीज मतलब किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ
1: है?
0: कि जब भी हम धान का या गेहूं की बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं, तब हम कभी लाइन मेंटेन नहीं करते हैं। लाइन मेंटेन का मतलब पंक्ति से पंक्ति और बीज से बीज या पौध से पौध की दूरी को बरकरार नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम मशीनों के द्वारा इसकी बुआई करते हैं, तो उनका डायमेंशन होता है, उनके निश्चित दर पे और निश्चित जगह पे बीज और खाद उस सुपर सीडर मशीन या लकी ड्रिल मशीन से गिरता है। ऐसे में क्या होता है कि जब किसान भाई हमारे अगर गेहूं की दृष्टि से देखें, तो जब जनवरी फरवरी में हमारी हवाएं चलती हैं, मौसम बदलता है, बहुत सारे किसान भाइयों का गेहूं गिर जाता है। इस वजह से क्योंकि उसमें हवा का दबाव पास नहीं हो पाता है, गिर जाता है। लेकिन जब हम लाइन सोविंग करते हैं, सीधी बुआई करते हैं सुपर सीडर मशीन से, तब तो आप देखेंगे कि इसमें हवा का दबाव बहुत कम बनता है और सारा गेहूं आपका बहुत न्यूनतम स्तर पे गिरता है। तो पहली समस्या आ जाती है कि जब फसल सुरक्षित रहेगी, तब आपका उत्पादन अच्छा होगा। दूसरा
1: बिल्कुल
0: व्यवस्था यह है कि जो हमारी पारंपरिक पद्धति छिटकवा विधि या रोपाई है, उसमें पौधे से पौधे की या रो से पंक्ति की बहुत नजदीक किसान भाई कर देते हैं। तो जो पौधे का मूल विकास होना चाहिए, उसके जड़ का, उसके कल्लों का, वो बहुत सघन होने की वजह से पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो जिस गेहूं में हमारे बाली में लगभग मान के चलिए 51 से 53 दाने बनने चाहिए एक गेहूं के बाल में, उसमें वो बाल भी कम हो जाती है और प्रति बाल गेहूं के दाने भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी उचित रहेगी, तो आपका उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा। तो सुपर सीडर मशीन या लकी ड्रिल मशीन के प्रयोग से ये उत्पादन 100% बढ़ना है।
1: सर, साग सब्जी के बारे में भी चलत चलत हमारे किसान भाइयों के बताएं कि उनमें ये लोग कैसे एक खाद्यान्न का कैसे पूर्ति करें, या इनमें कैसे लोग आगे बढ़ें।
0: बहुत आपका अच्छा सवाल है। खाद्यान्न की दृष्टि से भी अगर देखेंगे, तो विगत कुछ वर्षों में हमारे देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है 367 मिलियन टन पहुंच गया है, और उसमें लगभग लगभग 10 गुना की वृद्धि है। पिछले 10-20 साल पहले लगभग 47 से 122 मिलियन टन के आसपास होता था। इसमें भी बहुत सारी तकनीक है, जैसे आपको हम बताएं लो टनल नर्सरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं लो टनल नर्सरी उत्पादन तकनीक, इसका नाम है। पहले किसान भाई नर्सरी के लिए, या जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत अधिक ठंडी होती है, तो उतना सहनशील हमारे पौधे तापमान सहने के लिए नहीं होते हैं। उसमें पौध मर जाती थी, या पौध की जब रोपाई करते थे लगाते थे तब वो खत्म हो जाता था। हम लो टनल नर्सरी टेक्निक बहुत आसान और बहुत कम खर्चे में किसान भाई सरिया की सहायता से या लकड़ी के डंडे की सहायता से एक सुरंग नुमा स्थान बना लेते हैं, उसमें हम नर्सरी के अगर पैदावार करते हैं, तो हमारी नर्सरी से भी बहुत अच्छा, एक भी उसमें पौधा मरने की संभावना नहीं रहती है, और पूरी तरह से हम नर्सरी लगा सकते हैं। उसके पौध भी मजबूत होते हैं और वो रोपाई में भी अच्छा काम आते हैं। तो इस तरह से अगर हम नई नई टेक्निकों का प्रयोग करेंगे, हाईटेक नर्सरी प्रत्येक किसान भाई के अगल बगल जिलों में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद में एक हाईटेक नर्सरी स्थापित की गई है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी एक हाईटेक नर्सरी है। आप उस हाईटेक नर्सरी से मात्र 1 रुपए प्रति पौध, कोई भी सब्जी आप लेंगे तो आपको 1 रुपए प्रति पौध में उपलब्ध हो जाती है। आप अपने नजदीकी हाईटेक नर्सरी पे जाएं, वहां पे विपरीत परिस्थितियों में भी सारी सब्जियों के पौधे तैयार की जाती है, वहां पे इस तरह का वातावरण बनाया गया है, तो आप वहां से भी नर्सरी ले सकते हैं। तो इस तरह से भी हाईटेक नर्सरी का प्रयोग करिए, तो आपको अच्छे से भी सारे पौधों की नर्सरी मिल जाएगी।
1: माने एक प्रकार से अगर हमारे किसान भैया लोग ध्यान दें और एक प्रकार का जानकारी रख के और एक अनुपातिक कल समन्वय के बना के रखें, तो भाई जो अपन जनसंख्या वृद्धि है या कल अपने खेती में जो उत्पादन वृद्धि है, ओकर सामंजस्य हमनी के बैठा के चल सके नहीं जा। डॉक्टर रूपेश सिंह, आप हमने उनके कार्यक्रम में आईनी और इतना बढ़िया जानकारी देनी, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार आपका।
2: लाली बहन, देखा बात बत कही तो होगा, जनसंख्या एवं खाद्यान्न वृद्धि का अनुपात कैसे कैल जा और अपन उत्पादन कैसे बढ़ाओ जाए, इस विषय पर डॉक्टर रूपेश कुमार सिंह से सतीश कुमार भैया सतीश कुमार यादव भैया का बात

0: बतकई रहा और नगद के बतकई रहल, तब बात बतकई तो हो गई लाली बहिन।
1: हाँ हो
0: अब अपने पंचेती में आगे का सुनाओ तो।
1: देखा सुनवावे के कहा देखा पंच भैया लोगन भी जोहत हुई है। हाँ कि तनी गीत गवनई हो मनसायन हो उनकर भी अहमहू जोहत है हो मन देरी नाही करे के
0: कहना
1: हा।
0: मौसम भी वैसन हो।
1: हाँ तो हाली हाली सुनवा दीहल जाए पंच भैया लोगन के भी राम जनर जन्म भारती का ई गवन।

0: दिन भी हो, तो आज कजरी के दिन से पूर्व आज ये गाना सुन के मन एकदम देखा हरिया आ गेल हो।
1: देखा जलेबा घरे ले जाइया नहीं तब पियरा जाई मन है ना। देखा सब जगह
0: सही कर
1: जलेबा
0: ले हो।
1: बिका था ना, तब घरे
0: हाँ
1: ले जाइबा तो घरे तीन खुश हो जाइया, तब फिर हरियर का हरियर रहबा।
0: हाँ बिल्कुल
1: कहे
0: सही
1: का
0: कर।
1: मतलब इहे रहे। अब खेती के बात में काल बिहानी का सुनवावल जाई, अक्संझा के का कृषि जगत में हुई, ई पंच भैया लोगन के बता दीहल जाए।
0: तो प्रातः 6:05 पे खेती के हुई बात और मैंने देखा विषय रही अमरूद का बाग कैसे लगाएं। इस विषय पर जानकारी दें अपन दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: संझा के अपने पंचायती में कृषि जगत कार्यक्रम में संकर नस्ल के गाय में गर्भधारण का समस्या विषय पर डॉक्टर पवन कुमार यादव का बत कही पंच भैया लोगन सुनिए। जानकारी का बात रही, एकरे साथे साथे देखा घड़ियों की ओर देखबा कि नहीं।
0: काहे ना
1: हाँ,
0: देखब दीदी।
1: लेकिन देखा चले से पहले इहो बता दिहल जाए पंच भैया लोगन के कि बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में तरह तरह का जो गंदगी वाली समस्या हो जाए ले, गंदगी से बीमारी हो जाए ले, पानी के गंदगी से बीमारी हो ले, चाहे घर द्वारे में भी ना कितनों सफाई करा कीड़ा मकोड़ा आवेलन तो
0: आवे
1: उसे
0: ना।
1: गंदगी हो जाए ले, तो ए तरह का समस्या न हो पावे एकरे बदे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे के है।
0: बिल्कुल देवे के चाही। देखा काहे कि गंदगी से दीदी तरह तरह का कीड़ा कीटा कीट पतंगा और ओकरे साथे साथे ना दीदी अपन जोन देखा ई मौसम है ना मच्छर उच्छर के पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाला है ना। तो
1: अजानत हुआ
0: हाँ
1: मच्छर के पैदावार बढ़ जाता, तो वही से कहा थे कि साफ सफाई का बात करे के है, लेकिन मन ना कहा था कि एक ठे और गीत सुन लिहल जाए।
0: कहे नहीं।
1: हाँ, तो एक ठे और गीत पंच भैया लोगन के सुनवावल जाई, तब से ई बतावा कि साफ सफाई बदे का तू करत हुआ आजकल।
0: हम तो साफ सफाई बदे देखा लाली बहन ना अपने घरेतीन से बोल देले है कि देखा घर में छोटा छोटा गदेला हुआ तो ये घर ये समय ना देखा जब बारिश का मौसम होला और पानी जगह जगह इकट्ठा होला लाली बहन तो मैंने देखा मच्छर का पैदावार बहुत बढ़ जाला और उहो एक गंदगी का रूपे हो और ऐसे का होला कि अपने काट ली तो तरह तरह की बीमारी भी हुई। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन घर के लोग ये ना कहत है कि घर ऐतिने करें हमहू लोग उनकर हाथ बटा सकल जाला तो साथे और कहीं भी पानी लगे ओके फेंक दें हटा दें।
1: बिल्कुल। आ एकरे साथे साथे अगर दलानी में सुतत हुए, चाहे बरामदा में सुतत हुए, तो मच्छरदानी का तो प्रयोग कर ही के चाहिए
0: बिल्कुल करे के
1: भाई।
0: चाहिए।
1: मच्छर काट लेते ना तो डेंगू मलेरिया न जाने कितना तरह का रोग बीमारी हो
0: और
1: जाता।
0: देखा जब पानी होला तो ये समय देखा पानी भर जाला जितना जन जानवर हुआ उनके बिली में पानी चल जाला तो वो सब निकल के बाहरे भागे ना। तो अगर आप कहीं जात हुआ या घरे में हुआ अन्हार हो तो टार्च का इस्तेमाल करा हाँ और ठोक ठका के डंडा ले ले रहा ठोक ठका के चला आवाज़ दे के चला है ना ताकि कोनो अगर जन जानवर हो तो अपन हट बढ़ जाए है ना।
1: आ एकरे साथे साथे जानत हुआ भोला भैया, जब सफाई के बात करत हुआ अपने ना, तो जहाँ पर गोरु चौवा हुआ वहूं पर विशेष रूप से साफ सफाई का जरूरत है।
0: बिल्कुल भाई
1: अपने मच्छर काटा था तो का उन्हनी के ना काटी।
0: बिल्कुल भाई वो तो अपने घर का सदस्य हो ना हो
1: हाँ, तो तनी से अगर नीमी का पतई है तो ओके
0: ओके
1: सुलगा दे,
0: सुलगा दा
1: धुमा कह दे कि भाई उ लोगन भी सुरक्षित रहे, उ बिन
0: सुरक्षित रहे
1: बोलता जी होवन केहू से कुछो कह तो पहिए ना।
0: और ओकरे साथे साथे देखा टीन टप्पड़ छा दा ताकि कहीं से उनके पानी के बौछार ना भीगे ना। अगर भीगे तो वह बीमार हुई हैं और जब बीमार हुई हैं तो तुम्हार काम बढ़ी।
1: बिल्कुल। तो ऐसन कुछो नहीं करे के है और ध्यान देवे के है कि साफ सफाई जितना रहे उतना बीमारी परेशानी से बचल रही है, चाहे वो घरे का परानी हो और चाहे गोरु चौवा हो। हाँ, तो देखा अब कहत रही है ना कि चले का तो बेला होत रहा, लेकिन कुछ समय और अगर इतना दिन पर भेंट मुलाकात भइल है तो एक ठे और गीत गुनाई हो जाए तो कितना निक रही हो।
0: एकदम मन एकदम हरियर हो जी बहन।
1: तो पंच भैया लोगन के एक ठे नीके का और गीत सुनवा दी हल जाए।
0: सुनवा दा।

0: मौसम के हिसाब का एकदम कजरी रहल है राम जन्म भारती का, कितना निक लगत रहल है ना भूला
1: भी। काहे नहीं हो लाली बहिन, रिमझिम रसे रसे। आ देखा हो लाली बहिन, कल देखा कजरी का।

0: लाली बहिन,
1: हाँ हो
0: तो हूँ देखा मौसम के देख के ना मल्लू ना हा, और तोहरो जीरा उमड़त रहल है कि कजरी गीते खियाउर हो जाए, आखिर में सुनवाही देलू हा।
1: ये देखा भोला भैया, जब तोसे कहली न जलेबा का बात, तो वही समय ख्याल आए कि भाई काल तो हो कजरी तीज।
0: कजरी है,
1: हाँ
0: सही बात है।
1: अब हाँ तो रतिया भरमन खाली जलेबे थोड़ी खाई,
0: हाँ
1: मीठ मीठ खाए जब तो मीठ मीठ गईबो करब। हाँ
0: बिल्कुल।
1: तो बहनी लोगन के भाई पंच भैया लोगन के बात हो गई रहला, तो बहनी लोगन का भी मन रखल बहुत जरूरी रहल।
0: बिल्कुल। और देखा ये कजरी जो महोत्सव हो ना, ये देखा पहले समय से एकर जोन महातिन हो ना, कि चार जगह लोग जुटें, अब जो भी पोखरा रहे या कुआं रहे वहां बैठ के देखा, यही तरीके का गीत संगीत समूह में हो का बहन।
1: और का और जाना तो हुआ यही से रतिया में जो रत जग्गा कहल जाने, माने रात भर जाग के जो ना भगवान का ध्यान रख करे के है, कियाल करे के है, कजरी गावे के है, भजन गावे के है, तो ए तरह से रतिया भी बीत जाए। और ई जो उनको बनावल गई है रीति रिवाज परंपरा ना, कि सब केहू एकजुट हो, शुरुआते में हम लोगन सहकारिता का बात कैली है, मिलजुल के रहे का बात कैली है,
0: बिल्कुल
1: मिलजुल का काम करे का बात कैली है,
0: बिल्कुल।
1: तो जो सुख होला ना और दुख होला इहो कुल के मिलजुल के निपटावल जाला, तब्बे जिंदगी कटेला।
0: हाँ, उससे का होला ना लाली बहिन, कि कोनो भी समस्या होला ना, ओकर निवारण हो जाला, और बहुत

0: ओकर रूप जो होला वो बहुत छोटा हो जाला, और वो कब आवला कब दुख चल जाला पता ना चलत।
1: बिल्कुल। और जब तू समस्या का बात कहला ना, तो आजकल तो देखा देखत ही ना, रास्ता डहरी जब चलत हवन, लड़का चलत हवन गाड़ी लेके चलत हवन, चाहे मनई चलत हवन, तो ऊ अगर तनी सा ध्यान ना देत हवन, तो उनके तनिकी से लापरवाही से बड़ी से बड़ा दुर्घटना हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल सही कहलो बहिन। देखा ये देखा जो अपन दौड़ चलत हो, ये देखा आधुनिक युग है ना, और एमएन सड़कन पे गाड़ियन का संख्या बहुत बढ़ गए लो।
1: बिल्कुल।
0: और जब संख्या बड़ी गाड़ी का तो दुर्घटना का भी संभावना ज्यादा हुई,
1: लेकिन
0: है ना।
1: अपन लापरवाही न करे के चाहिए, यातायात का कुछ नियम बनावल गई है ना,
0: बिल्कुल बनावल गए,
1: ओकर पालन करे ही के चाहिए मने।
0: हाँ पालन के साथे साथे रोड पे सुचारू रूप से नियम के साथ कायदे से चले के चाहिए। देखत हो लाली बहिन कि आजकल जो अपन एक मोबाइल हो, गाड़ी लोग चलावत हूँ अपन पटपटैया, और फोन आ गया तो इन है कि किनारे रोक के बतिया ली, गर्दन टेढ़ा कैले हुअन और बतियात बतियात अपन चलत चल जात हूँ। इहो ना सोचत हुअन कि आगे चल के कोई दुर्घटना हो सकला, और घरे पे उनकर लोग कितना इंतजार करत हो। तो हम तो इहे कहो लाली बहिन कि अगर कोनो जरूरी फोन आए तो रोड के किनारे गाड़ी लगा के यातायात नियम का पालन के तहत अपन फोन उठावे, नहीं तो बहुत जरूरी हो तभी बतियावे, नहीं तो घरे जाके बात करें।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ भोला भैया। और सबसे जरूरी तो ई है कि जौन हेलमेटवा होला भाई, दूसर खोपड़ी कहल जाला, जौन अपने खोपड़ी के सुरक्षित रखेला, तो ऊ जरूर ओकर इस्तेमाल करें। अब तो इहो नियम है ना कि जे गाड़ी चलावा था उहो पहिरे, अजे पीछे बैठल है उहो पहिरे, तो
0: कहने
1: हेलमेट का प्रयोग जरूर करे के चाहिए। और जौन भैया लोगन चार पहिया वाहन से चलत हुवन, उनके सीट बेल्ट होला ना, ओके बांधल बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और जानत हो लाली बहिन इतने ना देखा यातायात नियम का पालन अगर करबू ना तो इससे समय का भी बचत हुई। कहे कि अगर तू समय अपने नियम से चलबा, समय से चलबा, तरीका से चलबा, तो ट्रैफिक जाम न लगी, और जब
1: बिल्कुल।
0: ट्रैफिक जाम न लगी तो तेरे समय का बचत हुई।
1: अब तो जानत हुआ ना, जगह जगह चौराहा पे तीन रंग का बत्ती जलत हो, माने हरियर का जरत है, पियर का जरत है, और ललका
0: ललका
1: जरत
0: जलत
1: है,
0: हो।
1: आ तीनों को का आपन मतलब है। हाँ, तो
0: कहे ना।
1: तीनों का मतलब है ना, जब ललका जर जाता तो सब केहू खड़ा हो जाता कि नहीं अब हमके आगे नहीं बढ़े के।
0: हाँ ओकर ओकर वही मतलब उद्देश्य है, ओकर संदेश है लाली बहिन कि अगर ललका जल गया तो अब कितनो तू तेज हुआ, तुहें जरूरी काम अब तू रुका, है
1: रुका।
0: ना।
1: हाँ
0: और पीला का ई संदेश हो कि अब तैयारी बना ला,
1: बिल्कुल।
0: जैसे हरा सिग्नल हुई तो अपन अपने स्थान पे जहाँ जाए चाहत हुआ अपन चला।
1: आ यही तरह से जौन पियरका जरत है ना, तो पियरका बदे तो ई है कि मनई तनी रुक जाए, वो हो जाए कि अब चले का बेरा होत है ना, अब हम लोगन तैयारी कर ले। एकरे साथे साथे जौन तू कहला है ना सावधानी का, मोबाइल फोन का बात कैला है, तो बहुत भैया लोगन बहनी लोगन जे भी है गाड़ी चलावत है, उनकी इहो ध्यान रखे के चाहिए कि कौनो तरह का मद्यपान कै के गाड़ी न चला, ये बहुत असुरक्षित है, इमन बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाली भाई। हम तो कैले ही तो हमें नहीं पता चली, हमार नुकसान हुई, लेकिन जे नहीं कैले ओहो हमरे संगे संगे जाए।
0: देखा लाली बहन एक चीज़ और, मोबाइल का तो हम बता दिली है। देखा कुछ ऐसा में नहीं होना कि देखा नशे में गाड़ी चला होला और उससे का होला कि एक्सीडेंट हो जाला, दुर्घटना हो जाला, तो इसे भी बचे के चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: नशा करके नशा में हो के गाड़ी के ना चलाएं, और अपने साथे साथे अपने घर जे इंतजार करत बा ओकरे बारे में भी सोचें।
1: बिल्कुल। और जहां पर रेलवे फाटक है वहां तो बहुत मनई लोगन के देखी ला कि अरे ट्रेन आवत है तबले हम पार कर लेंगे।
0: हाँ जैसे उनके लगला कि सबसे जल्दी उन्हीं के बाद जाए के
1: उन्हीं
0: घरे
1: के
0: के,
1: पा
0: हाँ।
1: मानी टेढ़ होके एहर से ओहर से केहू तरह से अपन गाड़ी घुसाए के निकाल के सोची है कि सबसे जल्दी हम
0: जल्दी
1: पहुंच
0: हो
1: जाए,
0: जाए, जो कि
1: लेकिन कितना बड़ा लापरवाही
0: बहुत
1: है।
0: बड़ी लापरवाही है। वहीं में देखा लाली बहन दुर्घटना भी घट जाला, है ना। अगर रेल फाटक यही लिए बनल हो, वो अपने लिए ना, वो हमन के सुरक्षा बदे बनल हो,
1: बिल्कुल।
0: ताकि अगर रेल फाटक बंद हो तो ओकर नियम का पालन करा, जब ट्रेन चल जाए तब तू अपन जब फाटक खुले तो अपने धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा, या जहां जात हुआ वहां जा।
1: बिल्कुल। आ एकरे साथे साथे एक और बात, जब हमन यातायात का बात करत थे, तो एक थे गाड़ी पर एक दिनवा देखली ना कि एक मनई जात रहे, माने आगे टंकी पे दू ठे गदेला बैठौले रहे, हाँ, आ पीछे दू जानी के बैठौले रहे, घरे के घरे तीन रहले ना, चाहे बहिन रहल हो या जे भी रहल हो। ये भैया हम देखत ही तो हम सोचत है कि

0: इतना साहस करके जात हुआ ना, वहीं अगर लदते गिर जाइया चाहे कोनो दुर्घटना हो जाए तो अपने संगे संगे केतना लोगन का जान जोखिम में डालत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब ऐसा ना करे के चाहिए लोगन के हो लाली बहन। है देखा गाड़ी के जोन रूप बनल हो कि अगर आप बैठल हुआ एक सवारी पीछे बैठल हो तो एक गदेली गदेला के बैठल अभी ना, क्योंकि सवारी गाड़ी बना दा है ना।
0: भाई ई कुल नियम है, एकर पालन करे के है। आ ई गाड़ी चलावे वाले का नियम रहला, लेकिन जे पैदल जात है उहो के देखे के है। अब तो देखा जहाँ चौड़ी सड़क है वहाँ पर पैदल चले वालन के लिए भी रास्ता बनल है
1: हाँ
0: किनारे।
1: फुटपाथ कहल जाला ओके, ताकि आप किनारे से अपन जा सका, अगर जाम भी लगल हो तो पैदल वाले अपन किनारे किनारे निकल जाए है ना बहन।
0: बोला भैया देखा सब कोई सरकार तो हर तरह से नियम कानून योजना बनौले है, लेकिन अगर हमन जागरूक नहीं है, हमन ए तरह से शिक्षित नहीं है, सोचत नहीं है ओ बारे में, तो कोनो भी तरीका फायदा न करी।
1: हाँ अगर हमन नियम से चलल जाई तो देखा एक जिम्मेदार नागरिक का अपन भूमिका भी हमन निभावल जाई।
0: तो ई चीज के सोचे के होई, आ जब नियम कानून का बात करत है ना हमन,
1: हाँ बहन
0: तो पंचायती में हम आइली है भैया बहनी लोगन से बतियोली है। भाई पंचायती में खाली पंच भैया लोगन नहीं सुनत हुवन, बहनी लोगन भी कार्यक्रम के सुनत हैं,
1: सुनत
0: जैसे
1: हैं
0: हम लोगन प्रसारित करत है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बहन।
0: उहो लोगन सुनत हैं, पंच भैया लोगन भी सुनत हुवन, तो जैसे हम लोगन समय से आइली है, उन लोगन कितना जानकारी का बात सुनवौली, मन मनसायन उनकर कैली, तो चले का बेरा होता तो घरे पर भी केहू इंतजार करत है, चले की भी तो चाहिए समय
1: बिल्कुल
0: से।
1: चलल जाए तो पंच लोगन से इजाजत लेवल जाए तो पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार भरत प्रसाद सिंह पुत्र गौरी शंकर सिंह निवासी चक दाऊद नगर नैनी प्रयागराज बीएचयू गेट के पास लंका वाराणसी से दिनांक 23 मई 2026 को करीब सुबह 10 बजे से गायब हो गए हैं। इनकी उम्र है 70 वर्ष, ऊंचाई लंबाई 5 फुट 10 इंच और बोलचाल की भाषा सामान्य है। गोल चेहरा रंग गेहुआ और हिंदी ये बोलते हैं। सिर के ऊपर सफ़ेद निशान का दाग है और घटना के समय इन्होंने लाल रंग का कुर्ता सफ़ेद रंग का पैजामा पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना लंका वाराणसी से सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से ये सूचना प्राप्त हुई है। इसके अनुसार शाहिद जमाल पुत्र आसिफ जमाल निवासी कमालपुरा बड़ी बाजार जैतपुरा वाराणसी 8 अप्रैल 2025 से सुबह 25 को सुबह 8 बजे से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 24 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, इकहरा बदन रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, आंखें सामान्य, बाल सामान्य। घटना के समय इन्होंने चेकदार सफ़ेद और काला शर्ट और भूरे रंग की लोअर पहन रखी थी और ये सुबह 8 बजे घर से निकले थे, लेकिन देर

शाम तक घर वापस नहीं आए। इसके बाद काफी खोजबीन के बाद भी इनका पता नहीं चला। अगर किसी भी व्यक्ति को इनके विषय में कोई भी पता चले तो आप नजदीकी थाना या सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित। कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी

0: में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से शुरू हुए मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुँच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: क्लीनअप पटवाई अभियान की मुहिम चलाने वाले आकाश यादव और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और अपनी मुहिम की जानकारी देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है।
2: जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर जाकर साफ सफाई का कार्य हम अपनी टीम के साथ करते हैं। उद्देश्य जो है वो लोगों की मानसिकता बदलना, लोगों को जागरूक करना कि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है या हम अपना कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवल करते हैं तो जो भी चीज हमारे प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको हम डस्टबिन में ही डालें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की नई यात्रा तय की है। आज राजधानी लखनऊ ने पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है।
3: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और उसे प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री।

0: ने आज लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महान विभूतियों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नए युग की महिलाएं हैं, सरकार उन्हें अवसर और सुरक्षा प्रदान कर रही है। लखनऊ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास, हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, और आज देश अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देख रहा है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसका लाभ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में जाति, धर्म और मतभेद को भुलाकर एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मथुरा में 38वीं क्षेत्रीय हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज हॉकी के अंडर 14 बालक वर्ग में नोएडा और पूरनपुर पीलीभीत की टीमों के बीच हुए मुकाबले में नोएडा ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं फुटबॉल में अंडर 14 बालक वर्ग में मथुरा और नोएडा की टीमों के बीच हुए मैच में मथुरा ने 4-0 से जीत दर्ज की। 4 दिवसीय यह प्रतियोगिता 1 सितम्बर तक चलेगी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वर्णा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आपकी चाय
3: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है,
3: अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
7: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
8: मीडियम वेव 241.5।

अपनी जान की बाजी लगाते हुए बेखौफ आगे बढ़ते रहे, कम से कम भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचे, ये कश्मकश भी थी और चुनौतियां भी। इसके साथ ही अग्रिम चौकी को भी महफूज रखने का जिम्मा, कुछ ऐसा बंदोबस्त, कुछ ऐसा चक्रव्यूह कि दुश्मन इस घेराबंदी से निकल ही ना पाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ दुश्मनों पर निशाना साधते गए सिपाही कांशीराम और कई दुश्मन सैनिकों को मौत की घाट उतारा। इस जंग में कुछ भारतीय सैनिकों का साथ छूटा, जिन्होंने मौत को गले लगाया लेकिन दुश्मन को पीठ न दिखाई। कांशीराम अपनी चौकी के रास्ते को प्रभावी ढंग से कवर करते हुए, शत्रुओं को आगे बढ़कर निशाना बनाते हुए कभी जख्म सीने पर खाते रहे तो कभी शत्रुओं पर भारी पड़ जाते। दुश्मन आगे बढ़ता तो लेकिन उनकी पैनी निगाह पड़ जाती, उसे वहीं ढेर कर बड़ी फुर्ती और चतुराई से अगले मोर्चे पर डट जाते। शत्रु ने इस बीच सिपाही कांशीराम भी बुरी तरह जख्मी हुए। इस तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई से दुश्मन बौखला गया और जंग के मोर्चे पर अपने पैर उखड़ते देख शत्रु सैनिकों ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा और इस चौकी से भाग खड़ा हुआ।

सिपाही कांशीराम के कंपनी कमांडर ने जब उन्हें बेहद घायल अवस्था में देखा तो उन्हें मोर्चे से हटने और उपचार के लिए सेना के कैंप वापस जाने की सलाह दी। चोटें गंभीर थीं, खून का रिसाव लगातार हो रहा था, लेकिन कांशीराम मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उन्होंने अपने घावों पर कस के पट्टी बांधी और अगले ही पल मोर्चे पर डट गए। उन्हें यकीन था कि शत्रु दबे पांव फिर से हमला किसी भी वक्त कर सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। अंदेशा बिल्कुल सही निकला। दुश्मन की एक और लहर ने चौकी पर हमला किया। और ये हमला इस बार पहले के मुकाबले कहीं तीव्र था। एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स से हमले हुए और दूसरी तरफ पत्थरों और धारदार हथियारों से भी हमारे फौजी साथियों पर हमले होते रहे। कई भारतीय सैनिक घायल हुए और कईयों ने वतन की आन में अपनी जान निसार कर दी। सिपाही कांशीराम हथगोले फेंकते हुए, शत्रुओं में भगदड़ मचाते हुए, रास्ता खाली करते हुए उन्होंने कईयों को अपना निशाना बनाया। कुछ की स्वचालित राइफल को अपने कब्जे में लेते हुए उन पर ही हमला करते हुए 30 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को उनके ही हथियारों से निशाना बनाया। लेकिन

लेकिन भारी तादाद में हर तरफ से होते हमले और इधर सिपाही कांशीराम की जवाबी कार्रवाई में हलाक होते दुश्मन सैनिकों के बीच मची भगदड़ में भारतीय जवानों के साथ इस हमले को कांशीराम संभालते रहे और पीछे न हटे। बुरी तरह घायल होने के बाद भी दुश्मनों से टक्कर लेते रहे। इस बीच शत्रु सैनिकों का एक कमांडर आगे का रुख करते हुए पत्थरों के पीछे से आड़ लेता हुआ चिल्लाया, हथियार डालो, आत्मसमर्पण करो। सिपाही कांशीराम मौके की नजाकत को समझ रहे थे कि मरना या मारना, इसके बीच का रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। वो तेजी से खाई से बाहर की तरफ निकले और उनके कमांडर की तरफ एक शेर की मानिंद झपटे, उसे आंखों में आंख डालकर पटखनी दी, अपनी संगीन से घायल करते हुए अपने शत्रु को चेतावनी दी कि हिंदुस्तानी सिपाही कभी हथियार नहीं डालता, आखिरी सांस तक आत्मसमर्पण नहीं करता और घायल अवस्था में भी सिपाही कांशीराम पीछे न हटे। मैदान जंग में शत्रुओं के दांत खट्टे किए, गजब का आत्मविश्वास जिसने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए।

साथियों, ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिसमें कई मोर्चों पर दुश्मनों ने शिकस्त खाई। उनकी फौज की तादाद भले ही ज्यादा थी, असलाहे भले ही आधुनिक थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला उनके पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। जख्म सीने पर खाए, लेकिन शत्रु को पीठ न दिखाई। उनकी हर तरकीब का मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मनों की जानिब उठे कदम को पीछे न हटने दिया। छल बल, हथियारों और दुश्मन के टिड्डी दल की तरह बढ़ते सैनिक भारतीय जांबाज सिपाहियों के हौसले के आगे कुछ भी नहीं थे। इस असाधारण जंग में सिपाही कांशीराम ने सिद्ध कर दिया कि हम एक बार फिर इस असाधारण जंग में सिपाही कांशीराम ने ये सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय सिपाही 100 दुश्मनों पर भी भारी है। और तस्वीर कुछ ऐसी रही, फिर दुश्मनों को इस पोस्ट से पीछे हटना ही पड़ा। हम सिपाही कांशीराम को एक बार फिर से सलाम करते हैं।

साथियों, 10 अक्टूबर सन 1962 को नेफा के सेंगजोंग की चौकी पर भारी तादाद में दुश्मन सैनिकों के हमले का बहादुरी से सामना करने, इस चौकी को महफूज रखने, यहां से शत्रुओं को पीछे खदेड़ने, दुश्मन की सभी चालों को शिकस्त देने, अदम्य साहस, गजब का सैन्य संचालन, कर्तव्य परायणता, अद्वितीय रणकौशल और वीर

सुरक्षा के लिए पंजाब रेजिमेंट के कर्मवीर सिपाही कांशीराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी भारतीय सेना के शेरदिल जवान सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सबसे पहले सुनते हैं छोटी सी बात के इस गीत की धुन को। माउथ ऑर्गन पर हैं मिलन गुप्ता।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म छोटी सी बात से, आवाजें यशुदास और आशा भोसले की, गीत के बोल योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

हवा महल में आज हास्य नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका उलाहना।

0: हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, और छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को।
1: अरे किसने तुमको दर दर भटकाया? किस कमबख्त ने साथ छोड़ दिया? मैं भी तो सुनूं। अरे वो कौन करम जली है? हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए।
2: अरे करम तुम्हारे नहीं रंजना मैडम, करम तो मेरे फूटे हैं। तुम जैसी
1: चुड़ैल पाकर। अरे जब मुफ्त में दूध उड़ाने को मिल रहा है तो खूंटे पर गाय क्यों बांध
2: रही? अरे गाय, वो भी मरखनी, आगे से सींगे मारे
1: और पीछे से दुलकती झाड़े, क्यों है ना?
2: ओहो तुम तो यार झाड़ू लेकर पीछे पड़ गई। अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था। अब तुम जैसी सीधी सरल सरपट सरसराती
1: थोड़ी ना मिली होती।
2: ओहो सुना नहीं, खूबसूरत गाय मुझको ना मिली होती तो भला ये इतने खूबसूरत बछड़े कहाँ से आते?
3: पापा गाय के बजाय आप भैंस क्यों नहीं लाए? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है।
1: क्या कहा? वो मीठू तेरे कान, ये ले, ये ले, ये मुझको मुझको भैंस कहता है।
3: मेरा कान छोड़िए, मैं तो पापा की बात कह रहा हूँ, वही तो आपको गाय बना रहे थे।
1: हाँ हाँ, तुम बाप बेटे मुझको गाय बनाओ भैंस बनाओ
3: और चाहे

0: वंडरफुल वंडरफुल।
1: बस आपकी इन्हीं बातों से लड़के बिगड़ रहे हैं, ये सब आपकी शेफ आकर शेयर हो रहे हैं। अभी परसों ही रीना की माँ बबलू की और इंजीनियर साहब की बीवी बंटी की शिकायत लेकर आई थी।
0: अरे भाई क्या शिकायत लेकर आई थी, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: शिकायत क्या, बंटी ने रीना का बछड़ा खूंटे से खोल दिया और वो सारा दूध पी गया।
0: देखो रीना, अब फिर तुम्हारी तरफ से गाय का नाम आया है।
2: तो पापा अब मैं भैंस का नाम लूं?
1: अभी बताती हूँ तुझको, अभी बताती हूँ, तेरी जबान हाथ भर की हो रही है।
2: पापा क्या किसी की जबान हाथ भर की भी होती है?
1: चल भाग यहाँ से।

0: अरे किसने मारा तुमको सोमू?
1: अंकल बंटी ने मारा।
0: क्यों, क्या बात हो गई थी?
1: बंटी ने मेरी मम्मी को बंदरिया कहा था।
2: पापा पापा ये झूठ बोल रहा है।
1: अच्छा,
2: ये कह रहा था कि ये जो बंदरिया नाच रही है ना, ये मेरी मम्मी है।
0: अरे
1: अच्छा, मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था।
2: चल जा झूठे कहीं के,
1: तुम झूठ बोल रहे हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपस में लड़ते नहीं है, बुरी बात है, जाओ बेटा जाओ। हाँ।

0: कोयल साहे रंग तुम्हारा गर्दन जो मजनू कचकारा तुझे देखकर ए बेडंगी ऐसा लगता है। अरे मैं तुमको थोड़े ही कह रहा था, मैं तो
1: हाँ हाँ दीवारों को कह रहा था, तुम्हारी इन्हीं बातों को सीखकर लड़के बिगड़ रहे हैं।
0: चलो भाई ठीक है, हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं, तुम कुछ ऐसी वजह पैदा करो जिससे लड़के सुधर सके।

0: हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो?
1: पापा, बंटी ने मुझे बिजली की तार से मारा।
0: क्यों बंटी, ये दिन भर लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो?
2: बड़े पापा बनकर आए हैं अपने बेटे का पक्ष लेने। जैसे सोमू बड़ा सीधा है, बेचारा कुछ नहीं जानता। पहले अपने लड़के को समझाइए, फिर मुझे कहिएगा।
0: खामोश, जरा सा है, इतनी सपासप जवान चलती है जैसे कतरनी।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए।
0: अच्छा देखो, मैं तुझे बताता हूँ, कान उखाड़ कर मेट कर रख देता हूँ हाथ में।

0: अरे क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहा है, क्या बात हुई?
1: मुझको सोमू के पापा ने चार चार चाटे मारे, मुझको मारे।
0: क्या? लेकिन बेटा बात क्या हुई? अच्छा ठहरो, मैं अभी चलता हूँ। अरे शर्म नहीं आती इतनी छोटे बच्चे को मारते हुए? अरे उलझना है तो किसी बराबर वाले से उलझे, तब समझ में आए। दो मिनट में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। छोटे बच्चे को मारना कौन सी बहादुरी काम है? दिन में सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। आओ चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ।
2: हाँ हाँ अब तो देखोगे ही, अपने लाडले को कुछ कहोगे नहीं, उसको उल्टी सीधी बातें सिखाकर शेर बनाओगे, और अब चले हो मोहल्ले में दूसरों से उलझने।
0: देखो रंजना, तुम हर बात पे अपनी टांग मत फसाया करो, हर वक्त कबाब में हड्डी मत बना करो, हर चीज में अपनी श्रीमुख को मत घुसेड़ा करो।
2: अरे मेरी समझ में नहीं आता कैसे पिता हो तुम।
0: खैर तुम अपना काम करो, मैं तुमसे इस समय बहस नहीं करना चाहता।

0: कौन है?
1: मैं हूं जनाब। मिस्टर, आपका ही नाम राजन है?
0: आइए आइए, कहिए क्या बात है। मेरा ही नाम राजन है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
1: ये नाम तो मेरे ससुर का भी है।
0: और हुजूर आपकी तारीफ।
1: अजी, मुझको अशोक कहते हैं।
0: ये नाम तो मेरे साले का है।
1: अच्छा, तो आप मुझको अपना साला बना रहे हैं?
0: और आप मुझे अपना ससुर बना रहे हैं?
1: जी हाँ, हर बात की पहल तो हमारी तरफ से होती है। हर चीज की पहल मैं और मेरा लड़का ही करता है। बस दुनिया में यदि कोई नया प्राणी है तो वो है आप और आपका लाडला।
0: आइए आइए, अंदर निकल आइए, जरा मिजाज को ठंडा कीजिए, चढ़े हुए पारे की डिग्री थोड़ा नीचे तो उतारिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं।
1: हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा पारा चढ़ गया है, मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ, बिना मतलब भूखने और काटने लगा हूँ। एक आप ही इस कॉलोनी में भले और शरीफ आदमी है।
0: भाई साहब, आप तो औरतों की तरह झगड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, मुझको औरत बनाइए, झगड़ालू बनाइए, अरे बनाना है साला बनाइए, चाहे जो मर्जी आप बनाइए।
0: मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप खुद में खुद अपने मुंह से बनते जा रहे हैं।
1: जी हाँ, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। खैर, और बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने बच्चे को मारा क्यों? आज आपसे मुझको इस बात का निपटारा करना है। आप अपने को समझते क्या हैं? इंजीनियर होंगे तो आप अपने घर के होंगे, और पैसे वाले होंगे तो अपने घर के होंगे, रिश्वतिये कहीं के।
0: मिस्टर अशोक, जबान को लगाम दीजिए, होश में रहिए, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जबान को लगाम नहीं, जो चाहा बक डाला, दो मिनट में आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इतनी देर से टालता चला जा रहा हूँ और आप हैं कि भीगे बांध जैसे ऐंठते ही जा रहे हैं, मुझको अपना ससुर, रिश्वतिया और न जाने क्या क्या बना डाला। आपसे अधिक समझदार तो मुझको आपकी पत्नी मालूम होती है। बच्चों के इन छोटे छोटे झगड़ों में औरतों को लड़ना चाहिए, पर मैं देख रहा हूँ वे बेचारी मुफ्त में बदनाम है और आप इनकी भी सीमाएं पार करते जा रहे हैं, इस सड़ियल झगड़े को लेकर तिल का तार बनाते जा रहे हैं।
1: तो इसका मतलब आप मेरी बीवी तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं? खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा
0: तो मैंने कौन सा आप शब्द कह दिए उनको?
1: जी आप कौन होते हैं मेरी बीवी के गुण अगुण बखान करने वाले?
0: अरे बेहतर होता कि आपकी पत्नी आपकी मिसेज होने के बजाय आपकी माँ होती।
1: क्या क्या क्या कहा आपने? मेरी बीवी मेरी माँ होती? मालूम होता है आपका दिमाग खराब हो गया है।
0: अरे दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हुआ है, कम से कम आपकी पत्नी आपकी माँ होती तो कुछ तो अच्छे गुण आ गए होते।
1: मैं पूछता हूँ कि आपको अभी इस मोहल्ले में आए हुए जुम्मे जुम्मे चार दिन हुए हैं और आपने मेरी पत्नी के विषय में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली, मुझे आप अच्छे आदमी नजर नहीं आते।
2: अरे मैं कहती हूँ चलिए घर वापस चलिए।
1: अरे छोड़ो यार,
2: दे चुके उलाहना, हो गया बस, हो गया।
1: मैं पूछता हूँ तुम यहाँ कैसे आई?
2: क्यों, मेरे यहाँ आने से कौन सा आकाश फट गया, क्या गजब हो गया?
1: नहीं रंजना, नहीं, तुम नहीं जानती मुझे मिस्टर राजन अच्छे आदमी नहीं लगते।
2: समझी, तो अब लड़का छोड़कर मुझ पर प्यास कटने लगा। आइए चलिए घर वापस चलिए।
0: आइए भाभी जी, अंदर आकर बैठिए ना।
2: अरे नहीं भाई साहब, ठीक है अब चलिए चलिए।
3: अरे आइए भी, ऐसे भी क्या नाराजगी है, अशोक भैया आप भी बैठिए ना।
1: बस रहने दीजिए भाभी जी।
3: अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए फिर इतना बिगड़िए। देखिए दिन भर ये बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनसे नुकसान भी हो जाता है। आज बात की बात पर मुझे बात कहनी पड़ रही है। उस दिन सोमू और बंटी लकड़ी की गेंद से छत पर खेल रहे थे, मेरे सामने ही बंटी के गेंद फेंकने पर मेरा 2 किलो का मर्तमान तड़ से टूट गया, सारा आचार बिखर गया। पर क्या मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आई? अरे बंटी के बजाय सोमू की गेंद से भी तो अचारदानी टूट सकती थी, लेकिन छोटे बच्चों को बड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए।
1: क्या मुंह लगा था बंटी आपके मिस्टर राजन के?
3: अरे भैया पहले बंटी ने सोमू को बिजली के तार से मारा, देखिए उसके बदन में कैसे नीले नीले निशान पड़ गए हैं, फिर उनके डांटे पर तड़ातड़ जबान लड़ाने लगा, इनको मुंह चढ़ाने लगा, इस पर इन्होंने उसको 2-3 चांटे लगा दिए। अरे इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बंटी आपके साथ साथ मेरा भी तो बच्चा है, मैं तो बंटी और सोमू में कोई भेद नहीं समझती। अगर मेरा सोमू ऐसा करे तो फौरन उसके कान गरम कर दीजिए, मुझे जरा भी एतराज ना होगा।
2: बहन यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, बच्चों की गलती पर कोई भी बड़ा बूढ़ा उनको अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए यदि डांटता डपटता है तो इसमें माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उलाना नहीं देना चाहिए। और बहन हम लोगों के बचपन में तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बूढ़े के सामने हम लोग जबान ही नहीं खोल सकते थे, और गलती करने पर अपने से बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे के फौरन कान गरम कर देता था। और क्या मजाल कि माँ बाप उस व्यक्ति के पास बच्चे के संबंध में उलाना लेकर जाएं।
3: लेकिन बहन अब तो जरा जरा सी बात पर सिर फुटावल शुरू हो जाती है।
2: यही बात तो मैं इनसे बराबर समझाती हूँ कि बच्चे खेलेंगे भी लड़ेंगे भी और गलती भी करेंगे, इस पर अगर कोई डांट फटकार कर देता

0: है, मार भी देता है तो क्या हुआ? ये सब तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है।
1: कहिए मिस्टर अशोक, मैंने क्या गलत कहा था कि भाभी जी को आपकी पत्नी होने के बजाय
2: आपकी माँ होना चाहिए?
1: जी नहीं, आपकी।
2: जी नहीं, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी।

उलाहना, ये हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाजें खान साहब और शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फतेह अली खान के और संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाजें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: इतनी सी बात

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र के।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग।
0: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
5: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
5: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का

0: निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46

0: 35 प्रतिशत महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की

0: कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था। आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट

0: में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। भारत और उज्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक लेकर गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुनशियात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरई शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटेकोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO ने 150,000 अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी की है। और मर्दों की हॉकी में बेल्जियम में वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सिविल न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन के हिस्से के तौर पर उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक तवील मुद्दती इंतजाम के बारे में भी इत्तफाक किया है।
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
0: नायाब मादनियात की कानकनी के लिए मुमकिन मकामात के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद ये फैसले किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने 11 मुफाहमत नामों का तबादला किया जिनका मकसद कानकनी, आयुर्वेद, सियाहत, सकाफत, इक्तसादी और मालियाती मुजाकरात और तालीम समेत अहम शोबों में दो तरफा तआवुन को बढ़ाना है। मुजाकरात के दौरान अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान मजबूत शराकतदारी वस्ती एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक होगी।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: मुजाकिरात के बाद उज्बेकिस्तान के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि

0: खिताब हासिल करने के लिए खेल रहा है। अब से कुछ देर पहले तक जर्मनी 1-0 से आगे था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी तक ले गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मनुष्यात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की माशी खुदमुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरिए शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।
1: ये आकाशवाणी है।
2: उसमें वो आउटफील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरे से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: ले ना लगे रे जाने क्या हो अब।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

0: शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।
1: बचपन के

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागीदारी,
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर, विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
5: इसका सोल्यूशन,
4: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
5: नेचुरल है।
4: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया।

किया है भरूं पागलों की तरह, जाने फिर क्यों फिर क्यों, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन

0: निकले धुआं, हर जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे फैशन

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी।

0: चाय अगी जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद
1: पिंपल। टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
2: इसका सोल्यूशन, वो भी नेचुरल है।
1: वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ, ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

0: छत दो रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत।
1: प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले।

हों कैसी भी राहें, प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: करना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
0: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
0: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
2: पिंपल,
3: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
2: इसका सलूशन,
3: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है
3: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात। FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also

समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की

के घंटों क्या देखा करता है। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा क्या है। तो मैंने कहा हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, वैसे अच्छा बेटा वो हंगामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम। मैंने कहा हुजूर मालूम है आपका घर। तो कहने कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुंच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वोबान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो एक रोज उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आंख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनद पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें। आप दुकान साफ करना नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे। मैंने कहा उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं माफ तो नहीं करूंगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आंखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी। मैंने कहा हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सजा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सजा के लिए। अब मैं हुजूर माफ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूंगा। नहीं सजा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा जी नहीं। आपकी सजा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा जहन अच्छा है, और लड्डन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

0: फिर एक रोज उस्ताद ने लंदन साहब को बुलाया, गुरबख्श अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा ये बच्चा तुम्हारी नकल करता है लेकिन हूबहू मेरे ख्याल से नकल करता है, सुनो एक दफे इसको। अरे बेटा इधर सुना क्या बजाता था तू? तो मैंने डरते डरते लंदन साहब के सामने सुनाया, तो लंदन साहब ने पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, भाई तेरा सेहन बहुत अच्छा, तू आया कर वहां। मैंने कहा जी आता हूँ, मैं चार आने का टिकट लेके। नहीं, तुमको टिकट नहीं लेना पड़ेगा,
1: टिकट लेने की नहीं जरूरत।
0: अब हमको फ्री एंट्री हो गई। अब दोनों शो तक हम वहाँ ठहरे। अब वालिद को मालूम हुआ कि ये रोज लेट आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो कल से अगर तुम 9 बजे के अंदर घर नहीं आए तो कुंजी नहीं खुलेगी, दरवाजा बंद हो जाएगा।
1: तो यूँ कहिए कि वालिद को छोड़ के सारे घर वाले जो थे आपके इस
0: वालदा, यकीनन माँ फिर माँ होती है
1: जी।
0: वालिद बहुत सख्त मिजाज थे इस सिलसिले में, और वो हाई कोर्ट का जज था उस जमाने में, ब्रिटिश का टाइम था, तो वो हाई कोर्ट के जज के साथ वो मुंशी थे
1: जी।
0: एक रोज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बेवक्त वालिद साहब आ गए घर में, और वही वक्त था मेरे रियाज का। उस वक्त मैं पकड़ा गया और वालिद साहब कहने लगा, रही ये क्या हो रहा सब घर में, गाना बजाना बजाय रोजा नमाज के, ये कौन लाया ये? तो मैं चुप्पे हाथ बांध के खड़ा हो गया, कि मैंने कहा से

0: वो? मैंने कहा हुजूर वो उस्ताद गुरबत अली साहब ने मुझे तोहफतन दिया है। ये तोहफतन ने किस बात पर दिया, तुम्हें क्या खूबी थी, किस लिए दिया? मैंने कहा मैं कुछ ये बजा रहा था उनकी दुकान पर, उन्होंने खुश होके मुझे, ये नहीं रहेगा यहाँ ये बाजन, अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम्हें भी निकाल दूंगा, लाओ इधर लाओ, बाजा ऊपर से लेके उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। अब साहब मैं बहुत मायूस हो गया, गुरबत अली साहब की दुकान पर फिर आया मैं, और मैं वहां खड़ा हो गया, और वो कह, अरे बेटा आओ आओ, क्या हुआ तुम्हें, रोने लगा, अरे बताओ हुआ क्या? तो मैंने उनको वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और हमारे वालिद साहब ने आज जो बाजा फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या करूँ। उस्ताद ने दिलासा दिया, कहने लड्डन साहब के पास तो तुम जाते हो वहाँ रॉयल सिनेमा में? मैंने कहा जी हाँ। फिर कहने, अच्छा देखो उस्ताद बब्बन साहब एक रहते हैं, नवाब बब्बन साहब, बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारा सामना कराऊंगा। ये अच्छे थे नवाब खानदान के, और उनकी कोठी थी लाठोस रोड पर, अभी भी है।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा भाई ये लड़के को बब्बन साहब थोड़ा सबक दो, कुछ सुना बेटा? तो मैंने कुछ डरते डरते सुनाया, उन्होंने भी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा तेरा जहन अच्छा है, आना मेरे पास मैं तालीम दूंगा। तो साहब उस्ताद लड्डन साहब बच्चों की तरह मानते थे हमको, अब हम रोज वहां जा रहे हैं और चोरी छुपे सीख रहे हैं, और नवाब बब्बन साहब से भी, और एक क्लब था वहाँ नादन महल रोड पर जो एम्यूचर्स का क्लब था, जिसमें हर साल एक ड्रामा स्टेज होता था, और उसमें तकरीबन सब वकील लोग शामिल होते थे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए, तो वो स्टेज हुआ ड्रामा, और मैं उसमें बजा रहा हूँ। अब वो साहब खबर फैल गई, हमारे वालिद साहब को पता लगा। अच्छा उस वक्त उम्र मेरी 16-17 साल की हो गई थी, तो हमारे वालिद साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि देखो आज एक बात का फैसला करो, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने वो शौक छोड़ा नहीं, और हमें बाहर से खबर मिली, आज फैसला करो तुम्हें ये म्यूजिक चाहिए या घर चाहिए। हमारी वालदा कहने लगी सुबह बात कर लेना, अभी रात है फिर। नहीं, अच्छा वो इत्तेफाक से दिवाली की रात थी, दिवाली थी तो हर तरफ चिरागा वगैरह हो रहा था। अब मुझसे कहने अभी फैसला होगा, इसी वक्त होगा, तुमको मौसीकी चाहिए या घर चाहिए? मैंने कहा घर आपको मुबारक, मैं उसी वक्त निकल गया। हमारी माँ अब रोकती रही, अरे नहीं बेटा सुबह चले जा। मैंने कहा नहीं, मैं जिन कपड़ों में था जो ऐसे था वैसे बाहर आ गया। लखनऊ में ही एक मेरे दोस्त थे आदिल साहब, भी शायर थे, अब्दुल मजीद आदिल, मुझसे बड़े थे लेकिन बड़े मेरे तरफदार, और बड़े मेरी हिम्मत अफजाई करते थे। और एक डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी थे जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ते थे लखनऊ के, उनके वो दोस्त थे, और डॉक्टर साहब को अक्सर हॉस्टल में मुझे ले जाए, मजीद साहब मेरा बाजा वाजा सुनवाए उनको। डॉक्टर नामी साहब भी, अब्दुल अलीम नामी उनका नाम था, वो भी बहुत मुझे पीट पीट ठोकते थे, शाबाशी देते थे। मजीद साहब के पास गया कि साहब आज ये वाकया हो गया और मैंने घर छोड़ दिया, क्या करूं? कहने भाई देखो मेरी राय ये है कि आजकल नाचती गाती बोती बोलती फिल्में बनने लगी हैं, तुम बम्बई जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर से निकल आया। कह रहे मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ। तो मजीद साहब ने हमको एक चिट्ठी लिख के दी, कहने वो नामी साहब थे ना यहाँ पढ़ते थे, वो अभी वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और तुमको तो जानते थे ना बचपन से, तुम सुनाते थे उनको। मैंने कहा जी। तो कहने उनके नाम मैं चिट्ठी लिखता हूँ, तुम उनको जाके मिलना, और एड्रेस वगैरह लिख देता हूँ मैं। और मुझे टिकट दिलाया, कुछ पैसे दिए, ट्रेन में बिठा दिया। अब मैं ये जिंदगी में पहला ही घर छोड़ के बम्बई का सफर शुरू हुआ।
2: जयंत जी,
3: जी मुंशी,
2: इस इंटरव्यू को पूरा सुनने का बहुत दिल करता है, कभी मौका मिले तो हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे और उनके साथ हम भी सुनेंगे। हम बताना चाहेंगे कि अभी आप ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार नौशाद साहब की ये रिकॉर्डिंग थी, और नौशाद साहब की बात चले फिल्म मदर इंडिया की याद ना आए, ऐसा भी कभी होता है?
3: ऐसा हो ही नहीं सकता
2: जी, जी। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर मूवी के नाम से जाने जाने वाली फिल्म मदर इंडिया के एक बहुत ही करुण गीत की याद आती है। हमारे सभी श्रोताओं को वो सीन जरूर याद आता होगा जहां अभिनेत्री नरगिस एक हल को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और उनके साथ उनके दो राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त साहब के बचपन के रोल करने वाले कलाकारों की तस्वीर है, और फिल्म मदर इंडिया को याद करते ही वो पोस्टर आंखों के सामने घूम जाता है
3: जी।
2: और मुझे लगता है इस गीत को सुने और उसके बाद फिर हम एक और बहुत

0: इस संजीदा गीत को सुनकर के मनीषा जी आप जो कह रही थी मदर इंडिया फिल्म का वो सीन तो जैसे जागृत हो उठा जी, फिर जी. से आंखों के सामने तैरने लगा.
1: और इस फिल्म की नायिका नरगिस, जी हाँ, उनकी भी याद ताजा हो गई. श्रोताओं, 3 मई नरगिस जी का स्मृति दिवस है.
0: फातिमा रशीद मूल नाम था नरगिस जी का और उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था. 5 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिली थी असल में.
1: अच्छा, बहुत कम उम्र में,
0: बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी और 1935 की उस फिल्म का नाम था तलाशे हक.
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 11 बजकर 23 मिनट हुए हैं. संपन्न होती है आज की शाम की सभा. कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. जय हिंद.